0: शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक
1: लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप ऐसे हो इसलिए चले जाते
0: ही और हमेशा रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: अब हमारे शरीर का कोई एक छोटा सा बायोलॉजिकल सेल भी एनर्जी ही है। हाँ। और ये पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है। तो उसमें ये बोला गया, तो फिर हम इस पूरी दुनिया से अलग कैसे हुए? अलग हैं ही नहीं हम। हम भी वही एनर्जी हैं, प्रकृति भी वही एनर्जी है।
1: हाँ।
0: तो हम किस धोखे में जीते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरा हाँ। अपना स्वार्थ, मेरा अपना पाना। आपने जो बात कही वो थोड़ी थोड़ी मुझे यहां से मैच होती हुई दिख रही है। मतलब उन्होंने शायद थोड़ा से अलग तरीके से इस बात को कहा
1: जी, हाँ।
0: लेकिन आपने इस बात को वेदांता के हिसाब से समझाया
1: जी।
0: बहुत खूब दोस्तों, विचार कीजिए। हाँ। ये पूरा प्रोग्राम विचार करने का ही है। जैसा मैम ने पहले ही कह दिया कि आध्यात्म जो हम हैं वही रहे हैं, इसी की कहानी है ना, हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। अब आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैम। आपने
1: हाँ जी।
0: बहुत प्यारी प्रबुद्ध जिंदगी जी है, तो आपको आध्यात्म के बारे में सबसे पहले कब पता चला, किसने बताया?
1: किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है
0: जी,
1: करीब 4 साल की उम्र से ही अगर कहीं कई भगवत कथा हो रही है या कहीं कोई संत आए हैं तो मैं बड़ी खींचती चली जाती थी उसकी ओर कि नहीं मुझे जाना है। और वो जो भी बोलते थे, कुछ समझ में आता था कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं बहुत प्रभावित होती थी कि ये कितना मतलब साफ सुथरी बातें करते हैं और उनमें कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो रुचि है बचपन से ही इसमें।
0: अच्छा।
1: और टू ऐड टू दैट, मेरी जो नानी थी वो बहुत ही यंग एज में विधवा हो गई थी और बहुत ही आध्यात्मिक थी वो। हर रोज मॉर्निंग में विष्णु सहस्रनाम पढ़ना, शाम को ललिता सहस्रनाम पढ़ना और दिन भर लेडीज को एडुकेट करना गांव में कि ये स्तोत्र पढ़ो, ये स्तुति करो, ये करो, वो करो। तो एंड शी यूज्ड टू से वन सेंटेंस, ये सब तो रिलीजियस बातें हुई, भक्ति की बातें हुई, मुझे वो एक बात बार बार दोहराती थी कि मनुष्य जन्म जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको ऐसे ही गवाओ मत। तो तब मुझे ये नहीं समझ आता था, लेकिन वो समझने के लिए मैंने ये रास्ता चुना कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा मुझसे। तो उसमें मैं बहुत कुछ सीखती चली गई और अब सिखाती गई हूँ थोड़ा बहुत।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आज सौभाग्यशाली हैं कि जो आपकी टीचिंग्स हैं, जो आपकी नानी की टीचिंग्स रहीं, वो उसका कुछ हिस्सा हमें आज मिल पा रहा है। वी आर सर्टेनली फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड कि आपसे बातें हो रही हैं। बहुत सुंदर दोस्तों, मेरा फिर से आपसे प्रार्थना रहे।

एगी की बहुत ध्यान से इस बातचीत को सुनिए जो मीना मैम हमें बता रही हैं। एक पॉज लीजिए, विचार कीजिए अभी तक मीना मैम ने जो कहा, तब तक लीजिए एक ये प्यारा सा भजन सुनिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं।

0: मीरा मैम, आगे बढ़ते हुए हमने बात करी आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की।
1: यस,
0: जब हम इस तरीके की बातचीत कर रहे होते हैं मैम, तो एक शब्द पीछे नहीं रहता,
1: थोड़ी सी पूजा कर लें, ये स्तोत्र पढ़ लें, ये मंत्र पढ़ लें, तो आपका मन शुद्ध होता है उससे। और जो शुद्ध मन होता है वो बड़ा पावरफुल हो जाता है कुछ भी करने के लिए। जब तक विचलित रहेंगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो धर्म और ये अध्यात्म साथ साथ चलें तो बढ़िया। और धार्मिक व्यक्ति अगर अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करें, उसको तपस्या की तरफ ले जाएं, तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तो दोनों अलग नहीं है, लेकिन वन शुड कल्मिनेट इनटू द अदर, अंग्रेजी में कहें तो।
0: जी जी, बहुत बहुत सुंदर। आपकी ये बातें सुनकर मेरे दिमाग में अभी दो प्रश्न आ रहे हैं मीना मैम,
1: कहिए।
0: मैं पूछता हूं, लेकिन बस एक छोटे से पॉज के बाद एक छोटा सा भजन सुनते हैं, फिर मैं वापस आता हूं आपके पास।
1: जी

0: ना मैम, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, प्रार्थना की, कि मेरे दिमाग में दो सवाल आए हैं। मैं इस बातचीत में पूरी एक साधारण सीधी सादी भोली भाली जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो समझना चाहता है। तो
1: राइट राइट,
0: प्रश्न मेरा यह हुआ कि ठीक है, आपने बताया कि स्तुति और मंत्र पढ़ना और कोई क्रिया करना और ये सब करना और मन पवित्र करना, मतलब आपने फिर धर्म और आस्था के बीच और ये सॉरी धर्म और अध्यात्म के बीच के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज एंड कनेक्शंस के बारे में भी बात की। बहुत सारे लोगों के लिए बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती
1: मुश्किल है।
0: तो एक सीधा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, इन सब चीजों को समझने के लिए क्या ध्यान लगाना एक रास्ता है मैम? नंबर वन, दिस इज पहला क्वेश्चन। अगर फर्ज कीजिए मैं ध्यान लगाने बैठ जाऊं और जैसा आपने गाइड किया कि पहले मैं कहूं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, धीरे धीरे नेगेटिव माइनस करते गए, आपने बोला ना, हम डिलीट करते गए चीजों को और फिर हम अपने आत्म शुद्ध आत्मा तक पहुंचे
1: जी।
0: तो साधारण मनुष्य के लिए मैं ध्यान लगाने बैठूं और विचार करता चलूं कि मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं मेरा मन नहीं हूं, तो क्या यही सही रास्ता है मैम? ये मेरा पहला प्रश्न हुआ।
1: ओके,
0: दूसरा प्रश्न ये है मैम कि ध्यान लगाते लगाते हम माइनस करते करते आत्म शुद्धि आत्मा तक पहुंच गए, फर्ज कीजिए। आपने कहा ना, आप ये सब करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मुझे ये पवित्र की डेफिनेशन बताएं, ये पवित्र की परिभाषा क्या है, मतलब मैं पवित्र हो गया मतलब क्या, इसका मतलब मेरे मन में ऐसा क्या हो गया कि मैं पवित्र हो गया? सो ये दो सवाल है मेरे।
1: ओके, ध्यान लगाना जो है वो मोहब्बत होने वाली जैसी बात है
0: जी।
1: यानी आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं अब ध्यान कर रहा हूँ और आंखें मूंद के बैठ गए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग सो जाते हैं
0: जी,
1: ध्यान कुछ होता नहीं है उसमें। और ध्यान लगाने के लिए उसके पहले एक क्रिया है कि आपको थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ होना चाहिए अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, तब आप उस पे विचार करोगे और तब जाके ध्यान लगेगा आपका, है ना
0: जी।
1: तो आम आदमी के लिए किसी सत्संग में जाना या किसी मंत्र का जप करना एक नियमानुसार, या पीरियोडिकली किसी मंदिर में जाके दर्शन कराना, इन सब चीजों से आस्था बढ़ती है उनकी और मन में एक शक्ति भी मिलती है कि ये जो कर्ता धर्ता ईश्वर हैं वो मेरी देखभाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसको दृढ़ बनाता जाता है ये सब प्रैक्टिसेस। तो ध्यान लगाना ही उत्तम है ऐसा नहीं है। ध्यान लगाने वाले लोग जो हैं वो दे आर ऑल क्या कहें, मच लर्नेड, जो ज्ञानी लोग होते हैं
0: जी
1: वो ध्यान लगा

0: सकते हैं आसानी से, और मतलब इस शारीरिक एग्जिस्टेंस से वो उस रेल्म में पहुंच सकते हैं जो कि आम आदमी के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप उस क्या कहते हैं वो शब्द जो है बड़ा आकर्षक है कि हम ध्यान करते हैं, है ना, मेडिटेशन आजकल एक बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट,
1: हाँ, बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा फैशनेबल है।
0: हाँ, तो उसमें गाइडेड मेडिटेशन नाम की चीज भी होती
1: जी
0: है।
1: हाँ जी हाँ, वो भी बड़ा फैशनेबल है।
0: हाँ, तो वो जो आपकी मेंटल कसरत कराते हैं उसमें, है ना, तो दैट इज नॉट मेडिटेशन इन द ट्रू सेंस। ध्यान कैसा होता है कि आपको मोहब्बत कैसे होती
1: जी,
0: किसी को आपने देखा और कुछ तो आपको भा गया उसमें और बस आपको अच्छे लगने लगे, है ना। ऐसे ही ध्यान में जब आप आंख मूंद के बैठते हो तो इमीडिएटली ये सब जो हम ये नहीं है ये नहीं है बोल रहे हैं ना, नेति नेति, वो अपने आप माइनस हो जाएगा और अपने स्वरूप में आप फौरन स्थित हो जाओगे। इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं उनको, इंस्टेंटली हो जाता है वो।
1: अच्छा,
0: कोशिश नहीं करनी पड़ती
1: एट द स्पर ऑफ द मोमेंट।
0: हाँ,
1: ओके। और दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा,
0: पवित्रता। हाँ, पवित्रता के माने हम मनुष्यों के लिए 6 शत्रु बताए गए हैं शास्त्र में।
1: जी,
0: सबसे पहले तो डिजायर, कामना। ओके, अगर वो आपकी पूरी नहीं होती है तो आपको क्रोध आ सकता है, आएगा ही। और अगर कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आता है कि ये मैं और करूं और करूं और करूं। जब लोभ आता है तो आप में एक तरह का प्राइड, मद बोलते हैं उसको
1: जी,
0: प्राइड आ जाता है। और अगर वो नहीं फुलफिल होता है आपका लोभ, तो आपको ईर्ष्या, मात्सर्य होने लगता है औरों से, जिनका हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है
1: जी।
0: और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो आपको सही गलत में फर्क नजर आना
1: बंद हो जाएगा जी।
0: एंड देन इट विल बी योर डिस्ट्रक्शन एक्चुअली। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, इनको षटरिपु कहते हैं संस्कृत में, 6 दुश्मन हमारे
1: जी।
0: तो अरे ये सब क्या है, एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो अगर हम कामना से दूर रहें तो इन सब से बच सकते हैं। और ऐसा नहीं है, लोग पूछते हैं, मत स्पेशली जो यंग लोग हैं वो पूछते हैं, सो व्हाट, वी शुड नॉट विश फॉर एनीथिंग।
1: करेक्ट,
0: ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो आपके लिए जरूरी है, आपके जीने के लिए जो जरूरी है, उसकी कामना करना कोई गलत बात नहीं है
1: जी।
0: कि आपको अपने आत्म की प्राप्ति करनी है, ये भी गलत आशा नहीं है। लेकिन जो नीड और वांट में जो फर्क है ना, वो अगर आपको समझ आ जाए तो आप पवित्र रहोगे। क्योंकि ये सब भावनाएं जब आती हैं तो मन अपवित्र हो जाता है ना, क्योंकि आपको कैसे बनाया, आपको बिल्कुल साफ सुथरा बना के ईश्वर ने भेजा है
1: जी।
0: उसमें आप ये सब क्वालिटीज डालोगे तो अपवित्र होगा ही।
1: ओके मैम, आई एग्री विद योर पॉइंट। बात मुझे एक साधारण मनुष्य के दिमाग के हिसाब से 50% मैं कन्विंस हो पा रहा हूँ, 50% अभी आपने कुछ एग्जांपल्स दिए यंग जनरेशन की, क्या हम विश करना बंद कर दें वगैरह वगैरह, तो वहां पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, वैसा भी नहीं करना है। तो कई मौके आजकल की डेट में ऐसे किसी भी इंसान के साथ आ जाते हैं कि हम बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे और किसी ने पीछे से हमारी गाड़ी में टक्कर मारी
0: जी।
1: और चलिए टक्कर तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक करा लेना चाहिए। उसमें लड़ाई झगड़ा की क्या बात है, आफ्टर ऑल इंश्योरेंस कराया ही इसीलिए था। अब गाड़ी सड़क पर चलेगी तो ठुकेगी भी,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इससे आगे बढ़ गई है बात, गाड़ी ठुकी पीछे से ठुकी, मतलब गलती उसकी थी, वो फिर भी आके हमको गेट खोल के बाहर निकाल के मारना शुरू कर देता है
0: जी,
1: कि किस तरह से तू गाड़ी चला रहा था और तू कौन है और मैं बहुत बड़ा हूं। मैम वहां पर कहां रह जाती है पवित्रता मन की, मैंने कोई गलती की नहीं फिर भी मैं पिट रहा हूं। ऐसे अत्याचार में तो फिर भड़क पड़ता है, मन करता है गोली मार दें इसको। वहां पर पवित्र मन का क्या मतलब हुआ, पवित्र मन फिर वहां कैसे काम आएगा, मतलब हुआ ये कि मैं पिटता रहूं उससे पवित्र मन लेके?
0: नहीं नहीं नहीं, वहां पे क्या बोलते हैं, जो सही है वो करना चाहिए
1: जी
0: और जो गलत है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके किसी फॉल्ट के बिना आपके ऊपर वो बरस रहा है या मार रहा है तो फिर आपका भी हक है कि आप उसको भी सही जवाब दें उसी तरह, नहीं तो उसको भी समझ में नहीं आएगा।
1: हाँ।
0: क्योंकि उसको वही भाषा समझ आती है तो आपको भी उसको वैसे ही समझाना पड़ेगा।
1: ओके, क्योंकि रेज जो है ना मैम चारों तरफ बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है। पीछे
0: और उसका भी आप मूल कारण देखिए क्या है।
1: जी जी,
0: व्हेन यू जीरो डाउन कि ये क्यों हुआ, उसके पीछे भी कोई डिजायर ही होगा। अब देखो
1: जी जी, डिजायर शायद ये होगा कि मैं अपने आप को उससे बड़ा साबित करूं।
0: हाँ, कुछ भी हो सकता है
1: जी,
0: फेम का डिजायर, पैसे का डिजायर,
1: पावर का डिजायर,
0: किसी पदवी का डिजायर। हाँ।
1: जी जी जी, ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, कहां पर और कितना हमें रिटेलिएट करना है या रिस्पॉन्सिव होना है। रिस्पॉन्सिव होना,
0: मतलब रिस्पॉन्सिव होना बेटर
1: है, मतलब
0: आपके लिए भी और अपोजिट पार्टी के लिए भी।
1: क्योंकि रिस्पॉन्सिबल शब्द को अगर हम तोड़े तो आता है रिस्पॉन्सएबल, मतलब हम रिस्पॉन्स देने लायक हैं।
0: बिल्कुल,
1: रिएक्ट और रिस्पॉन्सिबल में यही फर्क है। चलिए, वेल मीना मैम, आपने वेदांता भी पढ़ा, आपने कई कॉर्पोरेट्स में काम भी किया, संगीत से भी जुड़ी रही, बहुत आपने ज्ञान भी लिया और मेडिटेशन भी किया और बात को समझा भी।
0: हाँ जी।
1: लेकिन आप आज की दुनिया में हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं आज की दुनिया से, और आज सोशल मीडिया का जबरदस्त बोलबाला है। अब हम आंख मूंद कर बैठ तो नहीं सकते मैम कि हमको सोशल मीडिया देखना ही नहीं है। तो सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर या स्पिरिचुअलिटी पर, या चलिए एक बार को धर्म की बात भी कर लेते हैं, इन पर क्या असर हो रहा है सोशल मीडिया का?
0: सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अगर मुझसे पूछे
1: जी,
0: कि विश्व भर में आपके कोई भी कनेक्टेड दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, उनसे आप पल भर में जुड़ सकते हो
1: जी।
0: पहला तो फायदा ये है। दूसरा, आपको जो अच्छी बात लोगों को बतानी होती है वो भी एक क्लिक करने से सबके पास पहुंच जाती है, है ना, और उसका ही वाइस वर्स भी पॉसिबल है।
1: बिल्कुल,
0: तो उससे बच के रहना है। ये नहीं है कि हम उसमें बिल्कुल रहे ही ना या वो देखे ही ना, समझ में कैसे आएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है इफ यू डोंट सी। अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए ना, पहले कहां ये स्टार मेकर या कुछ और था जहां हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे, अब तो हो सकता है। पहले अनलेस एंड अंटिल किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ने आपको बुलाया नहीं, ऑडिशन नहीं लिया, तब तक कोई आपको सुन भी नहीं सकता था, पता भी नहीं चलता था। अभी तो यू कैन डू इट। जहां तक अच्छी बातों को फैलाने वाली बात है, सोशल मीडिया इज वेरी गुड। जहां लोगों के साथ कनेक्ट होने की बात है वहां भी अच्छी बात है, और जहां लोगों को सतर्क करने वाली बात है उसके लिए भी सोशल मीडिया बहुत अच्छा है
1: जी।
0: लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। और दूसरा उसका एक एस्पेक्ट है कि बहुत अपने फोन में उसको अगर देखते रहें तो आपका नुकसान भी एक तरह होता है कि आपकी आंखों की जो रोशनी है उस पर बहुत बुरा असर होता है उसका
1: जी।
0: इसलिए जितना कम इस्तेमाल करें अच्छा है, सिर्फ अपने काम के लिए उसको यूज करें फिर उसको रख दें। अभी आजकल के अगर आप बच्चों को देखें तो सदा स्क्रीन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, पता नहीं क्या।
1: करेक्ट।
0: तो वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। और जब आप चार लोगों के बीच बैठे हो तो ये तो मतलब अशिष्ट व्यवहार है मुझे पूछे
1: बिल्कुल सही कहा
0: कि सामने इंसान बैठा है, आप उनसे बात करिए, ये क्या बात हुई उसमें झांक रहे हैं। घरों में भी होता है
1: जी,
0: माँ
1: जी।
0: बाप बच्चे बैठे हैं, सब अपने अपने फोन में पता नहीं क्या देख रहे हैं।
1: आपने बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आदतें हैं जो बिगड़ी हुई हैं, उनको सुधारने में देर नहीं लगेगी, बस मन होना चाहिए कि अब नहीं करना है।
1: बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने मैम, बहुत बहुत प्यारी बात कही। और इसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रही हैं एक दूसरे एंगल से कि सोशल मीडिया एक दो धार की तलवार है।
0: हाँ।
1: दोनों तरफ इसकी एजेस हैं, अगर हमने इसको गलत चलाया
0: जी
1: तो हम कट जाएंगे।
0: हाँ।
1: सो वी नीड टू नो कि इसको हमें चलाना कैसे है, किस तरफ से इसको चलाना है।
0: हाँ।
1: और बस वो खतरनाक लाइन कब पार होती है बस वही पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों टाइम एंड अगेन इस बारे में बार बार बात हो रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत प्यारा है लेकिन हमें सजग होना चाहिए कि कहीं ये हमारे सर पर ना चढ़ जाए।
0: हाँ,
1: चलिए
0: हावी नहीं हो जाए,
1: हावी ना हो जाए क्योंकि हमको गुलाम बनने की बहुत ज्यादा आदत है, फौरन नशे में डूब जाने की आदत हमें बहुत है
0: जी, जी।
1: तो इसलिए थोड़ा संभलिए। चलिए मीना मैम, मुझे ये बताइए, बहुत बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की, शुरू शुरू में भी आपने कहा था, प्रैक्टिस करते हैं। हमको चारों तरफ दिखाई देता है, हर फैमिली में कम से कम बुजुर्ग लोग तो हमें ये करते हुए दिखते ही हैं, फिर कुछ यंग लोग भी दिखाई देते हैं। स्पिरिचुअलिटी उनको लगता है बड़ी प्यारी चीज है और उससे हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, हम शांति पा जाएंगे, स्ट्रेस हट जाएगा, फिजिकली भी हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर वो फिर मॉडर्न दुनिया में उलझ जाते हैं, काम में स्ट्रेस लेने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में परिवार में कलह सब कुछ शुरू हो जाता है।
0: यस।
1: तो आफ्टर ऑल कोई भी इंसान आध्यात्म की प्रैक्टिस कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
0: अपनी चॉइस है ना
1: जी।
0: अभी मुझे देख लो, जब मैं बचपन से इसे जुड़ी हुई हूँ लेकिन फुल टाइम देने का वक्त मुझे तब नहीं मिला, कुछ पढ़ाई भी नहीं की, कुछ सीखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। चार पांच श्लोक आते थे वही बोल दिया करते थे, रोज स्नान करके फिर स्कूल भाग जाते थे। लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके भी सब 15 साल के हो गए, मेरी बड़ी वाली बेटी, तब जाके मैं इसके अध्ययन में लगी। और फिर ऐसे हुआ कि मतलब उन किताबों से मन हटता ही नहीं था, एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं बस सीखती चली गई, सीखती चली गई, सीखती चली। वो तो ऐसा है कि आप जब तक पानी में उतरोगे नहीं तैरना सीखोगे नहीं
1: जी।
0: ऊपर ऊपर से देख के अच्छा लगता है ये तो ठीक है, लेकिन अनुभव करने की बात है, यू हैव टू वॉक द पाथ टू नो द पाथ, है ना।
1: ओके, ओके।
0: किसी के बताने पे आप कितना ही करोगे। और लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन भी है इसके बारे में, जैसा मैंने कहा ना, आप सीधी साधी जिंदगी जियो कि एक डिसिप्लिन के साथ जियो कि सुबह इस वक्त उठना है, इस वक्त स्नान करना है, इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है, तो वो भी एक स्पिरिचुअल लाइफ ही है। स्पिरिचुअलिटी यानी ये नहीं कि आप माला जपते बैठ जाओ या ऑरेंज वस्त्र पहन लो या किसी मंदिर में रोज जाओ, दैट डज नॉट डिफाइन स्पिरिचुअलिटी। आप अपने अंदर का जो आप हो ना, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके साथ हमेशा जुड़े रहो, यही स्पिरिचुअलिटी है।
1: ओके, बिल्कुल ठीक।
0: अभी कोई दरवाजा खटखटाता है
1: जी,
0: कौन है पूछता है ना,
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ
0: तो आप कहते हो ना मैं हूँ, तो व्हाट मेक्स यू से कि मैं हूँ, थोड़ा सोचिए उसको। तो वो जो अंदर से आवाज आई कि मैं हूँ, वो हमेशा आपको एहसास दिलाता रहता है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ।
1: ओके,
0: उस मैं से हमेशा जुड़े रहिए, अलग मत होइए। तो दैट टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग एल्स। फिर आप गलत बातों में नहीं पड़ोगे, कोई बिना मतलब की बात कर रहा है तो आप अपने आप वहां से उठ के चले जाओगे। दीज थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली, कोई एफर्ट नहीं लगता है इसमें। खुशी खुशी रहना, एफर्टलेसली जीना, यही स्पिरिचुअलिटी है। जितनी खुशी आप लोगों को बांट सकते हो बांटो, बिना किसी मोल के, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। ह्यूमन एक 18 पुराण है हमारे
1: जी,
0: एक श्लोक है उसके बारे में कि अष्टादश पुराणानाम केवलम वचनद्वयम, कि 18 पुराणों में दो ही बातें कही गई हैं, वो ये है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, किसी को दुख ना पहुंचाएं और जितना उपकार हो सके किसी का भी उतना करें जिंदगी में, तो आप स्पिरिचुअल हो।
1: सुंदर, अति सुंदर। चलिए सिंपल भाषा में सिंपल मैसेज है दोस्तों, विचार करने लायक चीज है। रुकिए ना, एक प्यारा सा भजन सुन लें और फिर हम मीना मैम के पास वापस आते हैं।
2: बहुत मुश्किल है डगर इस संसार की, किसी गुरु की तलाश कीजिए जो हमें इन मुश्किल रास्तों से निकल जाने का उपाय बताए।

0: अगर आपकी बातचीत को सुनकर, हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर अगर कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए, सहमत हो जाए कि नहीं ठीक है, आज मुझे कुछ डिफरेंट प्रस्पेक्टिव मिला है अध्यात्म का, रिलीजन का, चलिए जैसा मीना मैम ने कहा मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, क्यों मैं अपने अंतर्मन में बड़ा दुखी इंसान हूँ, बड़ा गुस्सा भरा हुआ है मेरे अंदर, मन करता है इसको मार दूँ, उसको मार दूँ, मेरे हिसाब से कभी कुछ हो नहीं रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज मीना मैम ने बोला है चलो मैं शुरू करता हूँ ध्यान से और आध्यात्म की तरफ मैं बढ़ूंगा, मन को पवित्र करूंगा, जैसे हम लोग की पीछे बातचीत हुई। तो 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप आप क्या बताना चाहोगे कि हमें 1 2 3 4 ये करो तो धीरे धीरे आप आध्यात्म की तरफ बढ़ोगे, मतलब हमें मेथड बताइए।
1: हाँ, सिंपल मेथड्स बताती हूँ
0: जी।
1: जब भी मौका मिले किसी मंदिर में जाके दर्शन कीजिए और अकेले जाइए
0: जी।
1: तो जब आपके और उस अंदर मूर्ति के बीच में जो कुछ भी एक्सचेंज होता है उसको आप मन में लेके वापस आइए, जरूर उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई कोई भी हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई भी पसंदीदा है
0: जी,
1: तो उनके नाम का जाप आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको शिव जी पसंद है तो ओम नमः शिवाय, है ना। सो अबाउट 5 मिनट्स 10 मिनट्स आंख मूंद के उनका नाम जाप करो तो उसमें क्या होगा, माइंड स्टेडी होगा
0: जी।
1: तीसरा, जब कभी कोई महात्मा कहीं भी लेक्चर दे रहा हो किसी भी विषय पे, नीड नॉट बी ऑफ योर इंटरेस्ट, लेकिन अगर कोई महात्मा कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो मौका मिले तो जाइए उधर, क्योंकि उस पूरे घंटे 1.5 घंटे में वो लोग जो कुछ भी बताते हैं उनमें कभी कभी हमारे मन में उठ रहे सवालों का भी जवाब मिल जाता है
0: जी।
1: मुझे ऐसी जिंदगी में बहुत सारे जवाब मिले हैं, मैं इंटेंशनली नहीं गई थी लेकिन जाके कुछ पाके आई। तो ये सब चीजें हमको हेल्प करती हैं और फिर आप खुद ही चलने लगोगे कि नहीं नहीं नहीं मुझे ये करना चाहिए। और हमारे शास्त्र क्या हैं, एक आईने की तरह हैं, हमको दिखाते हैं कि हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं, किसी कथा के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से या किसी बात के माध्यम से, उनमें जो भी लिखा है, तो वो सब सुनना अच्छी बात है। तो धीरे धीरे परिवर्तन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास।
0: सिंपल आसान तरीका है दोस्तों, अपनाने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा हमें अपने आप को अरेंज करना है, वक्त तो वही है 24 घंटे, हमें अपने आप को अरेंज करना है और इन चीजों पर जाना है। नंबर वन ध्यान, नंबर टू कोई अगर कहीं प्रवचन हो रहा हो तो जाके सुनिए। बहुत प्यार से मैम ने कहा कोई जरूरी नहीं आपके इंटरेस्ट की बात हो रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ सवालों के जवाब आपको फिर भी मिल ही जाएंगे। नंबर थ्री, कोई भी देवता हैं, कोई भी डेटी हैं जिनको आप पसंद करते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी वक्त तो हम गुजारते ही हैं। तो ये 4-5 प्रैक्टिसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर हम 5 मिनट 10 मिनट में भी हाफ एन आवर जितना भी हमको मन लगे करें तो धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत सुंदर मैम, तो बस चलते चलते मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके सारे जो श्रोता हैं आज जिन्होंने आपको सुना, आपसे बातें समझी हैं, अपनी प्यारी सी जिंदगी को जीने के लिए, आपने पीछे कहा ना, आपकी नानी ने कहा था कि मनुष्य का एक जीवन मिला है उसको ऐसे बेकार मत करो। तो क्या संदेश है आपका कि हम उसको बेकार कैसे ना करें? बस
1: अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है
0: जी
1: कि अपने आप के पास या अपनी आत्मा के पास फिर लौट जाने के लिए
0: जी
1: शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास है।
0: वाओ,
1: एक श्लोक है जो मैं पढ़ूंगी जो आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है कि दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुष संश्रयः। यानी ये तीन चीजें दुर्लभ है लाइफ में. पहला तो मनुष्यत्वम, ह्यूमन बीइंग पैदा होना. दूसरा मुमुक्षुत्वम, यानी अपने मन में एक चाह हो कि मुझे अब फिर लौट के नहीं आना है संसार में, मुझे मोक्ष पाना ही है. और तीसरी बात जो दुर्लभ है वो ये है कि कोई महापुरुष हमारे जीवन में आए और हमें ये सब समझाए कि हम कैसे पार लगाएं. और ये सब मिलता है हमको देवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से ही मिलता है. तो चूंकि हमें मानव शरीर मिला है तो उसका पूरा पूरा उपयोग करें उसको याद करते हुए, तो जरूर हम पार लग सकते हैं. दैट इज द मैसेज. और हमारे पास जो बुद्धि है, अभी एक पक्षी या एक पशु जो है बैठ के ध्यान नहीं कर सकता है, उसको ये सब समझ में भी नहीं आएगा कि यू नो ये जन्म क्यों मिला है या हमें क्या करना है, पास्ट में हमने क्या कर्म किए थे, अब क्यों भुगत रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता है. लेकिन मनुष्य के पास वो शक्ति है, अपने सारी जो करण मिले हैं हमको, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो मिले हैं, उनको नियंत्रण में रखने की शक्ति मनुष्य के पास है. और अपने आप के पास पहुंचने का रास्ता भी हमारे पास है, बस थोड़ा सूक्ष्म बनना पड़ेगा. वो जैसे कबीर दास का भजन है ना, मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास.
0: जी, अमेजिंग, ब्यूटीफुल.
1: तो अपने साथ रहिए, अपने पास रहिए, जितना हो सके खुश रहिए, जितना हो सके औरों को भी खुश बनाए रखिए. दैट्स ऑल हम मनुष्य के रूप में कर सकते हैं.
0: बहुत सुंदर मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि इतनी प्यारी चीजें आपने हमें बताई हैं सिंपल तरीके से. कोई भी व्यक्ति उसको सुनकर प्रैक्टिस शुरू कर सकता है. आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद.
1: धन्यवाद, धन्यवाद. मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके. आई होप मैंने कुछ तो काम की चीज बताई.
0: जी,
1: धन्यवाद.
0: थैंक यू.
2: भास्कराय नमः.
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं. आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। सत्यजीत रे एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने सिनेमा को जीवन बनाया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने इंडियन सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बनाया, बल्कि एक आर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। उनका नाम है सत्यजीत रे। रे सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे, वो एक स्टोरी टेलर, विजुअल पोएट और ह्यूमनिस्ट थे, जिन्होंने जिंदगी को कैमरे के थ्रू समझा और दिखाया। रे की जर्नी आसान नहीं थी। उन्होंने कैलकटा के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिया, और उनके पिता एक राइटर और इलस्ट्रेटर थे। इससे उनके अंदर आर्ट और क्रिएटिविटी बचपन से जगी हुई थी। टैगोर के साथ शांति निकेतन से उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स का डीप एक्सपोजर पाया, एक हार्मनी जो उनके सिनेमा में रिफ्लेक्ट होती है। रे इनिशियली कमर्शियल आर्टिस्ट और बुक कवर डिजाइनर थे। उनके हाथों से बनाए गए इलस्ट्रेशंस और टाइपफेस डिजाइन्स इंडिया में टाइपोग्राफी को एक नया डायमेंशन दे रहे थे। उन्होंने सिनेमा को एक सोच और लाइफ की तरह ट्रीट किया। कह सकते हैं कि उनके लिए रील और रियल जिंदगी में कोई बाउंड्री नहीं थी। उनकी पहली फिल्म पथेर पंचाली एक मास्टरपीस है, जो इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा के मैप पर लेके आई। ये फिल्म फाइनेंशियल स्ट्रगल, लैक ऑफ इक्विपमेंट और बिगनर क्रू के साथ बनाई गई थी, फिर भी उसकी ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म ने दुनिया को हिला दिया। रे की फिल्म मेकिंग का सबसे खास पहलू था उनका रियलिज्म और सिंप्लिसिटी का अप्रोच। उन्होंने ड्रामेटिक लाइटिंग या हेवी लाइट सेट्स की जगह नेचुरल लाइट, रियल लोकेशंस और रियल इमोशंस को प्रेफर किया। चाहे रूरल बंगाल का गांव हो या सिटी का एक छोटा सा स्ट्रीट, जहां कैमरा वर्क हर सीन में जीता हुआ लगता था, उन्होंने नेचुरल लाइटिंग का यूज इस तरह किया कि आसपास की रोशनी ही नरेटिव को और इमोशनल बनाती है। लॉन्ग टेक्स का यूज करके रे ने पेशेंस और रिदम को सिनेमा में स्टैब्लिश किया। सीन्स को बिना आर्टिफिशियल इंटरप्शंस के फ्लो होने दिया जाता था। और जब हम साउंड की बात करते हैं, रे एक पायनियर ऑफ नेचुरल साउंड कैप्चरिंग थे। उनकी फिल्म्स में आप सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं सुनते, आप हवा का घूंघट, पेड़ों की सरसराहट और गांव का डिस्टेंट कॉन्वर्जेशन भी महसूस करते हैं। ये बिना आर्टिफिशियल साउंड ट्रैक के रियल वर्ल्ड साउंड डिजाइन का इफेक्ट था। सिनेमा का एक एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट, एक यूनिक टेक्निक जो रे लाए, वो था स्टोरी बोर्डिंग और फ्रेम कॉम्पोजिशन का मेटिकुलस प्लान। उन्होंने पथेर पंचाली के लिए फ्रेम्स और सीन को पेंसिल से स्टोरी बोर्ड पर बनाया। इसकी वजह से कैमरा का मूवमेंट हर शॉट में प्रिसाइज और मीनिंगफुल होता, बिना ओवर एडिटिंग के। रे ने कभी फिल्म मेकिंग को नॉइस और स्पेक्टिकल बनने ही नहीं दिया। कैमरा रेयरली बिना पर्पस मूव होती थी। हर पैन, हर क्लोजअप, हर लॉन्ग टेक, हर शॉट
नेचुरली स्टोरी को आगे बढ़ाता था। उनका आर्टिस्टिक सिग्नेचर वो था जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में रेयर था, ह्यूमनिज्म, सिंप्लिसिटी और अंदर के इमोशंस। कहानी कैरेक्टर्स के मन का पार्ट बन जाती थी, डायलॉग्स की जगह विजुअल्स और साइलेंसेस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते थे। रे की दुनिया में बैकग्राउंड साउंड कोई डेकोरेशन नहीं था, वो एक लिव्ड एक्सपीरियंस था, एक लिव्ड स्पेस था, ऐसे क्रिएटेड था जहां आप कैरेक्टर्स के साथ सांस लेते हो, उस स्पेस को, उस एनवायरनमेंट को, उस जगह को जो सीन में दिखलाई जा रही है उसे फील करते हो। ये सिर्फ टेक्निक नहीं, एक सिनेमैटिक एम्पथी थी। उनकी फिल्म्स जैसे चारुलता इमोशन और लोनलीनेस को विजुअल से डिपिक्ट करती है और कंचनजंगा फैमिली को एनवायरनमेंट के साथ जोड़कर कनेक्ट कर देखती है। ये सब रे के आर्ट का एविडेंस है जहां कैमरा और स्टोरी एक ही सोल बन जाते हैं। रे ने कहा था, टेक्निक तभी काम आती है जब वो नोटिस ना हो और इमोशंस फोरग्राउंड पर हों। इस माइंडसेट की वजह से उनकी फिल्म्स टाइमलेस बन गईं। इसीलिए आज भी स्टूडेंट्स, डायरेक्टर्स और स्टोरी टेलर्स पूरे वर्ल्ड में रे के काम को स्टडी करते हैं, क्योंकि उनका सिनेमा एक मीडियम नहीं, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया जहां नरेटिव, लाइट, साउंड और स्पेस एक साथ बिना फ्लैशी डिस्ट्रैक्शंस के एक ड्रीम जैसा वर्ल्ड बनाते थे जिसमें आप खुद को महसूस कर सकते थे, खुद को देख सकते थे और उसमें जी सकते थे। जी के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है थोड़ी सी गुदगुदी का समय।
2: मिडिल क्लास प्यार इतना सीधा होता है कि लड़का रोज बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लड़की आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और 6 महीने बाद लड़का हिम्मत करके बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये 522 यहीं से जाती है? प्यार नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी शुरू हो गई।

बासु चैटर्जी, छोटी सी बातों में बड़ी जिंदगी दिखाने वाले निर्देशक। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी कहानियां अक्सर छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं। ऑफिस जाते वक्त बस का वेट, पड़ोस वाली बालकनी में खड़ी लड़की, सैलरी का इंतजार, घर वालों की चिंता और बीच में छोटी सी एक मुस्कान। इन्हीं छोटी बातों को बड़े पर्दे पर लाने वाले डायरेक्टर थे बासु चैटर्जी। 10 जनवरी 1930 अजमेर में जन्मे बासुदा ने सिनेमा को एक नया रास्ता दिया। ना बहुत ज्यादा शोर, ना बड़े सेट, ना हीरो की एंट्री पर हवा के झोंके, बस आम इंसान और उसकी आम सी लगने वाली लेकिन खास सी कहानी। उन्होंने अपना करियर इलस्ट्रेटर और कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया, पत्रिकाओं में काम किया, फिर फिल्म जगत में उतरे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बना ली। मिडिल क्लास के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। उनकी फिल्में देखकर ऐसा लगता था जैसे हम अपनी ही कहानी देख रहे हों। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म रजनीगंधा की। एक सीधी सी कहानी, एक लड़की, दो लोग, दिल का कंफ्यूजन, बस। लेकिन इस फिल्म की खूबसूरती इतनी सुंदर, इतनी सच्ची है। हीरोइन कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं लेती, वो बस सोचती है, यादें आती हैं, दोनों लोग अलग अलग तरह उसके जीवन में जगह बनाते हैं। फिल्म नेचुरल आवाज का इस्तेमाल करती है, रियल लोकेशंस, सिंपल डायलॉग्स, ये सब बासुदा की पहचान बन गए। फिर आती है छोटी सी बात। एक शरीफ सा लड़का ऑफिस में काम करता है, रोज एक लड़की को देखता है, प्यार करता है, लेकिन कह नहीं पाता। ये कहानी किसी हीरो की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो बस स्टॉप पर खड़ा होकर सिर्फ देख ही रहा होता है। इस फिल्म में अमोल पालेकर का सीधा हल्का सा झिझक भरा किरदार बासु चैटर्जी के सिनेमा की पहचान बन गया। उनके हीरोज माचो नहीं थे, वो डर जाते थे, वो कंफ्यूज हो जाते थे, वो गलती भी करते थे और इसी वजह से वो अपने लगते थे। बासुदा की एक और मासूम सी फिल्म बातों बातों में, मुंबई की लोकल ट्रेन, रोज मिलना, छोटी सी बात से शुरू हुआ रिश्ता और धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्यार। इस फिल्म में शहर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था, शहर खुद एक किरदार था। जी हाँ, उन्होंने स्टूडियो के सेट से ज्यादा असली लोकेशंस इस्तेमाल की। रोड, ऑफिस, छोटा घर, छत, ये सब उनकी कहानियों का हिस्सा बने। उनकी फिल्म मेकिंग की सबसे बड़ी ताकत थी रिदम ऑफ डेली लाइफ। सीन तेज नहीं भागते थे, वो बिल्कुल वैसे ही चलते थे जैसे जिंदगी चलती है। उन्होंने कैमरा को ज्यादा हिलाया नहीं, ज्यादा ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं डाला, डायलॉग्स को भी बिल्कुल सिंपल रखा और कहानी को हवा में नहीं, जमीन पर रखा। उनकी फिल्में मिडिल क्लास सिनेमा का एक आम हिस्सा बनी, ना प्योर कमर्शियल, ना आर्ट सिनेमा, बस एक बीच का रास्ता जो आम आदमी को अपना सा लगता था। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं, टीवी सीरियल्स भी बनाए। राजानी और ब्योमकेश बख्शी जैसे नाम उनकी सोच की गहराई दिखाते हैं। उन्हें समझ थी कि कहानी का असली हीरो सच्चाई होता है। उनके सिनेमा में महिला किरदार भी बहुत नेचुरल होती थी, वो सिर्फ हीरो की साथी नहीं थी, उसके अपने डिसीजंस थे, अपनी सोच होती थी। बासु चैटर्जी की फिल्में चिल्लाती नहीं थी, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिल में घुस जाती थी, कब कैसे पता भी नहीं चलता था। आज के दौर में जब कहानियां अक्सर बहुत लाउड हो जाती हैं, तब बासुदा की फिल्में याद दिलाती हैं कि सिंपलिसिटी भी पावर होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए बड़े डायलॉग्स की जरूरत नहीं है, एक नजर भी काफी है। जिंदगी को समझने के लिए बड़ी ट्रेजेडीज की जरूरत नहीं है,
छोटी सी बात भी सब कुछ बदल सकती है। 4 जून 2020 को बासु चैटर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी फिल्में आज भी रोज के जीवन की तरह चलती रहती हैं, लोकल ट्रेन जैसी। जब भी आप किसी बस स्टॉप पर खड़ी हो, जब भी आप ऑफिस के कैंटीन में चुपचाप चाय पी रहे हो, जब भी आप किसी को कहना चाह रहे हो बट कह नहीं पा रहे हो, तब याद करिएगा, बासु चैटर्जी ने इसी खामोशी को सिनेमा बनाया। उन्होंने हमें बताया, हीरो बनना जरूरी नहीं, इंसान बनना जरूरी है। और शायद इसीलिए उनका सिनेमा आज भी पुराना नहीं लगता, वो हर नए दौर में फिर से जी उठता है। ये थे बासु चैटर्जी, छोटी सी बातों के बड़े कहानीकार।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। इतनी गंदा टाइप सिचुएशन में लड़की दो लड़कों के बीच कंफ्यूज थी। आज के जमाने में कंफ्यूजन और भी बड़ा है। अब चॉइस है, सीन करके रिप्लाई करें या टाइपिंग दिखा के डिसअपियर हो जाएं। लव ट्रायंगल से ज्यादा डेंजरस है ऑनलाइन स्टेटस बाबा।

0: गुरुदत्त, दर्द को खूबसूरती में बदलने की कलाकार। दोस्तों, कुछ लोग फिल्में बनाते हैं और कुछ लोग अपनी रूह स्क्रीन पर उतार देते हैं। ऐसे ही एक फिल्म मेकर थे गुरुदत्त। उनका असली नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोणे। 1925 में उनका जन्म हुआ था। गुरुदत्त सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे, वो एक शायर थे जो कैमरे से कविता उतारते थे। उनकी फिल्म देखिए, हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसी लगती है। उनकी सबसे मशहूर फिल्म प्यासा एक ऐसे शायर की कहानी जिसे दुनिया तब तक नहीं पहचानती जब तक वो मर नहीं जाता। ये फिल्म सिर्फ कहानी नहीं थी, ये समझ पर एक सवाल थी। क्या हम सिर्फ सफलता को ही सलाम करते हैं या इंसान को भी देखते हैं? गुरुदत्त की फिल्म मेकिंग की सबसे खास बात थी लाइट और शैडो का इस्तेमाल। उन्होंने अंधेरे को दुश्मन नहीं बनाया, उस अंधेरे में खूबसूरती दिखाई। उनकी फिल्म कागज के फूल में स्टूडियो लाइट्स का यूज इतना आर्टिस्टिक था कि हर सीन एक इमोशनल पेंटिंग जैसा बन गया। एक सीन में जब लाइट ऊपर से गिरती है और चेहरा आधा रोशनी में आधा अंधेरे में होता है, वो सिर्फ लाइटिंग नहीं, वो कैरेक्टर के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट था, दरार थी। गुरुदत्त साइलेंस का भी यूज बहुत खूबसूरती से करते थे। उनकी फिल्में जल्दी नहीं भागती थी, वो रुक कर ठहर कर महसूस करवाती थी। उनकी फिल्म साहेब बीवी और गुलाम के क्या कहने एक और मास्टरपीस। इस फिल्म में उन्होंने एक जमींदार घराने की गिरती हुई इज्जत को इतनी सेंसिटिविटी से दिखाया कि आज भी लोग उसे देखकर हिल जाते हैं। उनकी हीरोइन स्ट्रॉन्ग थी, दर्द से भरी हुई थी, लेकिन टूटती नहीं थी। गुरुदत्त का सिनेमा ग्लैमरस नहीं, पोएटिक था। वो कैमरा को आंख नहीं, दिल बना देते थे। म्यूजिक उनकी फिल्म्स की जान होता था, गीत कहानी को आगे बढ़ाते थे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का साथ मिला। ऐसे गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाए जाते थे। लेकिन उनकी पर्सनालिटी और पर्सनल जिंदगी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड थी। सक्सेस मिली तो सही, लेकिन अंदर एक तन्हापन कभी खत्म ही नहीं हुआ। सिर्फ 39 इयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया। बहुत छोटी सी जिंदगी, लेकिन इतनी गहरी छाप छोड़ गए कि आज भी उन्हें लेजेंड कहा जाता है। गुरुदत्त ने हमें सिखाया कि दर्द को छुपाओ मत, उसे कला बना दो। उनकी फिल्में आज भी देखोगे तो लगेगा जैसे कि अपना दिल पढ़ लिया हो। उन्होंने सिनेमा को एक कला बनाया, एक इमोशन बनाया। और जब हम उनका नाम लेते हैं ना, तो सिर्फ एक डायरेक्टर या एक्टर नहीं याद आता, एक एहसास याद आता है। गुरुदत्त हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक कहानी है, और अगर उसे सच्चाई से बताया जाए तो वो अमर हो जाती है।
1: हाँ, देर यू आर, चलो आज पिक्चर देखते हैं।
2: नहीं नहीं, पिक्चर नहीं, आज हम लोग डिस्को जाएंगे।
1: नहीं,
2: चलो जल्दी से चेंज कर लो अभी।
1: क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस?
2: ये भी कोई कपड़े हैं, बिल्कुल बेकार लगते हैं।
1: बेकार तो

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: उनके हीरो सिक्स पैक नहीं बनाते थे, वो सेविंग्स अकाउंट बनाते थे, क्योंकि असली टेंशन ये नहीं थी कि विलन कौन है, असली विलन था मंथ एंड।

ऋषिकेश मुखर्जी, जिंदगी को मुस्कुराकर दिखाने वाले कहानीकार। दोस्तों, इंडियन सिनेमा में कई बड़े नाम आए, कुछ ने बड़े सेट बनाए, कुछ ने बड़े डायलॉग्स लिखे, लेकिन एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्हें लोग प्यार से ऋषि दा बुलाते थे। नाम था ऋषिकेश मुखर्जी। उनकी फिल्म मेकिंग देखकर लगता था जैसे कि कोई कहानी अपनी ही स्क्रीन पर चल रही हो, ना ओवर ड्रामा, ना अननेसेसरी हीरोगिरी, बस सीधी साफ दिल से जुड़ी हुई जिंदगी। 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ। शुरुआत उन्होंने कैमरामैन और एडिटर के रूप में की। एडिटिंग ने उन्हें एक बहुत बड़ा लेसन दिया, फिल्म की जान होती है उसकी रिदम, और शायद इसी वजह से उनकी हर फिल्म में एक बैलेंस होता है। कॉमेडी भी होती है, आंसू भी होते हैं, लेकिन सब कुछ एक नेचुरल फ्लो में। उनकी सबसे मशहूर फिल्म है आनंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का वो कॉम्बिनेशन, लेकिन कहानी का असली हीरो था जीने का नजरिया। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग सिर्फ लाइन नहीं है, ये जिंदगी का सार है। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स हमें लाइफ को हेवी नहीं, हल्का लेकर जीना सिखाती हैं। फिर आती है गोलमाल, एक सिंपल सी कहानी, एक लड़का, एक झूठ, और इस झूठ को बचाने के लिए हजार नए झूठ। लेकिन फिल्म में ऐसी टाइमिंग थी, ऐसी सिंप्लिसिटी थी कि आज भी लोग उसे देखकर हंस हंस के रुकते नहीं। उनकी कॉमेडी लाउड नहीं होती, वो सिचुएशन से निकल कर आती है। जैसे घर में पापा का स्ट्रिक्ट होना और बेटे का चुपके अपनी लाइफ जीना, चुपके चुपके। एक और मिसाल, लैंग्वेज पर मजाक, पर प्यार के साथ। ना किसी का मजाक उड़ाया गया और ना किसी को नीचे दिखाया गया। ऋषिदा का एक खास स्टाइल था, वो एक्टर्स को ओवर एक्टिंग करने नहीं देते थे। वो कहते थे, जैसे घर में बात करते हो वैसे ही बोलो, और इसीलिए उनकी फिल्म एक्टिंग नहीं लगती थी, वो रियल लगती थी। उन्होंने मिडिल क्लास को हीरो बनाया, ना बड़े महल, ना फॉरेन लोकेशंस, बस एक नॉर्मल सा घर, डाइनिंग टेबल, छोटी सी प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम में छुपी हुई एक बड़ी सी सीख। उनकी फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना एक ऐसे नौकर का रोल करते हैं जो घर घर जाकर उसे जोड़ते हैं, और फिल्म का मैसेज सिंपल था, घर टूटते नहीं, ईगो से तोड़ दिए जाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा परिवार के साथ बैठकर देखने लायक था। उनकी फिल्में आपको अनकंफर्टेबल नहीं करती थी, वो आपको इंसान बनाती थी। उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में बनाई, और हर फिल्म में एक कॉमन बात थी, ह्यूमैनिटी। ना हीरो परफेक्ट होता था, ना विलन पूरा बुरा होता था, सब इंसान होते थे, गलती करते थे, सीखते थे। आज के दौर में जब सिनेमा में शोर ज्यादा है, तब ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में याद दिलाती हैं कि कहानी दिल से बनेगी, तभी दिल तक पहुंचेगी। वो हमें हंसा कर रुला देते थे और रुला कर जीना सिखा देते थे, और शायद इसीलिए उन्हें मिडिल सिनेमा का किंग कहा गया। ना प्योर कमर्शियल, ना आर्ट सिनेमा, एक बीच का रास्ता जो सबको अपना सा लगता था। ऋषिदा ने हमें बताया कि जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, पर उसे सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। और जब तक इंडियन घरों में हंसी गूंजती रहेगी, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में जिंदा रहेंगी।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पहले बालकनी रोमांस होता था, आज बालकनी में सिर्फ कपड़े सूखते हैं और पड़ोसी के वाईफाई का सिग्नल पकड़ते हैं। प्यार भी प्रैक्टिकल हो गया है। What?

0: खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही है यही तो है वो।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, थोड़ा सा जोश से भर जाते हैं, थोड़ा उत्साहित होते हैं। पूरी जिंदगी हमारी उसी पर निर्भर करेगी दोस्तों। दोस्तों, हमारे पूर्वजों की जीवन शैली हेल्दी रहने के लिए इसलिए थी क्योंकि वो प्रकृति के पास थे, नेचर के नजदीक थे। सुबह सुबह का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में भजन पूजन करते थे। वे मुर्गे की बांग के साथ उठते थे और चांद निकलने पर तुरंत सो जाते थे। वो अपने शरीर को प्रकृति के साथ चलाते थे। आज प्रकृति का मनुष्य से संपर्क तो टूट ही चुका है। रात को देर तक जागने से, सुबह देर से उठने से इस फूर्ति का अभाव तो होता ही है और आलस भरा रहता है। नए अनुभवों से सामंजस्य बैठाने के लिए पॉजिटिव आत्मक छवि यानी कि अपने बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके एक्शन बदल जाते हैं, जिससे आपकी उपलब्धियां बदल जाती हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने, सम्मान पाने और अच्छे परिणामों से सकारात्मक बदलाव लाने की चाबी अच्छी आत्म छवि बनाए रखने में है। अपने बारे में अच्छा सोचिए दोस्तों। अपनी बातों पर अड़े रहने का रवैया आपकी तरक्की की राह में बाधा बन जाएगा दोस्तों। फ्लेक्सिबल होना सीखिए, लचीला बनना सीखिए। इस अड़ियलपन से निजात पाने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को उस समय हटाना ही पड़ेगा जब कोई ये साबित कर रहा हो कि इससे नया और बेहतरीन विचार उनके पास है।

जरा सुन तो लीजिए क्या फर्क पड़ता है। ठहराव से बचना है तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप गलत हो सकते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि वो नए के लिए तैयार रहे।

ये करीब 90 साल पुरानी बात है। एक बनारसी बंगाली किशोर बड़े ही शौक से कलकत्ता पहुंचा। देश की राजधानी रह चुका हुआ यह शहर तब दिसंबर की गुलाबी ठंड से सराबोर था। कलकत्ते से समुद्र ज्यादा दूर नहीं है, पर वो उस हुगली नदी की गोद में बसा हुआ है जिसमें गंगा का जल बहता है। बड़ी खूबसूरत बात है कि बंगाल में आते ही गंगा जी ज्यादा कलाकार हो जाती हैं, अपना नाम बदलकर पद्मा और हुगली रख लेती हैं। बहरहाल वो जमाना था जब कलकत्ते में खड़े होकर बनारस के रंग को महसूस किया जा सकता था। वो किशोर भी बस उसी रंग में डूबा हुआ था। कहीं से सितार, कहीं से शहनाई, तो कहीं से मृदंग की गूंज उठती थी। वहां विशाल संगीत समारोह चल रहा था। देश भर के आला संगीतज्ञ वहां थे, एक से बढ़कर एक सजीले, खूब चमकदार रंगीन पोशाकें और उन पर शोभित खूब सारे पदक मेडल्स, उस पर से भी भारी भरकम गहनों के क्या कहने, मानो किसी राजा की बारात जा रही हो जिसमें खूब सारे राजा राजकुमार आए हों, पूरा जौहर जलवा दिखाने। पर सजीलों की भीड़ में एक बहुत ही सादे और साधारण से व्यक्ति भी विराजमान थे। बस उन्हीं पर किशोर की नजर ठहर गई। वो किशोर 4 साल से नर्तकों की दुनिया का वासी था। 10 साल की ही उम्र में यूरोप घूम रहा था। एक से बढ़कर एक कलाकार सामने आए थे उसके, पर अभी नजर बार बार ऐसे सज्जन पर ठहर जाती थी जो कतई प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। किशोर ने शायद अपने बड़े भाई उदय शंकर से पूछा तो पता चला कि ये साधारण से दिख रहे संगीतज्ञ का नाम उस्ताद अलाउद्दीन खान है। कई तरह के साज बजाते हैं, किसी संत की तरह रहते हैं। वाकई वो किसी दीपक की तरह लग रहे थे जिनकी संगीतमय आभा कानों में घुल रही थी, दिल में उतर रही थी और नसों में पसर कर रोम रोम को हर्षित कर रही थी। जब शारदा मां की पावन भूमि मैहर से आए उस्ताद का संगीत सामने आया, तब चारों तरफ फैले सजीले लोग अपना अर्थ खो बैठे। मन बोल उठा कि ऐसे उस्ताद से जरूर कुछ सीखना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात रही कि उदय शंकर की गुहार पर उस्ताद नृत्य मंडली के साथ यूरोप जाने को तैयार हो गए। अब तो उस किशोर को उस्ताद के साथ सुबह शाम रहने का मौका मिल गया। कभी कभी किशोर के मन में होता था कि वो अलाउद्दीन खान साहब को विधिवत उस्ताद बना ले, तो कभी किशोर का मन कच्चापन से हावी हो जाता था। तब उस्ताद ने कहा, तुम पहले तय कर लो कि करना क्या है, सीखना क्या है, कहीं एक जगह मन लगा लो तो चले आना मेहर और सीखना। खैर, एक दिन आया जब शिष्य ने फैसला कर लिया। बड़े भाई की ग्लैमरस नृत्य मंडली को अलविदा कहा और बहुत साधारण लिबास में मेहर पहुंचकर उस्ताद के चरणों में समर्पित हो गए। उस्ताद बहुत पक्के थे। उन्होंने ना सीखने में समझौता किया था और ना ही सिखाने में। उस्ताद ने अपनी बेटी अन्नपूर्णा देवी और बेटे अली अकबर खान के समान ही मानकर अपने उस शिष्य को पारंगत किया। पूरे मनोयोग से सीखने सिखाने का दौर चल पड़ा। राग भैरव से भोर होती थी, भीम पलासी से दोपहरी तपती थी, यमन से शाम और मल्लार से रात चढ़ती थी। उस्ताद के आंगन में रोज 18 घंटे संगीत लहरियां उठती थी। वो संगीत के मेहर घराने का स्वर्णिम काल था। अकबर सरोद सीखते थे, अन्नपूर्णा सुरबहार, और उस युवा को सितार के तार पर उंगलियां साधने में लगभग 7 साल लग गए। तब दुनिया को पंडित रवि शंकर के रूप में
एक विरल संगीतज्ञ मिला। ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से न्यूयॉर्क लंदन तक पंडित रविशंकर के नाम का सिक्का चलता था। संगीत के जादू से सम्मान की बारिश तो होती ही थी। 7 अप्रैल को दुनिया में आने वाले रविशंकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने उस्ताद को किसी ईश्वर की तरह मानते थे और हमेशा तमन्ना रहती थी कि उस्ताद कुछ और सिखा दें। देश की अद्भुत हस्ती उस्ताद ने भी रविशंकर को सब कुछ दिया। अपनी बेटी अन्नपूर्णा का हाथ देकर दामाद भी बनाया। वो संसार के व्यस्ततम संगीतज्ञों में शुमार रखते थे। आज यहां तो कल वहां। उस्ताद ने एक बार उन्हें डांटा भी, तुम तितली की तरह हो, एक साथ बहुत सारी चीजें करते हो। समय बदला पर एक साथ कई काम की ललक छूटी नहीं। फिल्मों के लिए भी खूब काम किया। राज्यसभा में मनोनीत हुए, भारत रत्न से नवाजे गए। वो कहते थे, जब मैं कोई राग बजाना शुरू करता हूं तो सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया को बंद कर देता हूं और फिर अपने भीतर गहराई तक उतरने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, ऐसी कोशिश का ही तो कमाल है कि उनका संगीत अमर है।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: एक बार सोनू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। आदमी बहुत गुस्से में चिल्ला, मेरे सर पे आके बैठ जा। सोनू बोला,
3: नहीं अंकल, मैं यही ठीक हूँ, वहां से फिसल कर तो गिरने का डर रहता है ना।

संत मेहजी के प्रकांड पांडित्य और विरक्त स्वभाव की ख्याति पूरे जापान में फैली हुई थी। अक्सर जिज्ञासु उनके पास आते थे और अपनी शंकाओं का समाधान लेकर संतुष्ट होकर लौट जाते थे। एक दिन जापान के राज्यपाल कियाजारी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने निजी सचिव को अपना परिचय पत्र यानी कि विजिटिंग कार्ड दिया और संत जी के कमरे में भेजा। संत जी ने विजिटिंग कार्ड पढ़ा, उसमें उनके राज्यपाल होने की चर्चा थी। संत जी ने सचिव से कहा, सुनिए भैया, उनसे कहिएगा कि मैं राजकाज की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता, क्योंकि मुझे दरअसल राजनीति की बातें आती ही नहीं है। मैं तो केवल धर्म और साहित्य की चर्चा कर सकता हूं। निजी सचिव ने बाहर लौटकर राज्यपाल को संत जी के सारे बातों के बारे में बताया। राज्यपाल जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कागज पर सिर्फ अपना नाम लिखकर भेज दिया। संत जी ने उन्हें बुलवा लिया। घंटों तक बैठकर उनके साथ धर्म की और ईश्वर के संबंध में चर्चा आई करते रहे। जब राज्यपाल लौटने लगे तो संत मेहजी ने कहा, देखिए महाराज, धर्म का सार सेवा, परोपकार, न्याय और करुणा जैसी चीजें होती हैं। ये सभी गुण मानव को अमर बनाते हैं, उसे शांति देते हैं। आप व्यावसायिक तौर पर क्या करते हैं, ये आप नहीं हैं, तो इसे हर जगह पर दिखलाते मत घूमा करिए। दोस्तों, समझने वाली बात है, जब कोई हमसे पूछता है कि आप कौन हो, तो हम बताते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम टीचर हैं, हम मजदूर हैं, हम ठेकेदार हैं, हम आर्किटेक्ट हैं और जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें वो काम हैं जो आप करते हैं? मरीजों को ठीक करना डॉक्टर का काम है, तो आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। कोई ब्रिज बनाना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कोई नई चीज को बनाना इंजीनियर का काम है और आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से और चीजें, पर दोस्तों, आप दरअसल हैं कौन? आराम से विचार करिएगा। हमारे पद, हमारे काम, क्या यही बस हमारी पहचान है? इन काम और पदों के पीछे भला हम हैं कौन? एक बार पूछ के देखिएगा किसी से।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: माँ, ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं? माँ ने कहा, बेटा इतनी आसानी से थोड़े ही मिल जाएगा किसी को। तू पिल्लू जो था वो मनी मन सोचता हुआ सोचने लगा, कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग सी आ रही है।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। जर्मनी के क्लॉस्टल शहर में उस बच्चे ने होश संभाला, तब अपने परिवार को खूब लंबा चौड़ा पाया। उसके दो तो बड़े भाई थे और उससे छोटे 10 भाई बहन, मतलब पूरे 11 भाई और 2 बहनें। छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के बड़े होने का इंतजार रहता था ताकि बड़ों के कपड़े उन्हें मिल जाएं। हफ्ते में 2 दिन अच्छा खाना मिलता था, बाकी दिन सूखी ब्रेड। शक्कर का तो स्वाद बच्चों ने चखा ही नहीं था। पिता खदान में काम करके बस जरूरी धन कमा पाते थे। देर रात जब पिता सुस्ताते थे तब दूर देश की कहानियां सुनाते थे, तो वो बच्चा भी दुनिया घूमने की तमन्ना से भर जाता था। धन की सीमा होती है पर मन की तो नहीं ना, मन तो बार बार सरहदें लांग जाता है। सरहद पार की खबरें अखबारों में ही आती हैं, तो वो बच्चा आसपास आने वाले अखबारों में झांकने लगा। अखबार पढ़ने वालों से सुनता रहता था और पढ़े हुए अखबार को बार बार पलट पलट कर देखता था। एक एक अक्षर में झांकते हुए वो बच्चा अखबार पढ़ना सीख गया। एक दिन मां बाप दोनों दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए कि उनका महज 5 साल का बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये तो चमत्कार है। अक्षर तोतली आवाज में साकार होने लगे, जबकि बच्चा स्कूल भी नहीं गया था। खुशनसीब मां बाप ने मन ही मन इस बच्चे पर खास ध्यान देने का फैसला कर लिया। उसके बाकी भाई बहन खूब खेलते थे, लेकिन वो जीव जंतु फूल पत्ती में ही लगा रहता। एक दिन वो पिता के टूटे हुए संदूक के सामान को देख रहा था, उसमें उसे एक पुराना पॉकेट लेंस दिखाई दिया। उस मैग्नीफाइंग ग्लास में खरोंच के निशान थे, पर बालक ने उसे उठा लिया और पिता के पास पहुंचा। पापा ये मुझे दे दीजिए ना, मैं अपने जंतुओं को इसकी मदद से देखूंगा। पिता फिर चौंक उठे और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानते थे कि उनका पुत्र प्रकृति के प्रति अथाह जिज्ञासा से भरा है, तो इसे रोकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने खुशी के साथ कहा, लेंस ले लो बेटा और सदुपयोग करो इसका। फिर क्या था, वो बच्चा घंटों जीव जंतुओं को निहारा करता और उसे अलग ही संसार नजर आने लगा। प्रकृति प्रेम ही उसे चिकित्सा शास्त्र की ओर ले गई, और इसमें एक खास पहलू ये भी था कि डॉक्टर बनने से तब दुनिया के घूमने की संभावनाएं बढ़ सकती थी। उम्र कुछ बढ़ी तो दोनों बड़े भाई कमाने के लिए अमेरिका चले गए, पर उसे मां ने जाने नहीं दिया। मां की इच्छा थी कि कम से कम एक संतान पढ़कर नाम रोशन तो करे। किसी तरह परिवार ने हिम्मत दिखाई और उसे स्कूल पास युवा को गोटिंगेन शहर उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। तब पिता तो पुत्र की तेजी देखकर सकुचा जाते थे कि अगर रुचि दिखाएंगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। समझदार युवा ने सोच लिया कि आगे का रास्ता उसे खुद तय करना है। विश्वविद्यालय में उसने एक शोध पत्र लिखा, जिसमें सबसे ऊपर उसने लिखा, कभी बेकार मत बैठिए, कभी निष्क्रिय मत रहिए। वाकई दुनिया जो देख रही है वो दुनिया जिसे केवल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है, दोनों में कुछ भी निष्क्रिय है ही नहीं। ये शोध पत्र इतना कामयाब हुआ कि उन्हें पूरे $60 पुरस्कार में मिले, संग्रहालय में नौकरी भी मिली और लोग उस विद्यार्थी को रॉबर्ट कोच के नाम से जानने लगे। रॉबर्ट कोच ने पिता को फिर अचंभित कर दिया। अपने मजाकिया लहजे में पिता को पत्र लिखा, कभी कभी ऐसा हो जाता है पापा, अंधी मुर्गी को भी मक्के का दाना मिल जाता है। समझिए मेरे साथ ऐसा ही हो गया।
अब जैसे जैसे परीक्षण की सुविधाएं बढ़ती गई, रॉबोट कोच विशेष रूप से खतरनाक बैक्टीरिया के चक्रव्यूहों को भेदते चले गए। सबसे पहले उन्होंने जानलेवा बीमारी एंथ्रेक्स के बीजाणुओं को खोज निकाला। चकित रोग वैज्ञानिक जूलियस कोहन हेम ने तब खुशी से भरकर कहा, यह तो बहुत बड़ी खोज है और ये युवा रॉबर्ट कोच अपने परीक्षण प्रतिभा में हमसे बहुत आगे निकल गया है। ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया का पीछा करते करते दुनिया को 24 मार्च 1882 को बताया कि जानलेवा बीमारी तपेदिक का रोगाणु कैसे काम करता है, और रातों रात वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। रोगाणुओं की विशाल बस्तियों में खोजते खोजते रॉबर्ट कोच ही थे जिन्होंने एक दिन बताया कि हैजा कैसे होता है। उनकी खोजों में अनेक प्रकार की दवाइयों के लिए रास्ता आसान बना दिया गया। कभी खूब अभाव देखने वाले इस इंसान ने खूब पैसे कमाए, लेकिन अहंकार छू न पाया उन्हें। वो कहते थे, मैं तो टहल रहा था, सोना राह के किनारे पड़ा था, संजोग से मुझे दिख गया बस। बेशक नोबेल प्राइज से सम्मानित इस वैज्ञानिक को दुनिया भूल नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: ये वीर गाथा है भारत माँ की मिट्टी के सपूत
2: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। उन्हें सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण शौर्य और पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
1: ये वो बहादुर सैनिक थे जिनकी बहादुरी की चर्चा दुश्मन के गलियारों में भी बड़े सम्मान से होती थी।
2: तो आइए सुनते हैं मित्रों कार्यक्रम
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
3: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण, बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया। अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
5: ठीक है जी।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।

0: ये तो किया, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट
1: जी।
0: फायर।
2: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
0: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
2: ठीक है सर।
3: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, तो पाकिस्तान में है और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बोले बोले।
2: अरे ये क्या, बच्चे कहाँ चले गए?
3: बच्चे
2: आए भी हैं या नहीं आए? एक काम करता हूँ, बाहर चलकर देखता हूँ। बच्चों तुम यहाँ छुपे थे? तुम यहाँ छुपे बैठे हो हैं? आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन ये तो बताओ, क्या मैं चोर हूँ? है? है? है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अब छोड़ो तो भाई, अब बैठ तो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तुम्हारी बात मान ली। आज मेरे अक्षर हैं ओ और ओ। ओ ओ
4: ओ
2: ओ। एक बार फिर ओ ओ
4: ओ ओ।
2: शाबाश। तो आज की मेरी कहानी का नाम है ओले बोले के औजार। ओले बोले के
4: औजार।
2: शाबाश। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओले बोले के औजार। शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी। कौन था?
4: व्यापारी।
2: अच्छा ये बताओ, व्यापारी होता कौन है?
5: वो सामान बेचता है।
2: सामान बेचता है,
6: जो चीजें बेचता है।
2: चीजें बेचता है, तरह तरह की चीजें।
7: वो साड़ी बेचता है।
2: साड़ी बेचता है।
8: वो लड्डू बेचता है।
2: लड्डू बेचता है।
9: वो खाना भी बेचता है।
2: खाना बेचता है।
10: वो लोहा बेचता है।
2: लोहा बेचता है।
11: वो बर्तन बेचता है।
2: बर्तन बेचता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो व्यापार करता है उसे कहते हैं हम व्यापारी। क्या कहते हैं?
4: व्यापारी।
2: शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी, उसका नाम था ओले बोले। क्या नाम था?
4: ओले बोले।
2: वो बहुत सारी चीजें बेचता था, जैसे कपड़ा, बर्तन, औजार। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। अच्छा औजार पता है ना क्या होता है? बताओ बताओ।
6: प्लास,
2: कीले,
6: पेचकस,
2: आरी,
6: हथौड़ी।
2: हथौड़ी, अरे वाह क्या बात है भाई, हमारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। सही कहा तुमने। हाँ इसके अलावा वो और भी कुछ बेचता था, बताऊं क्या क्या?
6: क्या भैया?
2: वो ओखली बेचता, और वो भी दो दो मूसल के साथ।
6: ये ओखली क्या होता है?
2: ओखली बेटा जिसमें मसाला कूटते हैं। हाँ ऐसे धम
4: धम
2: धम धम धम। हाँ तो बच्चों, वो ओखली बेचता दो दो मूसल के साथ, और हाँ साथ में लाल गुलाबी लहंगा भी बेचता था, जिसके साथ चार चूड़ियां भी होती।
7: बिल्कुल मुफ्त।
2: हाँ, बिल्कुल वो
7: गोलगप्पे के साथ पानी।
2: तो बच्चों बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मैं आगे कहानी सुना। हाँ तो सुनो कहानी। एक बार बच्चों हुआ ये कि ओले बोले की दुकान पर एक औरत आई। शाबाश। ओ से औरत। तो बच्चों वो औरत ओले बोले से बोली,
12: अरे ओले बोले भैया, एक ओढ़नी दिखा दो जिसमें मोर बने हो।
6: भैया ओ से ओढ़नी।
2: ओ से ओढ़नी। ओ से ओले बोले। हाँ तो ओले बोले ने उस औरत से कहा,
12: हाँ हाँ बहन जी, हाँ अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लाल, ये हरी, ये पीली, और ये लो एक और, ये है नीली।
2: तो ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओले बोले और ओ से

0: बात है, इसी बात पर हो जाए ताली जोरदार। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सब बहुत ही होशियार हो, बहुत ही प्यारे हो और बहुत ही समझदार भी हो। अब आगे सुनाओ कहानी।
1: हाँ भैया।
0: तो सुनो कहानी। तो बच्चों, ओले बोले ने कहा, बाबा जी ये दवा वहां सामने वाली दुकान पर मिलेगी, हाँ वहां जाइए आप। अच्छा बेटा,
1: मैं केमिस्ट से ले लूंगा।
0: वाह क्या बात है, केमिस्ट कौन होता है बताओ? जो दवाई बेचता है, जो दवाइयाँ बेचता है। हाँ पता है फिर क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
0: तभी वहाँ पर दो आदमी आए, पता है उनके नाम क्या,
2: क्या थे?
0: उनके नाम थे ओंकार और ओम। ओंकार और ओम, ओ से शाबाश, ओ से ओंकार, ओ से ओम और ओ से और ओंकार और ओम। अच्छा पता है वो दोनों क्या करने लगे? वो दोनों औने पौने पैसे देकर सारा सामान मांगने लगे, ओ से ओम।
1: वो चोरी कर रहे थे।
0: हाँ चोरी समझ लो, चोरी और सीना चोरी। ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से औने पौने। औने पौने यानी उल्टे सीधे, ठीक है बच्चों? तो कभी वो कहते, ए ओले बोले हमें 2 रुपए में ओखली दे दो, और वो भी 2-2 मूसल के साथ। हा?
2: हाँ,
0: हाँ, 1 रुपए में हथौड़ी दे दो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ,
1: 1 रुपए में साड़ी दे दो।
0: हाँ,
1: 1 रुपए में बर्तन दे दो,
0: बर्तन दे दो।
1: 1 रुपए में कुल्हाड़ी दे दो,
0: 1 रुपए में कुल्हाड़ी। फिर पता क्या हुआ?
1: क्या हुआ भैया?
0: हाँ वही तो बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। वो एक एक कर सारे औजार निकलवाते और कहते,
3: ये सामान तो बेकार है। अरे बिल्कुल बेकार है भैया,
4: तुम्हारे पास सारी चीजें ही बेकार है, कोई भी ढंग की नहीं है यहाँ पर। हाँ
1: ये तो बहुत बुरी बात है,
0: बहुत बुरी बात है,
2: बहुत बुरी बात है,
5: भी बुरी बात है।
0: तंग करना उससे भी बुरी बात है,
1: वो अच्छा नहीं कर रहे,
0: बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे।
1: क्या हुआ भैया?
0: बताता हूँ। फिर उनमें झगड़ा होने लगा, मार पिटाई शुरू हो गई। ओहो,
1: ओ से ओहो,
0: शाबाश। तो उनमें बच्चों खूब धक्का मुक्की हुई। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये ले, और ले, अरे क्यों मार रहे हो? बच्चों उनमें इतनी धक्का मुक्की हुई कि तभी ओले बोले, ओंकार और ओम तीनों औंधे मुंह गिरे जमीन पर।
1: बहुत बहुत चोटें लगी।
0: हाँ बहुत चोटें भी लगी होंगी।
2: और उनको बहुत दर्द हुआ,
0: बहुत दर्द हुआ,
1: वो घायल हो गए,
0: घायल हो गए, बिल्कुल सही।
2: और भैया औंधे।
0: हाँ तो उसके बाद बच्चों हुआ ये कि वो जो औरत ओढ़नी लेने आई थी ना,
2: हाँ भैया,
0: वो वहीं पर खड़ी थी और ये झगड़ा देखकर उसने तुरंत
1: पुलिस को फोन कर दिया।
0: हाँ बिल्कुल सही, उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो पुलिस को देखकर ओम और ओंकार डरकर सरपट भागे, लेकिन पुलिस की आंखों से ओझल नहीं हो पाए। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। तो बच्चों ओ से ओझल, ओ से ओढ़नी, ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से ओले बोले, ओ से औरत, ओ से औजार और ओ से औंधे। हाँ बच्चों बात दरअसल ये थी कि ओले बोले इतने अच्छे औजार बेचता था कि ओम और ओंकार उन्हें लेना तो चाहते थे पर पैसे देना नहीं चाहते थे।
1: ये तो बहुत बुरी बात है,
0: बहुत बुरी बात है, सच
2: ये
0: है।
2: बिल्कुल भी अच्छा नहीं,
1: हमें पैसे देकर चीज खरीदनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
2: हमें ईमानदार होना चाहिए,
0: बिल्कुल सही, ईमानदार होना चाहिए।
1: और चोरी कभी नहीं करनी चाहिए,
0: नहीं करनी चाहिए,
2: बुरी बात होती है,
0: बहुत बुरी बात होती है, शाबाश। तो बच्चों अब हुआ ये कि ओम और ओंकार को पुलिस ने पकड़ लिया और ओले बोले अपने औजार फिर से बेचने लगा और बाकी चीजें भी आराम से बेचने लगा,
1: और हथौड़े और कील और पेचकश और औजार बेचने लगा,
0: औजार बेचने लगा,
1: और पेच और चूड़ी,
0: ओढ़नी और चूड़ी
2: और साड़ी भी
0: साड़ी भी।

0: बर्तन
1: और पेज भी,
2: पेचकस भी, कपड़े
1: और आरी,
2: आरी शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसके बाद ओले बोले ने उस औरत का धन्यवाद किया और कहा,
3: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आपने मुझे आज बचा लिया।
4: अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था।
3: रुकिए रुकिए, आप ये खुरपी लीजिए मेरी तरफ से।
4: अरे मगर चलो ठीक है, मुझे खुरपी लेनी भी थी। धन्यवाद ओले बोले, धन्यवाद।
2: तो बच्चों, ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओ, ओ,
1: ओ।

0: कोई औषधि मिलती नहीं यहाँ।
1: तभी वहाँ दो आदमी आए, ओमकार और ओम था नाम। औने पौने पैसे देकर मांग रहे सारा सामान।
2: ला दे ओखली, दे मूसल, सारे औजार दे।
3: अरे इतना घटिया सामान कौन देगा तुझे इसके दाम?
1: कभी वो मांगे ओखली मूसल, एक एक करके सारे औजार बार बार देखे और बोले, ये सामान है बेकार।
4: खूब हुई धक्का मुक्की और ओले बोले गिरा घड़ा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: कितना हल्का कितना भारी,
2: कितना हल्का कितना भारी।
3: नमस्ते बच्चों। नमस्ते नमस्ते।
4: अरे भाई, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए।
5: हमें आज कहानी भी तो सुननी है। भैया, आज दीदी क्यों नहीं आई?
4: हाँ, ये बात है।
6: आनंद, लो मैं भी आ गई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों?
4: बढ़िया हो ना?
6: तो अनंत, आज तुमने बच्चों को बताया कि हम इन्हें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?
4: बस वही तो बताने वाला था। बच्चों, आज हम सुनाएंगे एक घोड़े की कहानी।
5: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना।
4: हाँ।
5: मैं एक बार घोड़े पे बैठा भी था।
6: अच्छा, अच्छा? बस एक ऐसा ही घोड़ा था जैजू और मन्नू के पास।
7: जैजू मन्नू कौन थे?
4: बच्चों, जैजू और मन्नू बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और उनके पास था एक घोड़ा।
5: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था।
6: बहुत तेज।
4: अरे वो तो बहुत ही ताकतवर भी था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा घोड़ा था। और पता है वो 700 किलोग्राम भार उठा सकता था।
7: 700 किलोग्राम?
4: हाँ, और वो भी बड़े आराम से।
5: 700 किलोग्राम?
4: हाँ।
5: इतना ज्यादा उठा लेता था वो घोड़ा?
4: हाँ श्रेया, अरे वो तो बहुत ताकतवर था,
6: लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। आलसी?
4: हाँ बच्चों, काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। वो तो बस सोता रहता था घोड़े बेचकर।
5: वो तो खुद ही एक घोड़ा था।
4: लेकिन बच्चों, ये तो कहावत है ना, घोड़े बेच के सोना है।
5: फिर क्या हुआ?
6: फिर एक बार जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। वो घर का सारा सामान घोड़ा गाड़ी में लादने लगे।
4: और फिर जैजू और मन्नू के पिताजी ने कहा, हाँ,
8: सबसे पहले इस पानी की टंकी को रख देता हूँ घोड़ा गाड़ी पर।
4: फिर जैजू और मन्नू की मम्मी बोली,
9: ये रहे 5 बोरी गेहूँ, इन्हें भी रख देती हूँ।
10: अरे अरे भाई, ये 3 मेज तो रह गए। अरे पापा।
8: अरे बेटा, ले आ ले आ।
4: और घोड़ा कहने लगा,
10: अरे इतना भार, अरे मैं कैसे उठाऊं,
8: पहले ही बहुत थक गया हूँ।
6: अरे रुको रुको, 4 कुर्सियाँ भी बाकी हैं। और उसके बाद जैजू और मन्नू ने 4 कुर्सियाँ, 1 अलमारी, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल और रखे।
4: तब घोड़ा बोला,
10: अरे इतना भार।
6: अरे रुको रुको रुको, अभी तो और भी सामान है। और तब जैजू और मन्नू ने एक बांस की सीढ़ी, कुछ और बर्तन भी रख दिए।
4: और बच्चों, घोड़ा बोला,
10: अरे अरे अब मैं और नहीं उठा सकता इतना भार। अरे इतना सारा सामान, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे
5: घोड़ा बोला, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ?
6: और तब जैजू और मन्नू के पापा ने उनसे कहा,
8: जैजू मन्नू।
10: जी पिताजी।
11: जी पिताजी।
8: भाई, लगता है घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो 700 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं उठा सकता।
5: वो बहुत भारी हो गया था क्या? वो 1000 किलोग्राम हो गया था?
6: अरे रुको रुको। पहले तो जैजू और मन्नू के पापा ने उन्हें सामान के बारे में बताया, वजन के बारे में जानकारी दी, और फिर जैजू और मन्नू सामान का भार जोड़ने लगे।
4: हाँ बच्चों, तुम भी जैजू और मन्नू का साथ दो और उनके साथ मिलकर सामान का भार जोड़ो।
7: ठीक है।
4: तो एक गेहूं की बोरी का वजन है 100 किलोग्राम।
7: 100 किलोग्राम।
4: हाँ, और एक चावल की बोरी और एक अलमारी मिलाकर हुई 105 किलोग्राम।
7: 105 किलोग्राम।
6: तो बच्चों बताओ कुल कितना भार हुआ, 100 और 105 किलोग्राम?
5: 205।
4: 205 क्या?
5: ग्राम।
4: सिर्फ ग्राम?
5: किलोग्राम।
4: शाबाश, ये हुई ना बात, 205 किलोग्राम। हाँ, तो अब बारी आती है कुर्सी की। एक कुर्सी का भार है 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है?
7: 5 किलोग्राम।
4: और पहले जो भार था वो था 205 किलोग्राम। तो अब हमने इसमें 5 किलोग्राम और जोड़े तो कितना भार हो गया?
7: 210 किलोग्राम।
4: शाबाश, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ, तो भाई अब बारी आती है पानी की टंकी की। और जानते हो पानी की टंकी का भार कितना है?
7: कितना है?
4: 50 किलोग्राम।
7: 50 किलोग्राम।
4: हाँ, तो अब बताओ कुल मिलाकर कितने किलोग्राम हुए? अभी तक भार था 210 किलोग्राम, उसमें हमने पानी की टंकी का भार जोड़ दिया यानी कि 50 किलोग्राम जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम भार हो गया?
7: 235 किलोग्राम।
4: अरे नहीं बचवा, 235 नहीं, 210 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पानी की टंकी का भार मिलाया तो कुल मिला के कितना भार हो गया?
7: 260 किलोग्राम।
4: शाबाश, इसी बात पर बजाओ ताली। तो 260 किलोग्राम के बाद आया 10 किलोग्राम का मेज।
5: 270 ग्राम।
4: सिर्फ ग्राम?
5: किलोग्राम।
4: शाबाश, ये हुई ना बात, किलोग्राम। शाबाश।
6: और अब बारी आती है गद्दे की।
4: भाई एक गद्दा है 20 किलोग्राम का।
5: 290 किलोग्राम।
4: क्या बात है भाई, बच्चे वैसे बहुत होशियार हो गए हैं।
6: बहुत होशियार।
4: अब बारी आती है बांस की सीढ़ी की, जिसका भार है 10 किलोग्राम।
6: तो बच्चों अब बताओ कुल कितना भार हुआ,
4: यानी 290 किलोग्राम पहले और अब 10 किलोग्राम मिलके हो गया
7: 300 किलोग्राम।
6: बिल्कुल ठीक बताया,
4: 300 किलोग्राम। अच्छा बर्तन तो रह गए है ना।
5: हाँ।
4: तो बर्तन हुए 10 किलोग्राम के।
7: 310 किलोग्राम।
4: हाँ, 310 किलोग्राम।
6: वाह वाह वाह वाह। तो भाई ये तो सब बच्चों ने मिलकर बता दिया।
4: क्या बात है, क्या ताली।
6: तो बच्चों अब ये बताओ 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कम हुआ या ज्यादा?
7: कम।
4: बच्चों जैजू और मन्नू ने कहा,
10: अरे घोड़े भाई ये तो बस 310 किलोग्राम है, तुम तो 700 किलोग्राम भार उठा सकते हो।
4: घोड़ा शर्माने लगा और बोला,
10: अरे अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ।
5: हाँ? मेरा तो सर दर्द भी नहीं हो रहा, मेरे को टांग भी नहीं दर्द।
10: अरे अरे ये तो बहुत ही हल्का है, अरे मैं अभी ले चलता हूँ। जैजू और मनु, अरे तुम भी बैठ जाओ घोड़ा गाड़ी पर, बैठ जाओ शाबाश। और हाँ सुनो सुनो, अरे पापा को भी तो बिठाओ। हाँ,
5: मम्मी को भी तो बिठाओ।
10: अरे हाँ, अरे बुलाओ भाई, मम्मी को भी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, अब मैं सर पर दौड़ लगाता हूँ।
6: अरे अनंत रुको रुको रुको भाई, यही रोक दो अपनी घोड़ा गाड़ी को, कुछ और भी बाकी है।
4: अरे आकृति क्या बाकी है भाई?
6: आज का सवाल।
4: सही याद दिलाया तुमने। तो बच्चों आज का सवाल है 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितना कम है, यानी कितने किलोग्राम कम है। सवाल एक बार फिर सुन लो, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितने किलोग्राम कम है। तो घर जाकर सोचो और पता लगाओ, लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपके रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह वो उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसको इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
2: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह 2 चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये 2 तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल

0: परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
1: जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
0: जी बताइए डॉक्टर।
1: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
1: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
0: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
1: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
0: अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
1: जी,
0: और डॉक्टर साहब, एक
3: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
0: बताइए।
1: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
0: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
1: ये जब अभियान चलता है, हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
0: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
1: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
0: अच्छा। जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा ज्यादा
1: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
0: जी,
4: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
0: जी बताइए।
1: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
0: जी
5: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
6: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
8: किसान साथियों, रेडियो टाइंटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो टाइंटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, कृषि भूमि का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। बदलते इस पर्यावरण के समय में हमें वातावरण के अनुकूल खेती करने की आवश्यकता है। किसान साथियों, आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि किस तरह दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, साथ ही हमारी कृषि भूमि में भी जो बदलाव देखे जा रहे हैं, उनको देखते हुए किसान साथियों हमें बहुत जरूरी है यहाँ पर हमारे खेतों में, हमारे पर्यावरण में एक बदलाव की जरूरत। जी हाँ किसान साथियों, हमें यहाँ पर हमारी मृदा परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है। हमें तभी पता चल पाएगा कि हमारी जो मृदा है वो अभी कितनी स्वस्थ है। हमारी मृदा परीक्षण के साथ ही हमें हमारी भूमि में उर्वरक और पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। तो किसान साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं।
9: हाँ बिल्कुल मैडम, ये एक्चुअली किसान भाइयों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारा स्वास्थ्य होता है ऐसे मिट्टियों का भी स्वास्थ्य होता है। और उनको देखो, हम लोग अपना बोली भाषा में हम बता सकते हैं कि आज हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मिट्टियां हैं जो अपनी वो बता नहीं सकती। लेकिन जो उसमें हमारे किसान भाई दिन प्रतिदिन जो भी हमारी खेती की जो गतिविधियां करते हैं उनसे उनको थोड़ा सा पता लगता है कि हमारी मिट्टियां पहले अच्छी काम कर रही थी, अच्छा उपज हो रही थी, अच्छी फसल हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे यदि आपकी फसलों की बढ़वार में कुछ कमी आती है या उनमें विशेष प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो इससे किसान भाई को ये पता लगता है कि कहीं न कहीं उनकी मिट्टियों में कुछ प्रॉब्लम आने लगी है। अब ये इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि मिट्टियां बोल नहीं सकती, तो हमको उनका परीक्षण करके जितने भी हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं जिनको हमारे पौधे की बढ़वार के लिए, उनकी गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं, उनकी हमारे जितने भी हमारे जो सरकारें हैं इन्होंने हर जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं की हैं, उनमें इनका परीक्षण कराना चाहिए जिससे मिट्टियों में उनकी क्या स्थिति है, मतलब वो कितने किस लेवल तक पैदावार दे सकती हैं कि नहीं दे सकती, क्योंकि ये उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और उसमें कोई तरह का विकार यदि उत्पन्न हो गया है उस पर आधारित है। तो हमारे को जैसे मिट्टी परीक्षण इसलिए बहुत जरूरी है, किसान भाइयों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह का हम अभी जो बहुत हाई उपज वाली जो किस्मों का यूज कर रहे हैं, फसलों का यूज कर रहे हैं, और फिर दूसरी बात अभी गुणवत्ता की जो बात आ रही है, तो ये सब चीज हमारी मिट्टियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है और मिट्टियों का स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ मृदा परीक्षण के द्वारा ही जांच किया जा सकता है।
8: बिल्कुल जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, मिट्टी कुछ नहीं कहती। जी हाँ किसान साथियों, मिट्टी को पहचानना बहुत जरूरी है। आप और हम में से काफी किसान भाई हैं जो मिट्टी को पहचान सकते हैं, मिट्टी को किस चीज की आवश्यकता है, समय समय पर मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी होती है, इस बात से हमारा किसान भली भांति वाकिफ है। परंतु फिर भी हमें यहाँ पर एक बार पुनः हमारी मृदा का परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
8: किसान साथियों, जैसा कि आप और हम जानते हैं, हम वातावरण के अनुकूल खेती करते हैं और एक वर्ष में अनुमानित 4 से 5 फसलों की उपज हम लेते हैं। तो किसान साथियों, उपज के अनुसार, हमारी फसल के अनुसार हम हमारे खेतों में अलग अलग कीटनाशकों का, अलग अलग खरपतवार नाशकों का और खादों का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, हम जिन अलग अलग फसलों को तो हमारे खेतों में लगा लेते हैं, लेकिन हमारा जो खेत है, हमारी कृषि भूमि है, वो नहीं बदलती है, वह एक ही होती है। वहाँ पर फसलें हम बदला करते हैं और हम हमारी कृषि भूमि को ना देखते हुए सिर्फ हमारी फसलों को देखकर उनमें कीटनाशकों का, खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, हमारी कृषि भूमि हमारी फसलों को ही नहीं, हमारी फसलों से जो कीटनाशक, जो रसायन हमारी मृदा के साथ जाके मिलते हैं, क्या हमारी मृदा उसे पचाने में सक्षम है या नहीं है, इन सभी बिंदुओं पर डालेंगे एक नजर। उससे पहले आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
6: खेती किसानी सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है।
10: अगर खेत की मिट्टी सेहतमंद होगी तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी। अच्छी पैदावार के लिए खेत की मिट्टी में मौजूद तत्वों की मात्रा और मिट्टी की सेहत जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण जरूरी है। बता दें कि पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। ये निचली पथरीली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता भी होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। सरकार भी बीमार मिट्टी की सेहत सुधारने पर खास ध्यान दे रही है, जिसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। मिट्टी की जांच के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है, इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है और कौन कौन सा उर्वरक अपने खेत में डालना चाहिए। इसी तरह मिट्टी का प्रबंधन करके भी आप अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके लिए खेतों में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करने का असर फसलों की गुणवत्ता और पैदावार पर पड़ता है।
8: किसान साथियों, अभी आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। अभी आइए डालते हैं एक नज़र प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के ऊपर।
10: प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती जमीन के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होती है। लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती वरदान है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं। इसके अलावा अक्सर मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। बता दें कि किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदे का सौदा है।
9: बिल्कुल मैडम, जैसे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो किसान भाइयों के साथ आज तक मतलब इसमें जो गलती करते हैं वो नमूना लेने में करते हैं। अब जैसे हमें किसान भाइयों को ये बताना है कि जैसे आपकी दो तरह की फसल होती है, एक होती है सीजनल जो एक सीजन में खत्म हो जाती है, दूसरी पेरिनियल होती है जो वर्षों तक चलती है। तो इन दोनों का जो सैंपल लेने का तरीका है वो उसकी मिट्टी की गहराई पे अलग अलग होता है। जैसे आप पहले जो भी अपना एरिया है उसको पहले आप तीन चीजें आपकी देखनी होगा, एक मिट्टी का कलर, एक मिट्टी का स्लोप और एक उसका कणाकार। यदि ये तीनों में उसमें समानता है तो किसान भाई एक हेक्टर तक एक सैंपल ले सकते हैं उसमें कोई। और जो सैंपल जब लेना है तो किसान भाई अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो खेत के चारों कॉर्नर से लेंगे और एक मिडिल से लेंगे, तो ये एकदम गलत तरीका है। उनको क्या करना चाहिए, बॉर्डर से दो दो मीटर जगह छोड़ें और जो भी अपना ट्यूबवेल है या अपना कोई बीच में पेड़ है या कोई कंपोस्ट पिट है या कोई बिल्डिंग है, इन जगहों से भी वो अपना दो दो मीटर जगह छोड़ने के बाद ही सैंपल एकत्रित करें। सैंपल की जो गहराई है उसकी जो हम बात कर रहे थे, सीजनल में हम 0 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, मतलब 6 इंच। और जो हमारी बागवानी फसलें हैं या जो मेडिसिनल प्लांट वगैरह जो पेरिनियल चलने वाली क्रॉप हैं, इनका प्रोफाइल सैंपल लेना होता है जिसमें 1 मीटर तक के गड्ढे बनाए जाते हैं। वो 1 मीटर के गड्ढे के फिर 3 भाग बनाए जाते हैं, जो एक 0 से 30 सेंटीमीटर का, 30 से 60 और 60 से 90 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो आपने 4 गड्ढे बनाए या 5 गड्ढे बनाए, तो ऊपर ऊपर की मिट्टी का जो है 0 से 30 वाला वो एक जगह एकत्रित कर लेना है, मिडिल वाला जो है उसको एक जगह लेना है और बॉटम वाले को एक जगह। तो ऐसे करके जब भी हम बाग वगैरह बागवानी फसलों और ये पेरेनियल जो भी है हमारी जो कई वर्षों तक चलती है ऐसी फसलों का जब सैंपल लेते हैं तो हमारा 3 नमूना बनता है, और जो हमारे जो सीजनल फसलें हैं उनमें 1 नमूना बनता है। फिर इसके साथ आता है कि किसान को भाई थोड़ा सा उसकी बैक हिस्ट्री, मतलब उसका जो अब तक किसान भाई ने क्या क्या खाद डाले, क्या क्या उर्वरक डाले, कौन कौन सी फसल ली, अच्छा पानी का जो है सिंचाई की उपलब्धता है या नहीं है, उपलब्धता है तो उसका क्या सोर्स है, उसमें कोई जैसे पानी का जो क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता है वो भी थोड़ा उसको मतलब आजकल लैब में सब जगह इसकी भी टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है, उसका भी टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टियों में बहुत सारे ऐसे विकार हैं जैसे लवणीयता है या क्षारीयता है, वो सिंचाई जल के द्वारा ही आती है।
0: ठीक है,
9: तो इन चीजों को जब हम सैंपल एक बार ले लिए और सैंपल में देखो, कई बार किसान भाई या तो बहुत कम मिट्टी लेके लैब पहुंचता है या बहुत अधिक लाता है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी जगह से 15 से 16 जगह से लेने के बाद उसको इकट्ठा करके उसमें से 300 से 500 ग्राम ही मिट्टी लैब लेके जाना चाहिए।
0: अच्छा, बिल्कुल। आइए अब आगे
8: किसान साथियों, जैसे कि हम चर्चा में बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारी कृषि भूमि में जो पानी हम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं वह पानी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आइए जानते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
9: मैडम, जैसा आप जानते हैं कि हमारे जैसे पूरे भारत देश की हम बात करें तो हर एरिया की जो हमारा जो पानी का जो सोर्स है, कई जगह नहर हैं, कई जगह तालाब हैं, और ज्यादातर हमारा है जो भूमिगत जल पे हम आधारित हैं, और भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो हर एरिया स्पेसिफिक होती है। अभी जैसे आपका अपना शुष्क एरिया लें जहाँ पे बहुत कम वर्षा वगैरह होता है, उस एरिया में अधिकतर जो हमारा जो भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो या तो लवणीय है या क्षारीयता है। ये क्या होता है, जब किसान भाई इसको जब सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं तो पानी की जितनी मात्रा आप अधिक यूज करोगे उसके साथ साथ उतना ही साल्ट की मात्रा हमारी मिट्टियों में मिक्स होती जाती है। इससे क्या होता है, पानी तो या तो फसल के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है या वो वातावरण में वापस के रूप में चला जाता है, लेकिन वो साल्ट है जो भी उसमें लवण है वो मिट्टियों में ही रह जाते हैं, और ये लगातार जैसे आप कंटिन्यूस यदि पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसमें उसकी ईसी मात्रा ज्यादा है या पीएच मान ज्यादा है या उसमें रेसिड्यूअल सोडियम कार्बोनेट, ऐसे उसके कुछ गुणवत्ता के जो उसके कारक हैं, पैरामीटर हैं, उनके आधार पे उसकी गुणवत्ता जो आकी जाती है, यदि गुणवत्ता ठीक नहीं है तो जो आज की अभी मिट्टियां आपकी अच्छी है किसान भाइयों की, और ऐसा पानी को जाने या अनजाने में यदि उपयोग करेंगे तो आने वाले 5-6 साल में उनकी मिट्टियों का लवणीयता और क्षारीयता का मान बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरा बहुत ही मेजर कारण है जिसके कारण हमारे मिट्टियों का स्वास्थ्य वो हो रहा है। तो मिट्टियों के साथ साथ हमें जल का भी जो गुणवत्ता है उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर मीना, जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के पास होता है उसमें मिट्टी से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां किसानों को मिलती है, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनकी जानकारी होती है उसमें?
9: बिल्कुल, जब भी किसान भाइयों को जो सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है उसमें मिट्टियों के जैसे जो नमूने लिए गए हैं उसके आधार पर उसमें जैविक कार्बन की मात्रा, उसमें उसका जैसे पीएच मान क्या है और विद्युत चालकता क्या है, जो हम लवणीयता की बात कर रहे हैं अभी, क्षारीय लवणीयता, इसके मानक भी उसमें होते हैं। इसके साथ साथ जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं, जो हमारे जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, इन ये सभी जितने भी हमारे जो हमारे क्रॉप के लिए बहुत आवश्यक है और हमारी जो भारतीय मृदाओं में इनकी कमी देखी गई है, इनको उसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके आधार पे जब आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखेंगे तो किसान भाइयों का क्या टेस्ट वैल्यू के साथ साथ एक रेफरेंस वैल्यू दी होती है, उस

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, हम चर्चा कर रहे थे हमारे खेतों में जो पानी हम डालते हैं, जो सिंचाई के लिए पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका परीक्षण करवाना, क्योंकि जो पानी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अम्लता और क्षारीयता की मात्रा होने से यह हमारी मृदा में कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता है। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: बिल्कुल, देखो जैसे हमने बताया कि टेस्ट के साथ साथ उसमें उसकी संस्तुतियां भी दिया होता है
2: जी।
1: और हर सॉयल हेल्थ कार्ड में ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी वो किसान भाई जिस एरिया का है उसमें वहां पे जो भी तीन क्रॉपिंग सिस्टम वहां के इम्पोर्टेंट हैं उनकी संस्तुतियां, उर्वरकों की संस्तुतियां उसमें दी होती है।
2: अच्छा।
1: तो इससे ये किसान भाई सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि हम जो उर्वरक जो अनदेखी से किसान भाई, जैसे एक कंपटीशन है किसानों के बीच में कि भाई एक बैग डाला, वो कहता है दो बैग डाला, इसको हम कम कर सकते हैं। और हम मतलब जो हमारी लागत आ रही है किसान भाइयों की उर्वरक के ऊपर, इसको हम बहुत हद तक हम इसका सहयोग कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है ना, जो आपने जैसे अभी बताया कि अधिक से अधिक जो उर्वरक हम यूज कर रहे हैं तो उससे मिट्टियों के साथ साथ हमारा वातावरण पे भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा, देखो एक तो किसान का

0: एक तो सॉयल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान भाई अपनी जो कॉस्ट जितना लगाते हैं फर्टिलाइजर पे उसको बचा सकते हैं। दूसरा हमारे वातावरण का है कि जिससे हम कम से कम फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा, और एक हमारी मिट्टियों का जो स्वास्थ्य है, जो लगातार हम जैसे कि हम जितना डेफिशिएंसी होती है, जैसे मान लो आपकी मिट्टियों में 4 पोषक तत्वों की आवश्यकता है लेकिन आप 2 ही डालते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो दूसरे और पोषक तत्वों का भी जो उसमें से निकास हो रहा है वो बहुत अधिक हो रहा है, धीरे धीरे वो मिट्टियां कमजोर होती जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी किसान भाई ज्यादातर हमारा है जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश पे आधारित है, लेकिन मिट्टियों का विश्लेषण ये बताता है कि उनमें सल्फर की भी कमी है, उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में जाओ तो आप जैसे आपका जिंक है, आयरन है, इवन बोरोन की बहुत ही अधिकता में अभी कमी पाई जाती है। तो जब तक किसान भाई जो हमारे मिट्टियों में जिस पोषक तत्व की कमी है उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक उनको लाभदायक उनकी उपज और उनको उतना फायदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ये है कि उनको मिट्टियों जो उर्वरकों पर लागत है उसको भी घटा रहा है, मिट्टियों का स्वास्थ्य भी बन रहा है, वातावरण का स्वास्थ्य बन रहा है, और साथ ही साथ उनको उनकी जो उपज है वो उसमें काफी मुजाफा उसमें हो रहा है।
1: डॉक्टर मीणा जानना चाहेंगे कि ये जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं ये तो बेहद महत्वपूर्ण होते ही है फसल के लिए, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये फसलों के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं?
0: ये बहुत ही बड़ा और अच्छा सवाल है, और किसान भाइयों को इसको देखो एक छोटी सी भाषा में यदि हम समझाएं तो उसको ऐसे मानो जैसे हमारे खाने में नमक, हम कितना नमक खाते हैं लेकिन उसका इम्पोर्टेंस देखिए कि आपका पूरा जो खाने का स्वाद है वो उस पर आधारित है। ऐसे ही हमारे पोषक जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी मात्रा बहुत कम चाहिए होती है पौधों को, लेकिन यदि उनकी कमी पाई गई तो जो आपके जो मुख्य पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, उनकी दक्षता जो हम उपयोगिता बोलते हैं कि हमारी यूज एफिशिएंसी उनकी बहुत कम है, ये प्रभावित होती है। दूसरा जैसे अभी आपने देखो कोविड के केस में अभी हमारे ज्यादातर देखा कि हम सब लोगों ने जिंक की टेबलेट खाई, यदि हमारे देखो जिंक में मिट्टियों में कमियां हैं और उसी के कारण हमारा जो प्रोड्यूस आ रहा है, खाना आ रहा है, उसमें भी उसकी पर्याप्तता नहीं है, तो इस कारण से हम जितना फूड ले रहे हैं उससे हमारी जिंक की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रही। तो आप देखो ये मतलब उपज के साथ साथ अपना जो अपनी प्रोड्यूस की क्वालिटी है, स्पेशली जो मिनरल कंटेंट है हमारे खाद्य पदार्थों में, तो उनमें भी बेहद जरूरी है। और जो विशेषकर जो हमारे जो हमारी पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन बिल्कुल मतलब इसी पे दानों पे आधारित हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उनको एक अच्छे गुणवत्ता वाले फुल फोर्टिफाइड जो हम कहें ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करने के लिए ये सभी पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए।
2: किसान साथियों आइए जानते हैं मृदा कार्ड से हमें क्या फायदा हो सकता है और इसके क्या क्या उपयोग है, आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
0: हाँ मैडम, अभी जैसे आप देखें तो हमारे भारत सरकार ने इसके जैसे ज्यादातर हमारे किसान भाइयों को मतलब सभी को उनके मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं, और भारत सरकार की तरफ से कि हर 2 साल में इसको रिपीट करना है और किसान भाइयों को मतलब 2 साल में उनका जो मृदा का स्वास्थ्य है, क्योंकि उनको जो परामर्श की गई है जिसके उर्वरक में और खादों की परामर्श की गई है उनको उपयोग करते हुए 2 साल में क्या बदलाव मिट्टियों में आया है, और उसके इसका फिर से हर 2 साल में इसका साइकिल किया गया है। अभी भारत सरकार ने और एक अच्छा जो इसी में इसी योजना के तहत कर रहे हैं कि एक गांव को अडॉप्ट कर रहे हैं, और गांव को अडॉप्ट करके उसका सभी पूरे गांव का हर खेत उससे मतलब मृदा का नमूना लिया जाए, विश्लेषण किया जाए, और उनको मतलब एक जैसे किसान भाइयों को क्या होता है ना कि हम लोगों ने सब सॉइल हेल्थ कार्ड दिया लेकिन बहुत किसान भाई इसको लेके घर बैठ गए, तो ये एक ठीक नहीं है किसान भाइयों को कि भाई आपको कोई मतलब भारत सरकार ने इतना मेहनत करने के बाद इतने लेबोरेटरियों ने उनका परीक्षण किया, उनका जो स्वास्थ्य कार्ड बनाया उनको दिया और उसको उपयोग नहीं कर रहे, तो ये एक क्या है ना कि उनको एक लाइव डेमो दिखाने के लिए अभी हर गांव में ये डेमोस्ट्रेशन लग रहे हैं और उनको ये दिखाया जा रहा है कि देखो आप जो अपनी प्रैक्टिस अपनाते हैं, जो फार्मर प्रैक्टिस करता है कि आप कितना खाद डालते हो उसकी लागत इतनी आती है, हमारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कह रहा है कि भाई इतना आपका उर्वरक डालना चाहिए, उससे आपको अब दोनों का जो कंपेयर आप करो तो तो आपको उनकी जो लागत है उसमें बहुत फर्क है
1: जी,
0: बहुत आपका फर्टिलाइजर सेविंग है, और इससे क्या हो रहा है उनकी उपज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दोनों में सेम उपज मिल रहा है। तो इसे देखते हुए किसान भाइयों को एक समझ में आ रहा है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है।

0: तो ये एक जो भारत सरकार के पहल है कि नहीं अभी हमने ये किया, लेकिन जो किसान भाई कुछ किसान भाई 80% लोग अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी 20% किसान ऐसे हैं कि वो अभी भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड को अपने घर पे रखे हुए हैं और उसके आधार पे उनके जो परामर्श हैं उनको नहीं मान रहे। तो इसी के आधार पे अभी भारत सरकार की ये पहल है कि हमें गांव एडॉप्ट करना चाहिए वहां।
1: जी हाँ किसान साथियों, अगर हमें हमारे पास हमारा मृदा परीक्षण कार्ड पड़ा हुआ है और उसका हमने समय पर उनका हमारी मृदा का हमने टेस्ट भी करवाया हुआ है, लेकिन अगर हमने डॉक्टर ने हमें जो सलाह दी है अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं या डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार हम हमारे खेतों में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो यह किसी काम का नहीं है। तो किसान साथियों, जो भी हमारे पास जो मृदा परीक्षण कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इनका हमें उपयोग करना चाहिए, समय समय पर हमें परीक्षण करवाते रहना चाहिए और इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइमटेबल 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।

0: बेटे। किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आवश्यकता की मांग को पूरा करने के लिए हमने हमारे खेतों में अंधाधुंध रसायनों प्रयोगों से अभी खाद्यान्न फसलों की मात्रा तो हमने बढ़ाई है, परंतु रसायनों के इसके अंधाधुंध प्रयोग से अभी हमारी मिट्टी न केवल ठोस बल्कि अनउपजाऊ होते जा रही है। तो किसान साथियों, आइए जानते हैं और चर्चा करेंगे कैसे हम इससे बचा जा सकता है और हमें अभी प्राकृतिक खेती को कैसे करना चाहिए। तो आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: प्राकृतिक खेती, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों या यूं कह लीजिए कुदरती सामग्री पर आधारित है। ये खेती का ऐसा तरीका है जो मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करता है, उसे कुदरती तौर पर उपजाऊ बनाता है और फसलों को जलवायु परिवर्तन की मार का सामना करने के काबिल बनाता है। इस तरीके में लागत कम लगती है, पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। सिर्फ एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन के लिए खाद तैयार हो जाती है। इस तरह प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से देसी गाय पर आधारित है और जमीन को सेहतमंद बनाने के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि पौधे अपना सारा पोषण मिट्टी से ही लेते हैं। मिट्टी जितनी ताकतवर होगी, उपज भी उतनी ही ज्यादा और क्वालिटी वाली होगी। दरअसल रसायनों ने न सिर्फ मिट्टी को कमजोर किया है बल्कि फसलों को भी जहरीला बना दिया है। कई बार मानक से ज्यादा कीटनाशक पाए जाने पर विदेशी खरीदार हमारी फसल को खरीदने से मना कर देते हैं। इसका कहीं न कहीं नुकसान कृषि क्षेत्र को उठाना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ये रसायन सिंचाई के पानी के साथ भूमिगत जल में जा मिलते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। यही वजह है कि आज प्राकृतिक खेती समय की मांग है और जरूरत भी।
2: प्राकृतिक खेती, जैसा कि हम जानते थे कि हमारे पूर्वज करते थे, और उसमें जो है जो नेचर से मिला, जिस पद्धति को, उसके सारे अंग होते थे उसमें। जैसा कि मैं कहूं तो उसमें फसल भी है, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, औषधीय वर्ग पौधे हैं इत्यादि। ये सारी चीजें एक साथ होती थी, एक समन्वय बनाता था और उन्हीं में एक दूसरे के वो पूरक होते थे। मिट्टी है तो मिट्टी में उसमें केचुए है, केचुआ के साथ साथ उसमें कई सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे पौधों को जो है, जो उनकी उर्वरता चाहिए, उनको पोषक तत्व चाहिए, उनकी उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो पत्तियां गिर रही हैं वो नेचुरल मल्च का काम कर रही है, जिससे कि आप जो है उसमें जो नमी बनी रहती है उसको लंबे समय तक बनाए रहती है। और उसमें मिनिमम जो मैं कहूँ, जितना कम से कम सस्य क्रियाएं करें, तो वहां प्राकृतिक खेती बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है।
1: मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो फसलों की अच्छी बढ़वार और ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है। इनमें से अगर एक तत्व की भी कमी हो जाए तो बाकी 15 तत्वों का भी बहुत ज्यादा फायदा फसल को नहीं मिल पाता। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं। गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक कृषि के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती और इसमें सिंचाई भी पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने की वजह से जड़ों की लंबाई बढ़ जाती है और तनों की मोटाई के साथ साथ पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है।
2: इनमें जो उत्पाद जो पैदा होता है शुरुआती दौर में, तो मैं कहूंगा कि कुछ गिरावट देखी जाती है, लेकिन बाद के वर्ष में जब वहां जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, तब उत्पादन करीब 15-20% तक देखा गया है। इसमें अच्छी बढ़वार मिलती है, उत्पादकता अच्छी मिलती है।
1: प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों की सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसके अलावा खेती की इस विधि में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार भी ज्यादा देते हैं। भारत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत डॉक्टर सुभाष पालेकर ने की, इसलिए इन्हें इस तकनीक का जनक कहा जाता है। इन्होंने नागपुर में कृषि की स्नातक डिग्री हासिल की और कमाल की बात तो ये है कि इनकी पूरी पढ़ाई रासायनिक तरीकों पर ही आधारित थी, लेकिन फिर इनके जीवन में कुछ ऐसे वाकये हुए कि इनकी जिंदगी का पूरा रुख ही बदल गया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने खेती की एक ऐसी तकनीक इजाद की जो रसायन रहित है और इसका नाम दिया सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1972 में सुभाष पालेकर ने अपने फार्म पर रासायनिक खेती पर ही काम शुरू किया। बरसों तक वो इसी तरह काम करते रहे। प्राकृतिक खेती का विचार वेदों और उपनिषदों से मिला। इन धार्मिक ग्रंथों में मौजूद कुछ सूत्र इन्हें प्राकृतिक खेती की ओर ले गए। इसके बाद इन्होंने वैज्ञानिक शोध शुरू किए। दूसरी ओर वो महात्मा गांधी के अहिंसा वाले सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यही वजह है कि वो खेती के ऐसे तरीके तलाशने लगे जिनसे मिट्टी में मौजूद जीवों की रक्षा हो सके। ऐसा तभी मुमकिन था जब खेत जहरीले रसायनों से मुक्त हों और मिट्टी की सेहत मजबूत हो। डॉक्टर पालेकर ने खेती करते समय ये भी पाया कि 1972 से 1985 तक तो रासायनिक खेती में पैदावार बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद घटनी शुरू हो गई। दूसरी ओर आदिवासियों के साथ काम करते हुए सुभाष पालेकर को पता चला कि जंगलों में पौधों के विकास के लिए किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बढ़वार के लिए जरूरी सभी साधन प्रकृति से ही हासिल हो जाते हैं।
3: हमारे विदर्भ के जो आदिवासी क्षेत्र है सातपुड़ा पहाड़ी, उसमें मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था कि जंगल के पर्यावरणीय व्यवस्था का आदिवासियों के जीवन पद्धति पर क्या परिणाम होता है, ये मेरा विषय था। तो मेरा पढ़ाई भी चलती थी और आदिवासियों में मेरा कार्य भी चलता था। तो मुझे हमारे प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे कॉलेज में कि भाई भूमि में कुछ भी नहीं होता, अगर आपको फसल के उत्पादन लेना है तो ऊपर से खाद डालना ही पड़ता है। लेकिन जब मैं जंगल में जाता था मेरी प्रोजेक्ट के दौर में संडे को रविवार को, तो वे विशाल का पेट जंगल के घने जंगल के अनगिनत फलों से लदे हुए बिना मानवीय सहायता मुझे बता रहे थे कि भाई देखो यहाँ तो कोई खाद नहीं है, हर साल अनगिनत फल लगते हैं तो खाद की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: इसके बाद उन्होंने अपने फार्म पर शोध किए और 6 साल की सख्त मेहनत के बाद बिना रसायनों वाली तकनीक तैयार करने में कामयाब हो गए। नाम दिया कम लागत प्राकृतिक खेती। अब वो इसे पूरे भारत में प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार भी उनकी भरपूर मदद कर रही है, यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
3: भूमि अन्नपूर्णा है, भूमि माँ है, महासागर है, केवल एक ही है। भूमि में जो खाद्य तत्व होते हैं, जो जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं होते, पके हुए नहीं होते, वो कच्चे होते हैं, जड़ों को चाहिए पका हुआ। ये पकाने का काम अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। सुभाष पालेकर प्रकृति कृषि में देशी गौ माता के गोबर गोमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, भूमि में डालते हैं, तो जीवाणु का कल्चर ही होता है क्योंकि अनंत कोटि जीवाणु उसमें होते हैं। ये जीवाणु भूमि में जाते हैं, जब पालेकर कृषि में आप जीवाणु घन जीवामृत डालते हैं और वो जो पकाते खाना और जड़ों को उपलब्ध करते।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस तरह की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में भी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उप योजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 35 जिलों की 98,670 हेक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के लिए प्रस्तावित किया है। इस पर 19,772 लाख रुपए का खर्च आना है और 51,450 किसानों को फायदा मिलना है। अकेले प्रयागराज जिले में 1,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत आ गई है, जो यहाँ के 913 किसानों को फायदा पहुँचा रही है।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्राकृतिक खेती किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं और खेती में लगने वाली भारी लागत इनकी कमर तोड़ देती है। कई लोगों को लगता है कि प्राकृतिक खेती से शुरुआत में उपज कम रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही साल में आप भरपूर उपज ले सकते हैं।
2: प्राकृतिक खेती द्वारा उगाई गई जो दलहन है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड से जो आती है या नॉर्थ ईस्ट से जो आती है, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये होती इसलिए है क्योंकि उसको नेचुरल तत्व मिल रहे हैं जो उर्वरक और कीटनाशकों से परे रहता है, और यही वजह है कि उसकी खाने में मिठास है, बहुत लोग उसे लाइक करते हैं। और बाजार भाव सब मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे उत्पाद अगर हम बाजार में अगर प्रमाणित है, सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इसे हम अगर बाजार में उतारते हैं तो ये हमें 20-30% तक ज़्यादा मुनाफा देती है।
1: खेती के लिए खाद और कीटनाशक

0: की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें घर पर मौजूद कुदरती सामग्री से बन जाती है। इसमें खाद दो तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये कि एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर लेना है, जो करीब 10 किलो होगा। 24 घंटे में ही इकट्ठा किया 8 से 10 लीटर मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, इतनी ही मात्रा में किसी भी दाल का बेसन और पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी। इन 5 चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है। डंडा क्लॉकवाइज घुमाना है और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देना है। 4 से 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं, साथ ही 24 घंटे का गोमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढककर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6 से 7 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधे के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं।
1: बहुत हद तक ये बात सत्य है कि अगर जहां भी देखा गया है कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो वहां जो पौधे या जो हम खेती करते हैं वो पौधों में देखा गया कि प्रायः उनमें कई सूक्ष्म जीव जो उनके जड़ों में होते हैं, मिट्टी में रहते हैं, उनके द्वारा कई सूक्ष्म तत्व पौधों को मिले रहते हैं और इसके वजह से ही पौधे काफी सुदृढ़ होते हैं और हेल्थी होते हैं। उन पर रोग और कीट का प्रभाव बहुत कम पड़ता है।
2: रासायनिक कृषि में संकर बीजों का उत्पादन और जनुक रूपांतरित बीजों का उत्पादन में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का उत्पादन देशी बीजों से ज्यादा मिलता है। हमें मान्य है, हम कबूल करते हैं। लेकिन सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से ज्यादा मिलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से ज्यादा मिलता है। हमने सिद्ध कर दिया है, हमें मॉडल खड़े, इसलिए हम देशी बीजों का ही प्रचार करते हैं। नंबर दो, एक देखा गया है कंपेयर्ड टू स्टडी में देशी बीजों में पोषण मूल्य, औषधि मूल्य रासायनिक खेती में पैदा हुए संकर बीजों से पौधों से ज्यादा होते हैं, कई गुना ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है मानव का पोषण अगर करते हैं तो देशी बीजों से पैदा प्राकृतिक फसलें करती है, रासायनिक फसलें नहीं करती।
0: किसानों को अक्सर मौसम की मार भी झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। प्राकृतिक खेती दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो रही है, खास तौर से कर्नाटक के किसान इसे काफी पसंद कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में फसलें मौसम की मार और जलवायु में हो रहे बदलाव को भी आसानी से सहन कर लेती है।
1: जो मौसम में बदलाव दिखता है, अगर अधिक बारिश हो जाए तो गलना शुरू करेगा, तो वहां फफूंद के अगेंस्ट अगर कोई कार्य कर रहा है तो वहां पर प्राकृतिक खेती में देखा गया है कि उसमें क्षमता रहती है, अवरोधी क्षमता रहती है। इसी तरह टेम्परेचर का भी अगर बढ़ना घटना, अगर मॉइस्चर की भी अगर कमी अगर घटता है तो इसमें जो है जो पत्तियां गिरी रहती हैं वो मॉइस्चर को रोके रखती हैं। तो इस तरह से अगर ड्राउट सिचुएशन भी आता है तो ये जो नेचुरल फार्मिंग वाले जो किसान होते हैं उनके फसल देखा गया है कि बच जाते हैं। तो ये इसमें एक मैं कहूं कि प्राकृतिक इसमें एक ऊर्जा जो है सभी का समन्वय ही इस खेती को सक्सेसफुल बनाता है।
0: खेती में लगातार बढ़ रही लागत से किसान परेशान है। रसायनों ने जिस तरह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर वार किया है उसने लागत को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में प्राकृतिक खेती नई उम्मीदें जगा रही है। बढ़ती लागत और रसायनों से परेशान बहुत से किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। देसी गाय पालन करने वाले किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती और भी आसान है, क्योंकि ये विधि देसी गाय पर आधारित है। गुजरात के मनोज सोलंकी गाय के गोबर से न सिर्फ खाद बनाते हैं बल्कि प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक भी तैयार कर रहे हैं।
3: प्राकृतिक खेती अब समय की मांग भी है और जरूरत भी। बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित पर्यावरण के लिए किसान तेजी से जीरो बजट खेती अपना रहे हैं। ये रासायनिक खेती की तुलना में कम खर्चीली और बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है, साथ ही लंबे समय तक मुनाफा देने में सक्षम है। इसकी प्राथमिक जरूरत है पशुपालन, क्योंकि पशु अपशिष्ट के इस्तेमाल से खाद और कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। कच्छ में रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रमुख मनोज सोलंकी जी करीब 20 साल से इस तरह की खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि खेती प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। प्रकृति अपने हिसाब से खेती के हर पहलू को नियंत्रित करती है, जिसमें बाहर से कुछ शामिल नहीं करना होता है। इस समय सोलंकी जी खेती के साथ पशुपालन, कांकरेज गाय संवर्धन, गोबर से उत्पाद बनाना, जैविक खाद बनाना, जैविक कीटनाशक बनाना जैसे कई अहम काम कर रहे हैं। वो पशुओं को जैविक चारा ही खिलाते हैं। इस तरह से मिलने वाला दूध भी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है और गोबर से बनने वाली खाद भी।
1: एक मुख्य बात जो है आज हम विस्मृति में है, वो स्मृति में लाने की जरूरत है कि हमें प्रकृति को अपना प्रकृति ही खेती करती है, हमें उसके साथ भागीदारी करनी है, उसकी मालिकी नहीं करनी है। और हमें खेती में हर व्यवस्था को समझना है जो प्रकृति में जंगल में हो रहा है। कचरे के ढेर के ऊपर जब बीज गिरता है तो उसमें टमाटर मिर्चा लग जाता है, तो कोई नाइट्रोजन तो दिया, फॉस्फरस तो दिया, प्लांट प्रोटेक्शन तो हुआ, तो किसने किया? तो वास्तव में प्रकृति का एक व्यवस्था है जो ये सब मैनेजमेंट चला रही है। और उसकी ऐसी कल्पना नहीं है कि ये कंपनी आएगी, ये दवा का निर्माण होगा, खाद का निर्माण होगा और उस तरीके से ये अपनी खेती मानव अपना अनुपार्जन करेंगे। उसकी कल्पना है कि जहाँ खेत है वहीं उसका पोषण की व्यवस्था है, वहीं धरती को समृद्ध बनाने की व्यवस्था है, वहीं किसान का जो उत्पादन है वो ठीक से हो, उसके लिए प्रकृति खुद अच्छी तरीके से एक वेल मैनेजमेंट कर रही है, वो हमें ध्यान में लेना है। उसमें मुख्य भूमिका है ये पशुओं की भी है, मुख्य भूमिका वृक्षों की भी है, मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों की भी है और पक्षियों की भी है, और ऐसे कई प्रकार के जो नहीं देख सकते इनडायरेक्ट फॉर्म में कई जीव है वो ये प्रक्रिया में भागीदार है, ऐसा 20 सालों में मुझे ध्यान में आया है।
3: कृषि वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि खेत में रासायनिक खाद के उपयोग से शुरुआत में फसल में अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन इसके कई दूरगामी दुष्परिणाम भी हैं। इसके प्रयोग से फसल के लिए महत्वपूर्ण चक्र बनाने वाले मित्र कीटों को भी नुकसान होता है। इसीलिए मनोज सोलंकी जी जैविक खाद के साथ जैविक कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं, जिससे खेती के लिए जरूरी प्राकृतिक चक्र में संतुलन बना रहे।
1: के लिए हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें यहाँ जहर का इस्तेमाल ना करें। कोई भी जहर इस्तेमाल होने से जब हमें दुश्मन को मारने में लगते हैं तो मित्र कीटक भी मरते हैं, तो कई मित्र कीटक की संख्या बड़ी है और नुकसान करने वाले जो कीटक है उसकी संख्या कम है, तो उससे थोड़े के लिए हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो ना हो, ऐसा मेरा एक अनुभव है। और कृषि के अंदर जो जैसा समझ बढ़ती जाएगी उतना हमारा कृषि सहज और सरल बनती जाती है। जमीन को जैसे हमारी जमीनें आज मक्खन जैसी हो गई, हम जमीन नीचे देख सकते हैं कि कई माइक्रो पिन होल कई जीव जीवात है जमीन को कल्टीवेट कर रहे हैं और जमीन को एकदम उम्दा बना के रखी है। जमीन है भौतिक तरीके से, जमीन है बायोलॉजिकल तरीके से, और जमीन है वो खनिज द्रव्य की तरीके से, मिनरल तरीके से भी समृद्ध होना जरूरी है। और आज मेरी जमीन 10 सालों के बाद तीनों तरीके से समृद्ध दिख रही है, और उसका एक प्रमाण भी है कि हमारा जो उत्पादन है वो काफी कुछ इसमें इनपुट डाले बिना अच्छा सा उत्पादन हम आज ले रहे हैं। आप इसका कलर भी मेरे पीछे जो पार्क है उसका कलर देख सकते हैं कि बिना नाइट्रोजन के इसकी ग्रीनरी आप देख सकते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन की अब कोई कमी नहीं है। शुरुआत में हमें ज्यादा डालना पड़ता था, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तो भी हमारा जो भी यहाँ गेहूं भी पकाते हैं, यहाँ बाजरा भी पकाते हैं, मक्का भी पकाते हैं, तो उसका अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। तो हमें प्रकृति को समझना है और प्रकृति को समझते हुए हमारी कृषि व्यवस्था में
4: हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। ये जो अगर हम काम करते हैं तो किसानी है वो उत्तम किसान, जो उच्च किसानी थी वो उच्च किसानी का जो पद है फिर से प्राप्त हो सकता है। तो पहले मैं आय की जब बात रखता हूँ तो बोल सकता हूँ कि गाय के गौशाला का चार प्रोडक्ट होता है, एक है दूध है, एक है गोबर, एक है गौमूत्र, एक गौवंश खुद। तो ये चारों जो आय के उपार्जन के स्रोत है उसके अंदर भी हमने काफी काम किया है। उसमें हमने प्रथम दूध जो है, तो दूध हम डेयरी में नहीं देते हैं, हमने गाय का दूध की विशेषता लोगों को समझाते हुए हमने सीधा दूध का मार्केटिंग करते हैं। और दूसरा है कि हम जो बचता है कभी कभी ज्यादा कम होता है उसके हिसाब से, तो उसमें से हम घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। और ये जो दूध है हम 55 रुपये लीटर बेचते हैं और लोगों को गाय की गुणवत्ता जो दूध का साइंस है उसको समझा के हमने मार्केटिंग खड़ी की है और हमारे घर से ही वो ले जाते हैं।
5: किसान साथियों, यहाँ पर हमें तालमेल बिठाने की बात कही गई है, हमें प्रकृति के साथ, हमारी खेती के साथ और हमें खुद, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, हमारी प्रकृति ही इन उपज को तैयार करती है, उसे बनाने का सारा भागीदार उनका है, हम सिर्फ इसमें सहयोगी हैं। तो किसान साथियों, हमें मिट्टी को भी हमें अपना समझ के इसमें कम से कम रासायनिकों का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याविल 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्याविल रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत को जिन्होंने चिकित्सा सेवा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम बनाया है। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूपुर प्रसाद जी की, जिनकी यात्रा उपलब्धियों और समर्पण से भरी रही है। डॉक्टर नूपुर जी न केवल एक कुशल चिकित्सक हैं बल्कि उनके कार्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। वे नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर रही हैं, उन्हें एशिया रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और खासतौर से कोविड काल में उनके उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए उन्हें नारी शक्ति सम्मान प्राप्त हुआ और साथ ही चिकित्सा एवं सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें सत्य स्त्री सम्मान से भी नवाजा गया है। और साथ ही ग्रामीण राजस्थान से लेकर बड़े चिकित्सा संस्थानों तक, SMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने हजारों महिलाओं के जीवन को स्वास्थ्य और आशा की नई दिशा दी है। तो आइए आज सुनते हैं एक ऐसी यात्रा को जो चिकित्सा सेवा, संघर्ष और संवेदना से होकर गुजरती है, और जानेंगे डॉक्टर नूपुर जी के विचार और जीवन की प्रेरणाएं। डॉक्टर नूपुर जी, रेडियो SN के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आके।
1: तो चलिए नूपुर जी, शुरुआत करते हैं और स्वागत हम आपका एक बार पुनः करें और शुरुआत फिर ऐसे करते हैं, शुरुआत से ही कर लेते हैं, कुछ आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, आपके उदयपुर की यादों से शुरुआत करते हैं। किस तरह से जीवन यात्रा शुरू हुई, शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए हमें।
2: देखिए, शुरुआती जीवन बहुत ही सामान्य सा रहा है, पर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि एक बहुत ही खुशनुमा और धार्मिक परिवार मेरे को मिला। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और माता जी भी जो थी वो एमए इकोनॉमिक्स थी, तो घर में बड़ा पढ़ाई लिखाई का एक अच्छा सा माहौल रहता था। और क्योंकि मैं थर्ड ऑर्डर चाइल्ड थी तो घर वालों की मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था। एक स्वच्छंद उड़ान के लिए मेरे पास एक खुला आसमान था, जो मेरे को अपने बचपन की सबसे अच्छी उपलब्धि लगती है। और स्कूली शिक्षा मेरी सेंट ट्रेजा स्कूल और RMV स्कूल से हुई है, उदयपुर में ही हुई है। उसमें भी मेरा बहुत जबरदस्त वेरिएशन मिला है मुझे। 8th तक सेंट ट्रेजाज में एक डिसिप्लिन कॉन्वेंट की छात्रा से लेकर के सरकारी स्कूल के खुले मैदान तक का अनुभव मुझे है। 8th तक मेरा पूरा फोकस एक आदर्श छात्रा बनने का रहता था, जिसमें कोशिश होती थी कि 3 मेडल्स जो होते थे वहां पे, फर्स्ट इन क्लास, गुड कंडक्ट एंड मॉनिटर, तीनों मुझे मिले। इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहती थी। पर जब महिला विद्यालय के उन्मुक्त वातावरण में आई तो मेरी पर्सनालिटी में एकदम बिल्कुल चेंज आया और मैं एक आदर्श छात्रा से एक एक्सपेरिमेंटेटिव किशोरी के रूप में आ गई। और मेरा फोकस जो पहले जैसे खाली लिटरेरी एक्टिविटीज में होता था, उसके साथ साथ अब ड्रामा में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में एंड इवन नेतागिरी में भी आ गया। और फिर उस स्कूल की मैं प्रेसिडेंट भी बनी, हायर सेकेंडरी स्कूल की। और मेरे इस बदलाव के बारे में माता पिताजी को और घर वालों को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। इसका एक बहुत ही सुंदर वाक्य आपको सुनाती हूँ कि हमारे स्कूल में होता था कि जब भी साल खत्म होता था तो पूरे साल भर की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया जाता था। तो ऐसे में मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया गया। हमारी जब सब लोग आकर के बैठे हॉल के अंदर, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बोला, हमारी छात्र कार्यकारिणी की प्रेसिडेंट और वर्ष सो एंड सो की प्रतिभावान छात्र के माता पिता को मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रसाद को आमंत्रित करती हूँ। और उन्होंने इशारा मेरे पिताजी की तरफ किया। पिताजी दाएं बाएं देखे, क्योंकि वो श्रीवास्तव लगाते थे, ही वॉज नॉट नोइंग कि मिस्टर प्रसाद मैं ही हूँ। और दूसरा उनके लिए नई चीज ये थी कि उनकी बेटी वहां की प्रेसिडेंट है, उन्हें ये भी नहीं पता था। तो मतलब इतना खुला हुआ माहौल मुझे मिला, तो जिसमें मुझे प्रगति करने के पूरे मौके मिले। यही है एक छोटी सी कहानी मेरे बचपन की।
1: बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपकी कहानी सुन के। और कहानी क्या, मतलब जिस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, एक बिल्कुल एक उन्मुक्त आकाश आपने जिया है, वो बहुत ही खूब से। अब थोड़ा सा आगे चढ़ते हैं। अब ये बताइए कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली में शुरू में ही आपका एक फैसला था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, क्या ऐसा कोई सपना था, या परिवार वालों ने आपको कहा डॉक्टर बनिए, क्योंकि पहले डॉक्टर और इंजीनियर दो ही बनते थे बच्चे?
2: देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो एक जियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बनने की प्रेरणा मेरे परिवार ने ही दी है, और खासतौर से मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई ने। वो भी कुछ परिस्थितियां के आन पे बनाई थी हमारी, तो इसलिए बनना ही था अपने आप को प्रूव करने के लिए। और एक बार जब उसमें एंटर हो गई तो फिर उसके बाद मजा आने लग गया। तो ये सबका मिला जुला जो था आउटकम था कि मैं डॉक्टर बनी हूँ।
1: चलिए, ब्यूटीफुल। तो आपने आरएनटी मेडिकल कॉलेज, वो भी काफी एक रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां से आपने ग्रेजुएशन किया अपना, और फिर आपने ये डिसाइड किया कि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगी। तो ये किस तरह से हुआ, किस तरह से आपने अपना स्पेशलाइजेशन चुना?
2: देखिए, एक तो पहले उस वक्त ये बड़ा था कि जो टॉपर्स होते थे ना, उनको दो ही सब्जेक्ट लेने होते थे, ये एक ट्रेंड था, आइदर दे गो फॉर मेडिसिन और फॉर गायनी। तो लड़के जो थे वो मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स में जाते थे और लड़कियां गायनी में, तो ये एक एडवांटेज मेरे पास था। उसके साथ ही मेरी एक प्रोफेसर थी डॉक्टर तारा माथुर, वो मेरी एक आइडियल रही है लाइफ में, शुरू से ही मैं उनके जैसे व्यक्तित्व को जीना चाहती थी जिंदगी में। और वो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी और मेरी गाइड भी थी, बाद में मेरी पीजी टाइम में गाइड भी बनी वो जी। और इसके साथ मेडिसिन में मेरे को सबसे अच्छी गायनी इसलिए लगती थी क्योंकि इसमें जब भी कोई पेशेंट जाता था ना घर, तब हम उसको डबल खुशियां देते थे, जनरली ऑब्स्टेट्रिक पार्ट में, कि माँ भी क्योंकि फर्स्ट टाइम माँ बनी है इसलिए उसको खुशी मिलती थी, और जो उसको एक नया बच्चा मिलता था तो हम एक डबल खुशी के साथ उसे भेजते थे। तो ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग लगा मुझे, तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर गायनी।
1: ये बात तो बहुत खूबसूरत बात बताई आपने कि एक यही एक ऐसी ब्रांच है, ऐसा स्पेशलाइजेशन है जब आप किसी को भी डबल खुशी देके। जनरली तो आप बीमारी का इलाज करते हो, वो आदमी अपनी परेशानी लेके आता है, उसका इलाज सर्जन भी करता है, मेडिसिन वाले भी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी ब्रांच में आप उसको पेन से रिलीफ भी कराते हो और जो समस्या होती है दूर हो, तो साथ में एक बोनस उसको एक बच्चा भी साथ में जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो चलिए इस खूबसूरत बात पे रुक के हम एक गाने का आनंद लेते हैं, एक जो जिंदगी एक नई जो साथ में जाती है उसके साथ एक गाने का आनंद लेते हैं और एक पॉज ले लेते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक डॉक्टर उपुल। अब थोड़ा सा हम
1: जी
0: आपके प्रोफेशनल कैरियर की तरफ आते हैं, बातचीत करते हैं। आपने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तक की आपकी ये जो चिकित्सा यात्रा है, ये कैसी रही? कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे अनुभव रहे आपके इससे, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: जिंदगी ने जहां मुड़ा वहां मैं मुड़ी और बड़ी सहजता से मुड़ी। मतलब कहीं मैंने रेजिस्ट नहीं किया लाइफ को। तो इनिशियली मेरी शुरुआत एक गुनेड़ा नाम के छोटे से लास्ट गांव है राजस्थान का टुवर्ड्स हरियाणा, वहां पे शुरू हुई थी। और वो एक ऐसा गांव था जहां पे कि न तो पानी की कोई व्यवस्था थी और बिजली भी दिन भर में 2-3 घंटे ही आती थी। पर ठीक है, वहां पे भी अच्छे से काम किया और पूरी अपनी स्पिरिट को जिंदा रखा। वहां पे हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वहां पे एक ओटी एस्टेब्लिश किया जबकि वो एक पीएचसी थी। और वहीं पे हम लोगों ने 2 रिसर्च पेपर्स भी निकाले। तो कभी भी कोई परिस्थिति हमारे लिए रुकावट का साधन नहीं बन पाई। उसके बाद हम विभिन्न चिकित्सालयों में जिला स्तर पे भी रहे, फिर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में भी रहे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, डायरेक्टरेट में रहे। वहां पे एड्स कंट्रोल सोसाइटी में मैंने करीब 7-8 साल काम किया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा मेरी जिंदगी का। फिर एनआरएचएम जो प्रोजेक्ट है उसमें काम करने का मौका मिला मेरे को करीब 5 साल। तो वहां पे जो JSSY जो प्रोग्राम चलता है गर्भवती महिलाओं को, उसको लॉन्च करने में की रोल मेरा ही रहा वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे मेरे को अनुभव मिले। और इसके साथ ही जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे नाको है, एनआरएचएम है, ऐसी संस्थाओं में राज्य को कई बार रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला मुझे दिल्ली के अंदर। एक बार तो जैसे मैं आपको बताऊंगी, सेफ अबॉर्शन की गाइडलाइंस बन रही थी फॉर सार्क नेशंस, एंड समहाउ ईश्वर की एक कृपा हुई कि सब मुझे इंडिया का जो टीम गई थी उसके अंदर भी भागीदारी निभाने का अवसर मिला। तो भगवान ने मौके तो हर लेवल के हर जगह बहुत दिए, और रिकॉग्निशन भी दिया और सेटिस्फेक्शन भी दिया।
0: बहुत खुश है, बहुत बहुत ही सहजता से आपने बता दी इतनी सारी उपलब्धियों के बारे में। अब थोड़ा सा आपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम किया है, तो ये बताइए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं होती हैं, तो
1: जी
0: आपने उनको क्लोजली ऑब्जर्व भी किया होगा, तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई खास समस्याएं हैं जो आपने देखी हैं, जो खासतौर
1: देखिए,
0: से ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है?
1: हाँ जी हाँ जी, देखिए समस्याएं तो ग्रामीण और शहर को देख के नहीं आती, समस्याएं तो व्यक्ति में होती हैं। लेकिन गांव के अंदर जो एक एडिड फैक्टर है, दैट इज इग्नोरेंस। उन्हें पता नहीं है चीजों के बारे में, उन्हें पता नहीं है ये सामान्य है या असामान्य है। वो उसको जिंदगी का पार्ट समझ के जीती हैं, तो इसलिए रोग भी बढ़ जाता है उनका। साथ ही अगर उनका कोई डायग्नोस भी हो जाता है, कुछ डायग्नोसिस हो जाता है, तो पहले तो डिनाइल फेज में जाती हैं बहुत ज्यादा कि नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं है। फिर अगर फिर भी आप उनको किसी तरह कन्विंस कर लो, तो फिर वो इनडिफरेंस पैदा कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो तो प्रायोरिटी में हमेशा अपने आप को सबसे नीचे ही रखती हैं। तो ग्रामीण महिलाओं को मोटिवेट करना टू टेक ट्रीटमेंट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। भाई अवेयरनेस तो हम पैदा कर लेते हैं IEC के माध्यम से, लेकिन उनको मोटिवेट करना और उनको ट्रीटमेंट की कंप्लायंस एंश्योर करना, ये एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। ये थोड़ा फर्क है शहर वालों से।
0: अच्छा, मैं वैसे ही बाय द वे अब तक अब सवाल पूछ रहा हूँ, जो ग्रामीण महिलाओं को आप ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी मेडिसिन बताती होंगी, तो क्या ये किस तरह से इंश्योर कर पाते हैं कि ये उसको रेगुलरली ट्रीटमेंट को ले रही है, नहीं ले रही? क्या इनके हस्बैंड्स को भी या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी एजुकेट करती हैं, कुछ समझाती हैं कि भाई ये दवाई इस टाइम लेनी है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, क्योंकि
1: देखिए
0: वही
1: कोशिश,
0: इग्नोर।
1: जी
0: हाँ
1: कोशिश तो जनरली ये है कि जो साथ में आया है उसे भी समझाया जाए। और ग्रामीण परिवेश में जनरली हस्बैंड्स नहीं आया करते साथ में, उनके साथ में या तो उनकी सास आएगी या जिठानी आएगी या ननंद आएगी, इस तरह के रिश्ते आते हैं। तो उसमें कंप्लायंस इसलिए मुश्किल हो जाता है कि वो लोग उनके साथ नहीं रह रहे होते। हस्बैंड तो साथ रहता है, अगर उसको समझा दो और वो आ जाए तो कंप्लायंस, एक बेटर कंप्लायंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ननंद है अपने घर चली गई, जेठानी अपने घर चली गई एक बार दिखा करके, तो कंप्लाइंस वहां पे मुश्किल है, काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब जागरूकता आ रही है धीमे धीमे, वो भी अवेयर हो रही है अपनी हेल्थ के लिए, तो पहले से तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं अब।
0: तो चलिए, इसी ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने सेवाएं दी हैं और जो आपके अनुभव रहे हैं, उसकी बात पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर अपनी बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक डॉक्टर नुपुर। अब ये बताइए कि जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि आप तो एड्स और जो भी इस तरह के गवर्नमेंट के कैंपेन्स हैं, अभियान हैं, उनसे जुड़ी रही हैं, तो एड्स और मातृ स्वास्थ्य अभियानों में इतना काम किया है आपने, तो उस दौर में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या अवेयरनेस, क्या चैलेंजेस आपको फेस किए आपने?
1: देखिए, ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं जिसमें कि एड्स आता है और मातृ स्वास्थ्य आता है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था की उपज हैं। मतलब हमारी व्यवस्था है, हमारी जो समाज है, हम जो जो हमारी मतलब हमारा जो जीवन है उसके अंदर जैसे महावारी है, गर्भावस्था है, यौन संबंध है, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है। तो इनसे रिलेटेड परिस्थितियां भी लगातार पैदा होती रहती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक चीज का उन्मूलन कर दिया तो वो आगे कभी नहीं होगी। जैसे साहब हमने कह दिया कि हमने चेचक का उन्मूलन कर दिया एक बार, तो वो प्रॉब्लम घूम के नहीं आएगी। ये तो ऐसी है क्योंकि ये प्रोसेसेस लगातार हैं, सतत प्रक्रियाएं हैं समाज की, तो इनमें प्रॉब्लम्स भी और परिस्थितियां भी नई आती रहती हैं। तो ये एक तरह का चैलेंज है कि इसमें रेगुलर आने वाली परिस्थितियों को हमेशा साथ के साथ डील करना पड़ता है। एक बार के निराकरण से इनका पूरा निराकरण नहीं होता। तो बेसिकली सिस्टम हैज टू बी ऑन टोज ऑलवेज। मतलब आप रिलैक्स नहीं
0: सिस्टम भी टोस पे होना चाहिए और अवेयरनेस भी लोगों के अंदर, समाज के
1: कर।
0: अंदर
1: हाँ
0: और पेशेंट्स
1: जी,
0: के
1: मतलब बिल्कुल
0: अंदर।
1: जिसको बोलते हैं ना, पूरा समाज ही इसका निराकरण की जरूरत होती है। आप छोड़ नहीं सकते इसको एक

0: बात जो आपको उससे जुड़ी हुई याद रहती है, जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, आज भी आपको याद आ जाती है, अरे वो मरीज ऐसा था या वो ऐसा मेरा अनुभव था, कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे?
1: ऐसे किस्से तो काफी होते रहते हैं। कभी कोई इनफर्टिलिटी का केस होता है, सालों से उसने कंसीव नहीं किया है और वो कंसीव कर जाता है, तो आपको जो दिली खुशी होती है वो बयान नहीं की जा सकती। या कभी आप कोई अनयूजुअल चीज को डायग्नोस करते हो, पर एक चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा दिल में जिसने छुआ है वो ये है कि जब मैं पहली बार HIV पॉजिटिव बच्चों से मिली थी, जब उनसे मिली तो मैं अंदर से हिल गई। वो बेचारे इनोसेंट सफरर्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है उनकी, और वो भी बिना उनके किसी कसूर के। तो उनको जो जब देखा था तब रियली जिसको बोलते हैं ना अंदर से हिलने वाली फीलिंग हुई थी। और पहले तो मैं RSEX के माध्यम से, और मेरी क्योंकि जॉब का पार्ट था, मैं उनसे जुड़ी हुई हुई थी और उनके लिए जो भी कर सकते थे वो हमने जॉब में रहते हुए किया। पर आज भी मैं उन संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जो कि HIV पॉजिटिव बच्चों की केयर करते हैं, और मैं यथासंभव उसमें सहयोग देती हूँ। तो वो एक ऐसा है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है।
0: नहीं, सही बात है। बच्चों को अगर ये बीमारी हो जाए जबकि बिना उनके किसी कसूर के, तो ये तो बहुत ही
1: जी
0: चिंताजनक है। तो अब आप रिटायरमेंट के बाद में चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे रही है, ये इतनी समर्पण और इतनी मेहनत आप कैसे करती हैं, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: ये कोई समर्पण नहीं है, ये तो एक्चुअली आपने पूरा अपना जीवन जिया है। आपने अपनी स्किल्स को पहले एज बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट आपने वहां पे सर्विसेज दी है, और भी आपके पास स्किल है, आप में कैपेसिटी भी है, तो उसी से किसी को फायदा हो जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इट्स नॉट अ समर्पण, इट इज जस्ट कि भाई हम क्या दे सकते हैं समाज को, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समर्पण तो बहुत बड़ा बड़ा शब्द हो जाता है।
0: नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक तरह की खासियत तो है ही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद में ऐसे ऐसे जॉब्स में लग जाते हैं, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जहां उनको सिवाय एक कमाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। अगर उस रास्ते को छोड़ के आप इधर मुड़ रही हैं, तो ये एक तरह का एक
1: नहीं
0: बहुत बड़ा
1: नहीं
0: डिसीजन
1: वो
0: है, ये
1: शायद
0: बात
1: मुझसे ज्यादा मेहनती लोग हैं, वो मुझसे ज्यादा मेहनती लोग
0: ये बड़ा लंबा विषय है।
1: हैं।
0: चलिए, तो इसी बात पे रुक के, जो आप में एम्पैथी है लोगों के प्रति, उस पे रुक के
1: जी
0: हम एक गाना सुनते हैं और फिर बातचीत को जारी रखते हैं।
1: जी

0: चलिए डॉक्टर नूपुर, अब एक आपके दूसरे रूप के बारे में बात करते हैं, आपका जो पर्सनैलिटी का एक दूसरा आयाम है उसके बारे में बात करते हैं। आप एक प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना भी हैं, तो कथक सीखने की शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे इंटरेस्ट आया इसमें?
1: देखिए, इसमें भी मैं अपने परिवार को ही इसका श्रेय दूंगी, क्योंकि जब 6-7 साल के हुए थे तब मम्मी डैडी ने ही हमको म्यूजिक स्कूल में डाला था, हम तीनों भाई बहनों को। हाँ, ये चॉइस उन्होंने हमको दी थी कि तुम्हें जो सीखना है तुम सीख सकते हो, पर म्यूजिक को वो बहुत जरूरी समझते थे लाइफ में, तो हम तीनों को उन्होंने म्यूजिक स्कूल भेजा। तो उसमें क्योंकि कथक बहुत ही हाई एनर्जी डांस है, बहुत ही एक्सप्रेसिव डांस है, और उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन भी है। हमारे जो सर थे वो मथुरा प्रसाद संगीत विद्यालय, गांधर विद्यालय से कनेक्टेड थे वो, तो उसमें जो मतलब डिसिप्लिन मिला, जो हाई एनर्जी मिली, उसने मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। तो मेरे को बस उसमें फिर रुचि हुई, और हमारे सर भी बहुत अच्छा डांस करते थे वहां पे, जो ऑलरेडी पहले आते थे बड़े, उसमें हम लोगों के टाइम की जो एक नृत्यांगना है उसको आप सब लोग जानते हो, प्रेरणा श्रीमाली जी हैं, जो कि उस टाइम उन्होंने शुरू शुरू में वहां पे शुरू किया था, उनका बिल्कुल शुरुआत थी वहां पे। तो उनका उनके साथ भी हमें देखने का सौभाग्य मिला। तो ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे लाइफ में कि भाई इतने अच्छे अच्छे लोगों को देखा तो मन किया।
0: अच्छा, तो इसके कथक के अलावा आप संगीत है, पेंटिंग है, कविता भी आप लिखती हैं, और फिर कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं जैसा लोगों ने बताया है। तो ये जो शौक है आपको किस तरह से लगे और किस तरह से ये लाइफ को बैलेंसिंग कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: देखिए, ये सारी मेरी हॉबीज समय के साथ में धीमे धीमे डेवलप हुई हैं। मतलब जहां जिसकी जरूरत पड़ी उस चीज को डेवलप किया है। मतलब विवाह से पूर्व कुकिंग नहीं आती थी, पर बाद में मदर इन लॉ बहुत अच्छी कुक मिली, साथ में हस्बैंड ने भी बहुत जबरदस्त एक्सपोजर दिया डिफरेंट होटल्स में ले जा करके। तो मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कुकिंग में, एंड डेफिनेटली अब कुकिंग में पूरा इंटरेस्ट है मुझे। और उसके साथ ही जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ भाव होते हैं लाइफ में या कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनको हम शब्दों में कन्वे नहीं कर सकते सामने वाली पार्टी को, या हम उनको किन्हीं कारणों से व्यक्त नहीं कर पाते, तो उनको अभिव्यक्ति देने के लिए फिर मैंने इसमें जैसे कविताएं लिखना शुरू किया, पेंटिंग शुरू करी, क्योंकि हर चीज को आप कह नहीं सकते, वो आपकी खुद की अनुभूति होती है, आपको समाज का भी डर होता है कहें कि नहीं कहें, और कहीं अभिव्यक्त भी करना होता है। तो उसमें फिर मेरे को ये कविता है, पेंटिंग है, ये बहुत अच्छे माध्यम मिले, ये बहुत ही रिलैक्सिंग है मेरे लिए, और लाइफ की जीवंतता भी बनी रहती है, थोड़ी गति भी बनी रहती है इससे, तो अच्छा लगता है लिखने में। बाकी प्रोफेशनली कभी ऐसा सोचा नहीं।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। तो इतने कम डॉक्टर्स होते होंगे जो अपनी स्किल सेट के अलावा, अपनी नॉलेज के अलावा, इस तरह की भी, जो मेडिकल नॉलेज के अलावा भी इस तरह की सब चीजों में उनको इंटरेस्ट होता है। अच्छा, कुकिंग पे थोड़ी मैं बात और करना चाहूंगा। कोई ऑफ द कफ सवाल है, कोई ऐसी कोई खास डिश हमारे लिस्टर्स के लिए बताना चाहे जो आपकी स्पेशलिटी हो, जो आप बहुत अच्छी बनाती हो और आपको लगता है कि और सिंपल भी हो बनाने में, ऐसी कोई डिश के बारे में बताइए।
1: देखिए, मेरे को जो लोग बाग कहते हैं कि मैं अच्छा बनाती हूँ, एक्चुअली हम नॉन वेज हैं, तो उसके अंदर एक साग मटन करके होता है, वो मेरी मतलब यूनिक डिश है। Okay. और जिसने भी खाई है सबको पसंद है। इसके अलावा एक होती है कैरेमल पुडिंग, पुडिंग okay. में है। तो ये दो चीजें डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ देम। तो किसी को भी सीखनी है, दे कैन कम टू मी, बिल्कुल खुशी से सिखा सकती हूँ जी।
0: चलिए, तो श्रोताओं, ये खास बात है, देखिए डॉक्टर जो हैं आपको डॉक्टरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें सिखा रही हैं। एक साग मटन आप सीखिए इनसे, और कभी आपने कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। तो चलिए, इसी बात पे रुक के एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: ये मेरा पसंदीदा गाना है। इसके अलावा ये हवा ये रात, वैसे दो तीन गाने हैं जलते हैं जिसके लिए,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: सुजाता
0: हाँ
1: का बहुत बढ़िया।
0: जी हाँ जी, तो ये कुछ गाने हैं जो मुझे पसंद हैं उनके, मैं सुनना पसंद करती हूँ जब अकेली होती हूँ तब।
1: बहुत बढ़िया, क्या मखमली आवाज है। तलत महमूद मेरे भी फेवरेट हैं और मैं भी बस उनको ही सुनना पसंद करता हूँ। और उनके
0: जी
1: जो दिले नादा, तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, अगर मिर्जा गालिब फिल्म का जो गाना था तो
0: जी
1: वो बहुत बढ़िया था। तो चलिए यहाँ रुक के गाना सुन लेते हैं। आप करीब करीब हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं, बस
0: हाँ जी
1: एक दो सवाल और फिर हम इसको रैप अप करते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी।

0: हाँ डॉक्टर अनुपुर, अब देखिए आपने इतना अच्छा जीवन जिया है, इतने सारे अनुभव हैं आपके साथ में, मेडिकल फील्ड के भी हैं, मेडिकल फील्ड्स के परे के भी अनुभव हैं, तो आप ही बताइए कि जिंदगी में सक्सेस या सफलता को आप किस रूप में देखती हैं, उसको क्या आप उसके बारे में क्या सोचती हैं?
1: सफलता यानी देखिए, सफलता की सबकी परिभाषा अलग अलग होती है। मेरे निगाह में तो एक सहज, सुगम, थोड़ा अनकॉम्प्लिकेटेड सी लाइफ अगर बीत जाए आपकी तो सफल जीवन है। और एक ऐसा जीवन जहाँ पे कि प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी एक सामंजस्य हो, और ना तो आप किसी तरह से डिप्राइव्ड फील करें ना आपका कोई फैमिली मेंबर करे, क्योंकि अगर आप अगर फैमिली में रह रहे हैं तो उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए और वो भी डिप्राइव फील ना करें। इससे अच्छा जीवन कुछ नहीं हो सकता।
0: ब्यूटीफुल, ये खास बात है, जो लोग

0: सफलता को, सक्सेस को पावर, पैसे से जोड़ते हैं, उनके लिए कितना बहुत ही सटल संदेश दिया है आपने कि एक सहज जिंदगी जीना, एक नॉर्मल जिंदगी जीना, एक अनकॉम्प्लिकेटेड जिंदगी जीना, वो है जो आपको सेटिस्फाइड रखता है, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको एक तरह से सफल भी माना जा सकता है। बहुत बढ़िया बात। तो अब अंत में डॉक्टर निपुर, हमारे श्रोताओं को कोई आपका संदेश हो वो दीजिए, आप कोई कविता की पंक्तियां सुनाना चाहें, कोई गुनगुनाना चाहें, तो आपका स्वागत है, मंच आपका है।
1: देखिए, एक जो गीत है वो मेरे को काफी पसंद है और मैं उस पे अमल करने की भी कोशिश करती हूँ। हालांकि गाने में इतनी अच्छी नहीं हूं, पर गुनगुना के देखती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: गीत

0: बेसिकली इस इन दो लाइनों ने मेरे को बहुत अफेक्ट किया है कि जीवन में जो भी पल, जो भी मौके या जो भी अवसर जब भी आए उनको पूरा 100% जी लो, क्योंकि अगर एक बार निकल गया ना वो समय तो वो वापस नहीं आएगा, और जो खुशी उस मोमेंट पे मिलती है वो शायद हमें बाद में ना मिल पाए, पर साथ ही में हम कुछ प्रोडक्टिव और क्रिएटिव भी हो पाएंगे क्योंकि वो मौका हमको ऊपर वाले ने दिया है। तो कोई भी मौका छोड़ना नहीं है, कुछ वो मतलब लौट के नहीं आएगा। तो ये मेरी थोड़ा संदेश है, चाहे आप इसको संदेश समझ लें या मेरी लाइफ का मोटिवेटिंग सेंटेंस समझ लें, यही है। और क्योंकि अब अंत में नियति सबकी एक ही होनी है, और एक मेरे हिसाब से एक शाख के पत्ते के समान होती है जिसको मैंने कुछ पंक्तियों में ढाला है। हवा से हाथ मिला, हवा से हाथ मिला, उड़ चला बेपरवाह बे आवारा, पता देता रहा सदा दरख्त का जिससे वो था उगा। संग हवा के मटकता रमकता लहकता चहकता, रहा नापता अनगिनत दूरियां, कभी उलझता कभी संभलता, न था डर न थी मजबूरियां। पर रियलिटी ये, हवा तो हवा थी, कभी यहां तो कभी वहां थी, जाने कब कहां हो गई, क्यों और कैसे बेपरवाह हो गई। लड़खड़ा गया डगमगा गया, लड़खड़ा गया डगमगा गया, खोजता अपना पता वो अकेला पत्ता, पर अब न हवा थी न दरख्त था केवल एक स्तब्ध पत्ता, एक अकेला लापता पत्ता। दिस इज ऑल, थैंक यू।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। आपका पहला गीत आपने आपकी कसम का गाया था, वो मेरा भी फेवरेट गाना है। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर भी थी और ये खूबसूरत गाना था, और ये कविता तो बिल्कुल एक जीवन की एक ये यात्रा है जैसी हम सबकी है, उसके बारे में इतनी खूबसूरत तरह से आपने सारी बात बता दी है, तो मजा आ गया बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: तो डॉक्टर नुपुर जी, आज आपने जिस आत्मीयता से अपने अनुभव, संघर्ष, संवेदनाएं और जीवन दर्शन हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए हैं, उसके लिए हम आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
0: मेरा भी जीवन के रंग गीत के संघ को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक अभिव्यक्ति का मंच दिया। धन्यवाद।
1: तो चिकित्सा सेवा के साथ साथ कला, संगीत और संस्कृति के प्रति आपका प्रेम वास्तव में जीवन को संतुलित और सुंदर बनाने की प्रेरणा देता है। हम कामना करते हैं कि आप इसी तरह स्वस्थ, सक्रिय और प्रेरणादायी बनी रहें और समाज को अपनी सेवाओं तथा सकारात्मक ऊर्जा से निरंतर समृद्ध करती रहें। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आलोक कुमार आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो SN। थैंक यू
2: दोस्तों। जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, थोड़ा सा जोश से भर जाते हैं, थोड़ा उत्साहित होते हैं। पूरी जिंदगी हमारी उसी पर निर्भर करेगी दोस्तों। दोस्तों, हमारे पूर्वजों की जीवन शैली हेल्दी रहने के लिए इसलिए थी क्योंकि वो प्रकृति के पास थे, नेचर के नजदीक थे। सुबह सुबह का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में भजन पूजन करते थे। वे मुर्गे की बांग के साथ उठते थे और चांद निकलने पर तुरंत सो जाते थे। वो अपने शरीर को प्रकृति के साथ चलाते थे। आज प्रकृति का मनुष्य से संपर्क तो टूट ही चुका है। रात को देर तक जागने से, सुबह देर से उठने से स्फूर्ति का अभाव तो होता ही है और आलस भरा रहता है। नए अनुभवों से सामंजस्य बैठाने के लिए पॉजिटिव आत्म छवि यानी कि अपने बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके एक्शन बदल जाते हैं, जिससे आपकी उपलब्धियां बदल जाती हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने, सम्मान पाने और अच्छे परिणामों से सकारात्मक बदलाव लाने की चाबी अच्छी आत्म छवि बनाए रखने में है। अपने बारे में अच्छा सोचिए दोस्तों। अपनी बातों पर अड़े रहने का रवैया आपकी तरक्की की राह में बाधा बन जाएगा दोस्तों। फ्लेक्सिबल होना सीखिए, लचीला बनना सीखिए। इस अड़ियलपन से निजात पाने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को उस समय हटाना ही पड़ेगा जब कोई ये साबित कर रहा हो कि इससे नया और बेहतरीन विचार उनके पास है। जरा सुन तो लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठहराव से बचना है तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप गलत हो सकते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि वो नए के लिए तैयार रहे।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

ये करीब 90 साल पुरानी बात है। एक बनारसी बंगाली किशोर बड़े ही शौक से कलकत्ता पहुंचा। देश की राजधानी रह चुका हुआ यह शहर तब दिसंबर की गुलाबी ठंड से सराबोर था। कलकत्ते से समुद्र ज्यादा दूर नहीं है, पर वो उस हुगली नदी की गोद में बसा हुआ है जिसमें गंगा का जल बहता है। बड़ी खूबसूरत बात है कि बंगाल में आते ही गंगा जी ज्यादा कलाकार हो जाती हैं, अपना नाम बदलकर पद्मा और हुगली रख लेती हैं। बहरहाल वो जमाना था जब कलकत्ते में खड़े होकर बनारस के रंग को महसूस किया जा सकता था। वो किशोर भी बस उसी रंग में डूबा हुआ था। कहीं से सितार, कहीं से शहनाई, तो कहीं से मृदंग की गूंज उठती थी। वहां विशाल संगीत समारोह चल रहा था। देश भर के आला संगीतज्ञ वहां थे, एक से बढ़कर एक सजीले, खूब चमकदार रंगीन पोशाकें और उन पर शोभित खूब सारे पदक मेडल्स, उस पर से भी भारी भरकम गहनों के क्या कहने, मानो किसी राजा की बारात जा रही हो जिसमें खूब सारे राजा राजकुमार आए हों, पूरा जौहर जलवा दिखाने। पर सजीलों की भीड़ में एक बहुत ही सादे और साधारण से व्यक्ति भी विराजमान थे। बस उन्हीं पर किशोर की नजर ठहर गई। वो किशोर 4 साल से नर्तकों की दुनिया का वासी था। 10 साल की ही उम्र में यूरोप घूम रहा था। एक से बढ़कर एक कलाकार सामने आए थे उसके, पर अभी नजर बार बार ऐसे सज्जन पर ठहर जाती थी जो कतई प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। किशोर ने शायद अपने बड़े भाई उदय शंकर से पूछा तो पता चला कि ये साधारण से दिख रहे संगीतज्ञ का नाम उस्ताद अलाउद्दीन खान है। कई तरह के साज बजाते हैं, किसी संत की तरह रहते हैं। वाकई वो किसी दीपक की तरह लग रहे थे जिनकी संगीतमय आभा कानों में घुल रही थी, दिल में उतर रही थी और नसों में पसर कर रोम रोम को हर्षित कर रही थी। जब शारदा मां की पावन भूमि मैहर से आए उस्ताद का संगीत सामने आया, तब चारों तरफ फैले सजीले लोग अपना अर्थ खो बैठे। मन बोल उठा कि ऐसे उस्ताद से जरूर कुछ सीखना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात रही कि उदय शंकर की गुहार पर उस्ताद नृत्य मंडली के साथ यूरोप जाने को तैयार हो गए। अब तो उस किशोर को उस्ताद के साथ सुबह शाम रहने का मौका मिल गया। कभी कभी किशोर के मन में होता था कि वो अलाउद्दीन खान साहब को विधिवत उस्ताद बना ले, तो कभी किशोर का मन कच्चापन से हावी हो जाता था। तब उस्ताद ने कहा, तुम पहले तय कर लो कि करना क्या है, सीखना क्या है। कहीं एक जगह मन लगा लो तो चले आना मेहर और सीखना। खैर, एक दिन आया जब शिष्य ने फैसला कर लिया। बड़े भाई की ग्लैमरस नृत्य मंडली को अलविदा कहा और बहुत साधारण लिबास में महियर पहुंचकर उस्ताद के चरणों में समर्पित हो गए। उस्ताद बहुत पक्के थे। उन्होंने ना सीखने में समझौता किया था और ना ही सिखाने में। उस्ताद ने अपनी बेटी अन्नपूर्णा देवी और बेटे अली अकबर खान के समान ही मानकर अपने उस शिष्य को पारंगत किया। पूरे मनोयोग से सीखने सिखाने का दौर चल पड़ा। राग भैरव से भोर होती थी, भीम पलासी से दोपहरी तपती थी, यमन से शाम और मल्लार से रात चढ़ती थी। उस्ताद के आंगन में रोज 18 घंटे संगीत लहरियां उठती थी। वो संगीत के महियर घराने का स्वर्णिम काल था। अकबर सरोद सीखते थे, अन्नपूर्णा सुरबहार, और उस युवा को सितार के तार पर उंगलियां साधने में लगभग 7 साल लग गए। तब दुनिया को पंडित रवि शंकर के रूप में
एक विरल संगीतज्ञ मिला। ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से न्यूयॉर्क लंदन तक पंडित रविशंकर के नाम का सिक्का चलता था। संगीत के जादू से सम्मान की बारिश तो होती ही थी। 7 अप्रैल को दुनिया में आने वाले रविशंकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने उस्ताद को किसी ईश्वर की तरह मानते थे और हमेशा तमन्ना रहती थी कि उस्ताद कुछ और सिखा दें। देश की अद्भुत हस्ती उस्ताद ने भी रविशंकर को सब कुछ दिया। अपनी बेटी अन्नपूर्णा का हाथ देकर दामाद भी बनाया। वो संसार के व्यस्ततम संगीतज्ञों में शुमार रखते थे। आज यहां तो कल वहां। उस्ताद ने एक बार उन्हें डांटा भी, तुम तितली की तरह हो, एक साथ बहुत सारी चीजें करते हो। समय बदला पर एक साथ कई काम की ललक छूटी नहीं। फिल्मों के लिए भी खूब काम किया। राज्यसभा में मनोनीत हुए, भारत रत्न से नवाजे गए। वो कहते थे, जब मैं कोई राग बजाना शुरू करता हूं तो सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया को बंद कर देता हूं और फिर अपने भीतर गहराई तक उतरने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, ऐसी कोशिश का ही तो कमाल है कि उनका संगीत अमर है।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: एक बार सोनू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। आदमी बहुत गुस्से में चिल्ला, मेरे सर पे आके बैठ जा। सोनू बोला,
3: नहीं अंकल, मैं यही ठीक हूँ, वहां से फिसल कर तो गिरने का डर रहता है ना।

संत मेहजी के प्रकांड पांडित्य और विरक्त स्वभाव की ख्याति पूरे जापान में फैली हुई थी। अक्सर जिज्ञासु उनके पास आते थे और अपनी शंकाओं का समाधान लेकर संतुष्ट होकर लौट जाते थे। एक दिन जापान के राज्यपाल कियाजारी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने निजी सचिव को अपना परिचय पत्र यानी कि विजिटिंग कार्ड दिया और संत जी के कमरे में भेजा। संत जी ने विजिटिंग कार्ड पढ़ा, उसमें उनके राज्यपाल होने की चर्चा थी। संत जी ने सचिव से कहा, सुनिए भैया, उनसे कहिएगा कि मैं राजकाज की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता, क्योंकि मुझे दरअसल राजनीति की बातें आती ही नहीं है। मैं तो केवल धर्म और साहित्य की चर्चा कर सकता हूं। निजी सचिव ने बाहर लौटकर राज्यपाल को संत जी के सारे बातों के बारे में बताया। राज्यपाल जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कागज पर सिर्फ अपना नाम लिखकर भेज दिया। संत जी ने उन्हें बुलवा लिया। घंटों तक बैठकर उनके साथ धर्म की और ईश्वर के संबंध में चर्चा ही करते रहे। जब राज्यपाल लौटने लगे तो संत मेहजी ने कहा, देखिए महाराज, धर्म का सार सेवा, परोपकार, न्याय और करुणा जैसी चीजें होती हैं। ये सभी गुण मानव को अमर बनाते हैं, उसे शांति देते हैं। आप व्यावसायिक तौर पर क्या करते हैं, ये आप नहीं हैं, तो इसे हर जगह पर दिखलाते मत घूमा करिए। दोस्तों, समझने वाली बात है, जब कोई हमसे पूछता है कि आप कौन हो, तो हम बताते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम टीचर हैं, हम मजदूर हैं, हम ठेकेदार हैं, हम आर्किटेक्ट

0: एक्ट हैं और जाने क्या क्या।
1: लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें वो काम है जो आप करते हैं? मरीजों को ठीक करना डॉक्टर का काम है, तो आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। कोई ब्रिज बनाना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कोई नई चीज को बनाना इंजीनियर का काम है, और आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से और चीजें। पर दोस्तों, आप दरअसल हैं कौन? आराम से विचार करिएगा। हमारे पद, हमारे काम, क्या यही बस हमारी पहचान है? इन काम और पदों के पीछे भला हम हैं कौन? एक बार पूछ के देखिएगा किसी से।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: माँ, ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं? माँ ने कहा, बेटा इतनी आसानी से थोड़े ही मिल जाएगा किसी को। तू पिल्लू जो था वो मनी मन सोचता हुआ सोचने लगा, कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग सी आ रही है।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। जर्मनी के क्लॉस्टल शहर में उस बच्चे ने होश संभाला, तब अपने परिवार को खूब लंबा चौड़ा पाया। उसके दो तो बड़े भाई थे और उससे छोटे 10 भाई बहन, मतलब पूरे 11 भाई और 2 बहनें। छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के बड़े होने का इंतजार रहता था ताकि बड़ों के कपड़े उन्हें मिल जाएं। हफ्ते में 2 दिन अच्छा खाना मिलता था, बाकी दिन सूखी ब्रेड। शक्कर का तो स्वाद बच्चों ने चखा ही नहीं था। पिता खदान में काम करके बस जरूरी धन कमा पाते थे। देर रात जब पिता सुस्ताते थे तब दूर देश की कहानियां सुनाते थे, तो वो बच्चा भी दुनिया घूमने की तमन्ना से भर जाता था। धन की सीमा होती है पर मन की तो नहीं ना, मन तो बार बार सरहदें लांग जाता है। सरहद पार की खबरें अखबारों में ही आती हैं, तो वो बच्चा आसपास आने वाले अखबारों में झांकने लगा। अखबार पढ़ने वालों से सुनता रहता था और पढ़े हुए अखबार को बार बार पलट पलट कर देखता था। एक एक अक्षर में झांकते हुए वो बच्चा अखबार पढ़ना सीख गया। एक दिन मां बाप दोनों दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए कि उनका महज 5 साल का बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये तो चमत्कार है। अक्षर तोतली आवाज में साकार होने लगे, जबकि बच्चा स्कूल भी नहीं गया था। खुशनसीब मां बाप ने मन ही मन इस बच्चे पर खास ध्यान देने का फैसला कर लिया। उसके बाकी भाई बहन खूब खेलते थे, लेकिन वो जीव जंतु फूल पत्ती में ही लगा रहता। एक दिन वो पिता के टूटे हुए संदूक के सामान को देख रहा था, उसमें उसे एक पुराना पॉकेट लेंस दिखाई दिया। उस मैग्नीफाइंग ग्लास में खरोंच के निशान थे, पर बालक ने उसे उठा लिया और पिता के पास पहुंचा। पापा ये मुझे दे दीजिए ना, मैं अपने जंतुओं को इसकी मदद से देखूंगा। पिता फिर चौंक उठे और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानते थे कि उनका पुत्र प्रकृति के प्रति अथाह जिज्ञासा से भरा है, तो इसे रोकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने खुशी के साथ कहा, लेंस ले लो बेटा और सदुपयोग करो इसका। फिर क्या था, वो बच्चा घंटों जीव जंतुओं को निहारा करता और उसे अलग ही संसार नजर आने लगा। प्रकृति प्रेम ही उसे चिकित्सा शास्त्र की ओर ले गई, और इसमें एक खास पहलू ये भी था कि डॉक्टर बनने से तब दुनिया के घूमने की संभावनाएं बढ़ सकती थी। उम्र कुछ बढ़ी तो दोनों बड़े भाई कमाने के लिए अमेरिका चले गए, पर उसे माने जाने नहीं दिया। मां की इच्छा थी कि कम से कम एक संतान पढ़कर नाम रोशन तो करे। किसी तरह परिवार ने हिम्मत दिखाई और उसे स्कूल पास युवा को गोटिंगेन शहर उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। तब पिता तो पुत्र की तेजी देखकर सकुचा जाते थे कि अगर रुचि दिखाएंगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। समझदार युवा ने सोच लिया कि आगे का रास्ता उसे खुद तय करना है। विश्वविद्यालय में उसने एक शोध पत्र लिखा, जिसमें सबसे ऊपर उसने लिखा, कभी बेकार मत बैठिए, कभी निष्क्रिय मत रहिए। वाकई दुनिया जो देख रही है वो दुनिया जिसे केवल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है, दोनों में कुछ भी निष्क्रिय है ही नहीं। ये शोध पत्र इतना कामयाब हुआ कि उन्हें पूरे $60 पुरस्कार में मिले, संग्रहालय में नौकरी भी मिली और लोग उस विद्यार्थी को रॉबर्ट कोच के नाम से जानने लगे। रॉबर्ट कोच ने पिता को फिर अचंभित कर दिया। अपने मजाकिया लहजे में पिता को पत्र लिखा, कभी कभी ऐसा हो जाता है पापा, अंधी मुर्गी को भी मक्के का दाना मिल जाता है। समझिए मेरे साथ ऐसा ही हो गया।
अब जैसे जैसे परीक्षण की सुविधाएं बढ़ती गईं, रोबोट कोच विशेष रूप से खतरनाक बैक्टीरिया के चक्रव्यूहों को भेदते चले गए। सबसे पहले उन्होंने जानलेवा बीमारी एंथ्रेक्स के बीजाणुओं को खोज निकाला। चकित रोग वैज्ञानिक जूलियस कोहन हेम ने तब खुशी से भरकर कहा, यह तो बहुत बड़ी खोज है और ये युवा रॉबर्ट कोच अपने परीक्षण प्रतिभा में हमसे बहुत आगे निकल गया है। ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया का पीछा करते करते दुनिया को 24 मार्च 1882 को बताया कि जानलेवा बीमारी तपेदिक का रोगाणु कैसे काम करता है, और रातों रात वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। रोगाणुओं की विशाल बस्तियों में खोजते खोजते रॉबर्ट कोच ही थे जिन्होंने एक दिन बताया कि हैजा कैसे होता है। उनकी खोजों में अनेक प्रकार की दवाइयों के लिए रास्ता आसान बना दिया गया। कभी खूब अभाव देखने वाले इस इंसान ने खूब पैसे कमाए, लेकिन अहंकार छू न पाया उन्हें। वो कहते थे, मैं तो टहल रहा था, सोना राह के किनारे पड़ा था, संजोग से मुझे दिख गया बस। बेशक नोबेल प्राइज से सम्मानित इस वैज्ञानिक को दुनिया भूल नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने आप में लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।
3: नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसने है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तो जाना नहीं जाना है, तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जो इतने देर तक तेरे लिए बजता रहेगा। कोई गा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: आज तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
2: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बना

0: जाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय, रेडियो SN एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर। और आप सुन रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जहां अल्फाज बोलेंगे और एहसास महसूस होंगे। जी हां दोस्तों, तो हम सफर शुरू करते हैं अल्फाज से एहसास तक का। कहते हैं कि गजल सिर्फ एक शायरी नहीं, बल्कि दिल की वो दबी हुई आह होती है जो संगीत का लिबास पहनकर हमारी रूह तक पहुंचती है। एक तरफ जगजीत सिंह जी की वो मसीहा जैसी आवाज जो पुरानी यादों को ताजा कर देती है, दूसरी तरफ मेहदी हसन साहब जिन्होंने गजल को एक नया मुकाम दिया, और तीसरी तरफ गुलाम अली साहब जिनकी गायकी में एक अलग ही थरथराहट और दर्द है। तो दोस्तों, आज की शाम थोड़ी फुर्सत की है तो क्यों ना हम सब मिलकर उन कागज की कश्तियों को याद करें और उन रास्तों पर चलें जहां जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मोहब्बत में कदीम इंतहा अभी बाकी है, किसी शायर ने कहा है, मोहब्बत में कदीम इंतहा अभी बाकी है, अभी तो कारवाने रफ्तागान बाकी हैं, मगर वो बचपना वो बेफिक्री अब कहाँ है दिल, अब तो सिर्फ यादों का धुआं ही बाकी है। दोस्तों, बचपन की वो यादें किसी सरमाए से कम नहीं होती। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी वो मिट्टी की सौंधी खुशबू और बारिश की बूंदें बसी हुई हैं। तो आइए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की पुरकशिश आवाज़ में डूब जाते हैं और अपने बचपन को एक बार फिर से जी लेते हैं। सुदर्शन फाकिर का ये मशहूर कलाम, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। गजल मुलाहजा फरमाए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में।

0: मेरा उनका साथ रहा है कुछ 40 साल से।
1: जिंदगी के सफर में सभी साथी नहीं होते, जिंदगी के सफर में सभी साथी नहीं होते दोस्तों, हर मोड़ पर पुराने दोस्त बाकी नहीं होते। प्यार तो हर कोई करता है इस दुनिया में, मगर मौत तक जो साथ निभाए वो साथी नहीं होते। अभी हम बचपन की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन अब रुख करते हैं उस आवाज की तरफ जिसे शहंशाह गजल कहा जाता है, यानी मेहदी हसन साहब। उनकी गायकी में एक ऐसी संजीदगी है जो सीधे दिल पर दस्तक देती है। उनका कहना है कि जीते जी मोहब्बत करना तो आम है, पर असली इम्तहान तो मौत के बाद भी उस रिश्ते को जिंदा रखना है। तो पेशे खिदमत है उस्ताद मेहदी हसन खां की ये लाजवाब गजल। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। कतील शफाई के कलाम को अपनी रूहानी आवाज में गाकर मेहदी हसन साहब ने अमर कर दिया।

दोस्तों, निगाहों के तसव्वुर में सूरत अभी भी बाकी है। निगाहों के तसव्वुर में वो सूरत अभी भी बाकी है। मोहब्बत की वो हल्की सी शरारत अब भी बाकी है। जमाना बीत गया उनसे बिछड़े हुए ऐ दिल, मगर दिल में मिलने की वो हसरत अब भी बाकी है। मोहब्बत का असली मज़ा तो उस इंतज़ार में है दोस्तों, जो रातों की नींदें उड़ा देता है। हसरत मोहानी साहब की लिखी हुई ये गज़ल और ग़ुलाम अली साहब की वो थरथराती सी आवाज़, ऐसा लगता है जैसे वक्त यहीं कहीं ठहर गया हो। सुनिए इश्क की उस मासूमियत को बयान करती ये दास्तां। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। गुलाम अली साहब की आवाज में सुनिए ये दर्द से भरी दास्तां।

कहा जाता है कि इश्क में थोड़ी दीवानगी ज़रूरी है। जो लोग हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखते हैं, वो भला मोहब्बत की इस बेखुदी को क्या समझेंगे। जगजीत सिंह की रेशम जैसी आवाज़ में पेश है निदा फाजली का ये मशहूर कलाम, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है।

तुमने कहा था हर एक मोड़ पर साथ निभाएंगे, मगर अब तो रास्ते भी हमसे सवाल करते हैं। चलो माना कि तुम बेवफा नहीं हो फराज,

मगर कभी कभी तुम भी कमाल करते हो। आगे फराज साहब कहते हैं, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। अहमद फराज का ये कलाम मेहदी हसन साहब की आवाज में एक इबादत बन गया हो जैसे। कभी कभी रिश्तों में ना चाहते हुए भी इतनी दूरियां आ जाती हैं कि दिल फिर इतना ही चाहता है कि सिर्फ एक बार ही सही हमें दुखाने के लिए ही आ। पर लौट आए कोई, सुनिए एक टूटे हुए दिल की खामोश पुकार। मेहदी हसन साहब की पुरसकून आवाज में ये गजल, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।

दोस्तों, अब थोड़ा माहौल बदलते हैं। सूरज को लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, सूरज को लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं। बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। गुलाम अली साहब की गायकी का एक अलग ही रंग है दोस्तों, थोड़ी मस्ती, थोड़ी शिकायत और थोड़ा सा नशा। अकबर अलाहाबादी साहब के तंज और गुलाम अली की आवाज एक दूसरे को जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, एक अलग सा ही नशा छा जाता है। वो कहते हैं, न तजुर्बा कारी से, ना तजुर्बा कारी से वायस की ये बातें हैं। मतलब ना तजुर्बा कारों से वायस उपदेश देने वाले की ये बातें हैं। इस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है। या वायस उपदेश देने वाला है और तंज है कि उसने कभी इश्क का नशा चखा ही नहीं, तो वो इसकी गहराई को क्या समझेगा। उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद उस मैं से दिल ही में जो खिंचती है। आइए दोस्तों, गुलाम अली साहब की आवाज में ये खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है डाका

वेल दोस्तों, घड़ी की सुइयां फिर उसी जगह आने को हैं जहां से आपसे एक बार फिर विदा लेने का वक्त हो चला है। उम्मीद है अल्फाज से एहसास तक का आज का सफर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए जज्बात और एक नए अल्फाज और कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक आप अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा, गाते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टैंटिया भील 90.8 एफएम में। किसान साथियों, रेडियो टैंटिया भील 90.8 एफएम आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टैंटिया भील 90.8 FM की एप्लीकेशन के माध्यम से भी काफ़ी किसानों ने और विद्यार्थियों ने इसे अपने फ़ोनों में डाउनलोड किया है और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को रेडियो टैंटिया भील 90.8 FM के ऐप के माध्यम से लिया है। किसान साथियों, रेडियो टैंटिया भील 90.8 FM का खेती बाड़ी कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि हमारा जो किसान है उसकी आय के स्रोतों में वृद्धि हो, साथ ही उन्हें नए स्रोतों के बारे में जानकारी मिले, हमारे भारत देश की खेती संबंधी योजनाओं का लाभ उठा सके, साथ ही हमारे कृषि में होने वाले नए नए बदलावों को जान सके और देश विदेश की मंडी भावों के बारे में जान सके, साथ ही उन्हें मौसम के हाल से लेकर हमारे पर्यावरण के बदलावों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो कृषि है पूर्णतः पर्यावरण के ऊपर आश्रित है। इसीलिए किसान भाइयों, हमें यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता है कि हमें पर्यावरण में हो रहे बदलावों को देखते हुए हमें हमारी कृषि में भी बदलाव की आवश्यकता है। किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आज हमारा जो किसान है वो किसान अभी व्यावसायिक खेती करने लगा है, व्यावसायिक खेती के लिए अधिक लाभ पाने के चक्कर में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है जिससे उन्हें अच्छी से अच्छी फसल हो मिल सके। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में हम हमारे पर्यावरण को, हमारे जल को, हमारे वातावरण को, हमारी कृषि भूमि को और हमारे जीव जंतुओं आदि को हम दूषित कर रहे हैं। किसान साथियों, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो रसायनिकों का प्रयोग किए बिना जैविक दवाइयों का प्रयोग करके और जैविक खेती करके अच्छे से अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें एक बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि यह बदलाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जीव जंतु जो खरपतवार हम डालते हैं उसमें से काफ़ी खरपतवार है, जो हम खेतों से निकाल कर हमारे पशुओं को देते हैं, जो अनाज हम खाते हैं उसमें भी जितना हम रसायनों का प्रयोग करेंगे वो रसायन हमारे खाद्य फसलों में ही रह जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका प्रयोग कम से कम करें और हमें जैविक जितना हो सके हम जैविक कृषि की ओर ध्यान दें।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: दोस्तों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली भी गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फसल बीमा योजना किस तरीके से हम करवा सकते हैं और फसल बीमा योजना से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से हम फिलहाल कैसे हम फसल योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: विभास कुमार जी, जो कि महाप्रबंधक है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर PC सुधाकर, आप प्रबंधक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, और हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं सहायक आयुक्त फसल बीमा कृषि मंत्रालय से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णवीर चौधरी जी हैं अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज से, कृष्णवीर जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप किसानों का पक्ष यहां पर रखेंगे और साथ ही हमारे साथ सुधाकर जी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी काम करती है, और सुनील जी बताएंगे कि कैसे सरकार इस योजना को किसानों तक पहुंचा रही है, कैसे इसे और व्यवहारिक बनाया जा रहा है, किसान कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमारे साथ विभास जी हैं जो कि बताएंगे कि अगर किसान को किसी तरह की समस्या आती है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे में कैसे वो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनके लिए राह और आसान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट पर।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको मोटे तौर पर बताया कि किस तरीके से ये योजना काम कर रही है, समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए ताकि किसानों के लिए और आसानी हो सके, और जो उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूंगी कि जो फसल बीमा वीक हम मना रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, इसका मकसद क्या है?
3: देखिए, ये फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की गई है और इसमें बहुत सारे विभाग, बहुत सारे कर्मचारी, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग चूंकि इनरोलमेंट शुरू होता है, जनरली जो खरीफ का इनरोलमेंट है वो 1 जुलाई पर व्यवहारिक रूप से पिक पर रहता है या वहां से स्टार्ट हो जाता है, और जब कट ऑफ डेट है वो बहुत सारे राज्यों में 15 जुलाई है और बहुत सारे राज्यों में जो है 31 जुलाई है। तो इसमें ये किया गया था, इसका जो बनाने का स्वरूप था कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक जगह जमा करें, सभी को सेंसिटाइज करें और फार्मर्स के इनरोलमेंट के प्रति उनको दायित्व तो फिक्स करें कि आप जो है इनको समझाएं, और जो भी उनकी जो मशीनरी है उसको पूरी की पूरी एक सप्ताह में हम एक्टिवेट कर दें कि वो फसल बीमा इजी वे में हर एक जगह, हर एक गांव में, हर एक जगह वो पहुंच जाए ताकि किसानों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसका एक और पर्पस है कि चूंकि हम पहले योजना के बारे में बता देना चाहते हैं, तो और जो समय मिलता है किसान भाइयों बहनों को वो उसमें निर्णय ले पाएंगे और उसमें अच्छे से पूरे कागजात वगैरह जमा करके वो बीमा अपनी करा सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं कि पूरी स्टेक होल्डर्स को उसमें एक्टिवेट करना होता है।
1: मैं सुधाकर जी से जानना चाहूंगी, सर ये बताएं कि देखिए अभी हम फसल बीमा वीक मना रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो किसानों के मन में ये होता है कि कुछ नया किया गया होगा, कुछ चीजें बेहतर की गई होंगी, कुछ चीजें उनकी सहूलियत के अनुसार इसमें शामिल की गई होंगी। तो इस बार इस वीक में किसानों को क्या नया बताने वाले हैं, क्या नया उन्हें, क्या कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है?
4: जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि ये फसल बीमा सप्ताह हम ये तीसरी बार हम करने जा रहे हैं, पिछला खरीफ हुआ, फिर रबी हुआ, ये फिर से खरीफ आ गया है। तो इसका जैसे कई सारे उन्होंने बताया क्यों ये मनाया जा रहा है, उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि अब बीमा जो है हमारा स्वैच्छिक हो गया है। तो पहले तो जो भी लोनी फार्मर थे, जो बैंक से लोन लेते थे, उनका अपने आप बीमा हो जाता था। अब जो है उनको बताना जरूरी है कि ये बीमा हम ले क्यों, तो जब तक उनके हम घर पे नहीं जाएंगे तो हर बार जो है कुछ ना कुछ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको चुनते हैं। इस बार भी करीब 75-80 डिस्ट्रिक्ट चुना गया है और हर उसमें से कुछ कुछ ब्लॉक्स पे जाकर के, गांव के घर तक जाकर के, इतने अधिक मतलब जितने भी हमारे पास साधन है प्रचार प्रसार के, सभी का इस्तेमाल करते हुए और जितने हितधारक हैं सभी के कान तक एक बार आवाज जरूर पहुंच जाए कि बीमा है क्या और इसको हम कैसे लें और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और मतलब नुकसान होने पे फसल का उनको क्या इससे फायदा होगा और आगे फसल अपना जो है खेती बाड़ी आगे सुचारू रूप से करते रहेंगे। ये सबसे प्रमुख बिंदु है जिसपे की हम फोकस करना जा रहे हैं इस बार।
1: जी बिल्कुल, यानी जो एक किसानों की तरफ से लगातार मांग थी कि कुछ किसान ऐसे थे जिनका ये कहना था कि अगर हमने ऋण नहीं लिया है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, तो उनका क्यों बीमा किया जाए। मतलब अगर ऋण लिया है और तब भी अपने आप ही पहले बीमा हो जाया करता था, और अगर उन्हें नहीं कराना है तो ये उनके पास अब सुविधा है कि वो बैंक में जाकर इसकी जानकारी दे दे कि भले ही मेरा बीमा आप ना करें अगर ऋण लिया है तब भी, लेकिन इसके बारे में आपको सही समय पर सूचना देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं विभास जी से। विभास जी देखिए, हम जब गांव जाते हैं और किसानों से बात करते हैं और हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारा भी मकसद रहता है कि किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, लेकिन एक जो हम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक समस्या किसानों के बीच देखते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उनकी तरफ से शिकायत एक तरह से कह सकते हैं कि रहते कि हम जाएं कहां, कोई हमें सुनने वाला नहीं। अगर हमें नहीं भी कराना है बीमा और अगर हो गया है तो उसके बारे में हमें बैंक जाना पड़ता है, कोई सुनता नहीं है, हमें कंपनी की तरफ से, जो बीमा कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उन्हें समझा सके, इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है।
5: देखिए, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स कहलाते हैं सीएससी, सारे किसान भाइयों को पता है। तो हम लोगों का पूरा पर्पज़ ये है कि फसल बीमा की पूरी जानकारी किसानों को दी जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, मतलब हम लोग कैंप्स लगा सकते हैं, हम लोग ये सब करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं लोकल एरियाज में, उन लोगों को बताया जाता है कि फसल बीमा में क्या क्या सुविधाएं हैं, और उसके बाद पूरा एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है जिसपे किसान अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी जमीन का बीमा करा सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे सीएससी के थ्रू होती है। और उसके अलावा फिर मतलब उनको एक हम रसीद देते हैं जिससे ये उनको प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट करा है। उसके बाद का उनका पॉलिसी का या जो उन्होंने पेमेंट करा है उसका स्टेटस क्या है, वो भी हमारे वेली उनको समझा सकता है। तो इसलिए पूरी क्लेम अगर कभी आता है और अगर उनको इंटीमेट करना होता है तो उसके लिए भी वो हमारे वेली के पास आके अक्सर उनसे हेल्प लेते हैं, और फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि बेसिकली हमारा काम कनेक्शन का है। तो जो भी नियरेस्ट सीएससी है, और हमारे काफ़ी सीएससी हैं इन सारे, उसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक करीब करीब 3.5 करोड़ फार्मर्स को हम लोग इनरोल कर चुके हैं थ्रू द सीएससी नेटवर्क। तो
1: ठीक है, कृष्णवीर जी मैं आपके पास आती हूँ। अब ये बताएं कि देखिए, इस योजना को आए हुए 5 साल से ऊपर हो गया है, और कहते भी हैं कि किसी योजना की कामयाबी या फिर उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो लूप होल्स हैं उनको समझने के लिए 5 साल का वक्त काफी होता है, और कहते भी हैं कि किसी भी स्कीम का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 5 साल आप लेकर चलिए। अब आप कहाँ देखते हैं किसानों को इस योजना को लेकर, उनमें कितना आत्मविश्वास है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक प्रतिक्रिया आपको मिल रही है?
6: देखिए अंजू, जो उद्देश्य था सरकार का इस योजना को बनाने का, वो किसानों को जो नुकसान होता रहा प्राकृतिक आपदाओं से, उससे बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, जो पहले योजना थी उसमें जो लोन किसान का था उसमें कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसमें शिकायतें ये रही, कुछ बैंकों ने पैसा काट लिया, जमा नहीं किया पॉलिसी में, बहुत सारी शिकायतें रही। इसी वजह से अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसानों की अपनी मर्जी है कि वो उसमें अपना इंश्योरेंस पॉलिसी में किस तरीके से भागीदार लें। ये सच्चाई है कि अब जब सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य यह है कि किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप इसमें आइए और आप फसल बीमा कराइए, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान आपका होता है तो उसकी भरपाई हो सके। ये तो है योजना का उद्देश्य, और योजना का जो लाभ है वो किसानों के लिए है, लेकिन कुछ कमियां, जो सुधार हो रहा है बराबर, अभी भी खामियां हैं। खामियां क्या है कि जब फसल बीमा योजना को लागू करते हैं खरीफ का तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे रबी का करते हैं, लेकिन जब आपदा से नुकसान होता है देश के किसी भी कोने में, तो ये सच्चाई है कि अब तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी तरफ से जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को इसलिए लागू करवाया जिससे सर्वे के लिए ड्रोन जो है सबसे एक सही रास्ता चुना गया है और उससे नुकसान का जो है एक सर्वे होता है और उसी तरीके से किसानों का जो है बीमा योजना की धनराशि दी जाती है। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि पूरे गांव में जब नुकसान होगा, पहले तो ब्लॉक होता था, अब सरकार ने गांव कर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का नुकसान होगा। ये हो सकता है कि एक तरफ से गांव के एक हिस्से में नुकसान हो और दूसरा हिस्सा ठीक रह जाए। तो मेरा सुझाव ये रहा है और आज फिर मैं कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से फिर मेरा सुझाव है कि हर किसान के हर खेत का सिर्फ रसीद देना भर से जिम्मेदारी हक पूरा नहीं हो जाता, उसको कवर नोट दिया जाए कि ये फसल है, ये इसकी वैल्यू है और यदि नुकसान होगा तो इतनी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें भी दो चीजें हैं, एक केंद्र सरकार का धनराशि है और दूसरा प्रदेश सरकारों की उसमें धनराशि होती है। कई बार प्रदेश सरकारें समय पर धनराशि अदा नहीं कर पाती तो किसानों को ये फसल बीमा कंपनियां उसको जो लाभ समय पे नहीं दे पाते। कुछ प्रदेशों ने तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की अपने यहाँ, जैसे पंजाब है तो वहां परेशानियां होती हैं लेकिन पंजाब ने लागू नहीं किया, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। एक सिर्फ मेरा दो सुझाव है कि जब किसान को आपदा का मुकाबला करने का हालात होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां ब्लॉक लेवल पर होना जरूरी है, अगर ब्लॉक लेवल पर नहीं है तो जिला लेवल पे परमानेंट वहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस कंपनी का जो उस जिले में इंश्योरेंस कर रही है फसलों का, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। अब ऑनलाइन जो है सब कुछ में काम नहीं चलता, ऑनलाइन किया जा सकता है लेकिन जब लेने का नंबर आता है तो ऑनलाइन में अधूरापन रहता है और किसान उसमें भटकता है। इस कमी में सुधार करना है।
7: जी जी सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें जो कृष्णवीर जी ने, एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो कवर लेटर होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं हम किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार है, मकान है, यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस, सब में ये एक आपको बकायदा पॉलिसी मिलती है, उसमें जो जो चीजें कवर हैं, कितना सम इंश्योर्ड है, सब चीजें होती हैं। तो ऐसा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आगे इस पर कुछ किया जा रहा है?
3: देखिए, जो अभी पूरे चर्चा चल रही थी उसका स्वरूप है कि जो सरकार जो है मुख्यतः तीन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसमें हम लोग बहुत काम करने में सफल हुए। पहला चीज है कि हम फसल कटाई प्रयोग को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंट वे में करके हम किसानों को भागीदार बना के हमको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें, क्लेम दे दें। उसकी दूसरी चीज है कि इनरोलमेंट हम करें कि किसान को इनरोलमेंट में कहीं भटकना ना पड़े, हम उनकी पूरी चीज को है वो द्वार तक पहुंचाएं और इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, सीएससी, पोस्ट ऑफिस या फिर टेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसानों को हम योजना के बारे में बताएं, उसमें कोई त्रुटि रह गई उनको विश्वास हो और उसमें भागीदार बने। तो ये इसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार वगैरह कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये फसल बीमा सप्ताह इस बार लागू चलाई जाएगी। लेकिन मुख्य जो आप कह रहे थे कि हम उनको रिसीट देते हैं या नहीं देते हैं, हाँ हम लोग आज से 2-2.5 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो बैंक में बीमा कराते हैं, बैंक के थ्रू बीमा होता है, उनको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर या अभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे उनको तत्काल तुरंत हाथ में ही उनको पॉलिसी दिया जाता है। अच्छा। उसका पर्पस ये है जो हम किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं, इसका बहुत वैल्यू है क्योंकि आपके पास एक कागजात है, कागजात में एक सारे चीजें लिखे होती है कि आपका किस फसल का बीमा हुआ, आपने कितना प्रीमियम दिया, सरकार ने उस आपको प्रीमियम सहायता के रूप में आपके लिए कितने बीमा कंपनियों को भुगतान किया, किस खेत में है, किस खेत में किस फसल के लिए बीमा किया गया है, कितनी धनराशि है, बैंक का नंबर, खाता नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इसके अलावा फिर हम किसान भाई को और जागरूक करते कि अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रह गई तो इसको तत्काल हम लोग से सुधार पाए, बीमा कंपनियों को संपर्क करे ताकि इसमें सुधार किया जाए, ताकि हम भुगतान जब आपको भुगतान करना हो तो जल्द से जल्द भुगतान करे, किसी तरह की व्यवधान ना पैदा हो। खास करके ऐसा देखा गया है, पीछे हम लोग ने अनुभव किए थे कि अगर बैंक के माध्यम से जब इंश्योरेंस होता था तो किसान भाई को पता भी नहीं होता था कि मैं मेरी किस खेत की किस फसल के लिए बीमा हो गई है। तो ये एक चैलेंज था। जब हम इसमें व्यक्तिगत खेतवार आकलन करने की व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे पेरिल्स हैं जोखिम जिसको खेतवार आकलन किया जाता है, जब बीमा कंपनी राज्य सरकार के जो संयुक्त समिति होती है जब सर्वेक्षण के लिए जाती है तो वहां जिस फसल के लिए बीमा होता किया गया है वो फसल नहीं मिल पाती थी। तो ये सारे चीज जो चुनौतियां जो फील्ड में थी उसको सुधार कर किया गया।
7: देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किसान ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि हमारी कौन सी फसल का बीमा हो गया, और वो तो जो उसको जो फसल लेनी वो लेता है, और बाद में पता चलता है कि जो कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो नोटिफाइड फसल है जिसकी अधिसूचना है उसी का ही बीमा मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसी स्थिति ही क्यों आती है?
3: देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार इसमें अधिसूचित करती है फसलों को, इसमें योजना में उनके लिए जो एक क्षतिपूर्ति के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड होता है, ग्रांटेड यील्ड दिया जाता है, तो उसके लिए 10 साल का उपज आंकड़ा की आवश्यकता होता है, प्लस जो अभी हम लोग तत्काल में अगर कोई क्षति होती है, क्षति का जो मापदंड होता है वो भी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। तो राज्य सरकार ये देखती है कि किस फसल में जोखिम है, हमारे पास डेटा उपलब्ध है ताकि हम उसको अधिसूचित कर पाए। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि हम लोग ने भी सर्वे किया है, अदर किया है, कि जो मुख्य फसल होते हैं वो सारे कवर हैं, कुछ फसलें ऐसे हैं जिनके इल डेटा नहीं उपलब्ध होते हैं उस टाइम, उनको हम लोग राज्य सरकार को प्रेरित करते हैं, बात करते हैं मौसम आधारित बीमा योजना में, जैसे खास करके आप बागवानी फसलें हैं, खास करके आपके जो सब्जी की फसलें हैं जो आजकल शहर के नजदीक या गांव में भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो वहां भी हम लोग उनके डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है अलग अलग वैरायटी के कारण, अलग अलग टाइम के कारण। तो हम लोग कहते हैं उनको कि मौसम आधारित बीमा योजना है, उसमें आप इसको अधिसूचित करें।
7: जी बिल्कुल।
6: गन्ना भी है, वो भी बाहर है, अभी उत्तर प्रदेश क्या पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, 8 प्रदेश है, लेकिन गन्ना भी अभी योजना में शामिल नहीं हो पा रहा है।
7: जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और पूरे इस सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जाए, डोर टू डोर पहुंचा जाए, किसानों के घर तक पहुंचा जाए और इसके लाभ के बारे में उन्हें बताया जा सके, ताकि वो इससे जुड़े, इसका लाभ ले और जो उनकी आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
0: किसान भाइयों, अभी हमने फसल बीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर लेते हम छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहू बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: एनेक।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हुए

0: कहां कितने किसानों को इसमें कवर किया गया है और कितनी नई फसलों को शामिल किया गया है? सुनील जी,
1: देखिए, पहले जब हम पुराने योजनाओं में अगर देखें तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था। उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग ने देखा कि क्यों कम है, क्या किसान जानते हैं बीमा योजना के बारे में या नहीं जानते हैं, या राज्य सरकार अधिसूचित नहीं कर पाती फसलों को। तो ये सारे चर्चा करके हुआ कि नहीं, इसमें हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के हम इनको अच्छे से ढंग से योजना को नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में लागू किया गया, जिसमें पहले वर्ष में जो थे वो आप अगर संख्या देखेंगे किसानों का तो करीब वो 4 करोड़ एप्लीकेशन आए थे। और खरीफ अगर 16 की बात करें, अगर अभी हम पिछले खरीफ की बात करें तो स्वैच्छिक होने के बावजूद, योजना स्वैच्छिक हुई है, आधार इसमें कंपलसरी किया गया है, लैंड रिकॉर्ड को हम लोग जोड़ दिए हैं ताकि इसमें किसी तरह से डी डुप्लीकेशन हम प्रॉपर कर पाए, वो इसकी गलत फायदा लोगों ना उठा पाए। तो ये सारे चीजों को करने के बाद भी अभी हमारे पास खरीफ में केवल 5 करोड़ किसान अभी बीमित हुए हैं। और हम लोग आशा कर रहे हैं, ये कोविड काल का पीरियड है जब तक हम लोग के पास बहुत संसाधन कॉन्स्टेंट था, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है 5 करोड़ से ज्यादा फार्मर एप्लीकेशन को हम बीमित करेंगे इस बार। तो इसी तरह से देखेंगे। क्लेम के बारे में अगर हम कहें तो क्लेम का भी अच्छा रहा है। जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं 5 साल में आए हैं वहां क्लेम किसानों को मिला है। हाँ, किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि ये बीमा योजना है, बीमा योजना में लाभ उसी जगह मिलता है जहां आपकी फसल नुकसान हुई है।
0: ठीक है,
1: तो जहां जहां नुकसान हुई है वहां वहां फसल का बीमा मिला है। सरकार इसको पूरी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है, देखते रहती है, और इसके लिए बहुत सुचारू तंत्र भी लगाया गया है कि ताकि आपको किसी तरह की कठिनाइयां ना हो इसमें। अगर खास करके मैं आज बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो है शिकायत किसानों का होता था उसके लिए क्या करना चाहिए, तो किसान के लिए शिकायत पहले सीधे मंत्रालय को आता था, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरीट, राष्ट्रपति और मंत्रालय को। ये सारे चीजों को हम लोग ने बहुत ग्राम स्तर तक ले जा रहे हैं। अभी ब्लॉक लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र किया गया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को कहा गया कि टोल फ्री नंबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनकी शिकायत को करें और उनको निवारण करें। इसमें भी अब जो है केंद्र सरकार ने ये निश्चित किया है और इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलपमेंट हो चुका है कि पूरी कॉल सेंटर शिकायत के लिए पूरी स्ट्रेटजी, हर एक स्टेट्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव टोटल होंगे ताकि आपको शिकायत पूरे डॉकेट नंबर के साथ हो और हर एक चीज पर केंद्र सरकार उस पर निगरानी रख सके कि आपकी शिकायत कैसे हुआ और कब निपटारा।
0: ठीक है सुधाकर जी, जैसे कि कृष्णवीर जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि एक समस्या ये भी आती है कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि वो हमें बजट के हिसाब से चीजें करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो पूरा मैन पावर होता है वो उसको उसके अनुसार ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे तो किससे बात करेंगे किसान?
2: देखिए, ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल रेलेवेंट होता अगर ये शायद 2 साल पहले तक तो ये रेलेवेंट था। आज के समय में आप देखेंगे तो जो भी कंपनी काम कर रही है तो उसका एक प्रतिनिधि जिला स्तर पे भी है और उसका एक एक प्रतिनिधि हर ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पे उपलब्ध है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां हमारी कंपनी भी कार्यरत है 37 जिलों में, तो वहां 200 के आसपास हमारे प्रतिनिधि पूरे फील्ड में मौजूद हैं। तो उसमें वैसे जिले भी हैं जहां पर की प्रीमियम जहां जो जिससे कंपनी का आमदनी होता है वहां नहीं के बराबर है, वहां भी जो है हमारे हर ब्लॉक में आपको आप हमारे प्रतिनिधि मिल जाएंगे। तो ये समस्या आती है ज्यादातर उन छोटे राज्यों में जहां पर की प्रीमियम ही बहुत कम है। अगर सारे जगह पे प्रतिनिधि लगा दिया जाए तो जितनी प्रीमियम नहीं आती है उससे अधिक हमारा
0: कॉस्ट
2: बढ़ जाएगा। तो वहां पे एक समस्या है जिसको कि भारत सरकार के सहयोग से उसको ये सुलझाने की कोशिश की जा रही है, शायद उसमें भी कुछ जल्दी से
0: उसको लेकर क्या किया जा रहा है सुनील? जैसा कि
1: देखिए इसमें चीजें हैं जैसे अभी बता रहे थे, जिसमें पहले सेगमेंट में ही सुधाकर जी बताया कि कुछ ऐसे जिलों को हम लोग चिन्हित करते हैं जहां पोटेंशियल हो और इंश्योरेंस सभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट इस बार भी चुने हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनके लिए बिजनेस है, सरकार के लिए है कि किसानों को सुविधा है, तो उसके बीच में क्या बैलेंस हो और कैसे करे, तो इनके इंश्योरेंस कंपनी के जो तंत्र हैं उनको तो हम लोग एक्टिवेट

0: करते हैं, प्लस जो है ये फसल बीमा सप्ताह, फसल बीमा पाठशाला, ये सारे जो हमारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है उसके द्वारा भी करते हैं। और जो चीजें वहां अगर पोटेंशियल है और किसानों को नहीं है तो टारगेट भी दिया गया है कि हम आप वहां जाएं और टारगेट करें। तो बिजनेस के साथ साथ जो उनकी सरकार की दायित्व है उसमें पूरी समायोजित करके योजना बनाई जाती है और वहां हम लोग करते हैं। राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग हर एक किसान को समझाते हैं कि हाँ आपके पास जो है यहाँ क्षति हो सकती है, यहाँ रिस्क है, इस रिस्क में आपको बीमा करानी चाहिए। बाकी स्वैच्छिक है बीमा, किसान चाहते हैं तो बीमा होती है।
1: और इसमें मैं एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, अभी हमारे सीएससी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, पहले भी उन्होंने बताया कि ये हर गाँव में एक सेंटर तो है ही, कई कई गाँव में तो दो दो सेंटर भी है और कोई बहुत अधिक घनत्व वाला है तो उससे भी ज्यादा संख्या मिल जाए। तो वो जो सेंटर्स पे हैं उनको बीमा कंपनी, राज्य सरकार के और स्वयं सीएससी के द्वारा भी जो वहाँ काम कर रहे हैं, इसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको काफी उनको मैन पावर इन्हांसमेंट होती है, उनकी जो तकनीकी जानकारी बढ़ाई जाती है, समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है। तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए योजना का एक्सटेंडेड आर्म है, वो भी हर तरह से हर सुविधा देने के लिए किसानों के लिए सामने खड़े हैं वो, तो चाहे बीमा का लाभ लेना हो या बीमा कराना हो।
2: अच्छा जी जी, एक चीज और बताइए सुधाकर जी कि आप ये फसल बीमा मित्र कुछ हम सुन रहे हैं, ये क्या है?
1: हाँ, ये एक नई कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लाई है कि हर ग्राम पंचायत में या हर गांव में कह लीजिए कि एक वॉलंटियर का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन क्या मतलब, जो भी वॉलंटियर करेंगे तो एक बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा कि फसल बीमा मित्र के रूप में आप कार्य करिए
2: किसानों के बीच में
1: से ही।
3: असली बात यह है कि इसलिए मित्र खड़ा करना पड़ रहा भारत सरकार को कि कंपनियों के और किसान के बीच में जो एक समस्या चल रही थी उसके समाधान के लिए भारत सरकार जो है वो मित्र जो है हर गांव में करना जरूरी हो गया, इसीलिए किया जा रहा है, जिससे इसका किसानों को जो समस्याएं हैं वो है समय पर उसको इंश्योरेंस का जो प्राइस प्रीमियम जो देता है उसका नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो जाए, भरपाई करवाने के लिए ही ये ग्राम लेवल पर भारत सरकार मित्र जो है योजना खड़ा कर रही है।
2: जी मैं आपसे समझना चाहूंगी विभास जी, सीएससी का रोल किस तरह का है और कैसे इसे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को, किसानों को समझाएंगे?
4: देखिए, जैसे अभी सुधाकर जी ने यूपी की बात करी थी तो मैं यूपी का एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यूपी में हमारे करीब 80,000 केंद्र हैं, एवरेज हो गया करीब करीब 1100-1200 केंद्र हर जिले में
2: जी।
4: तो ये ऑलमोस्ट जैसे इन्होंने कहा हर गांव में एक केंद्र है ही, हर ग्राम पंचायत में डेफिनेटली एक केंद्र है और वहां पे सारी उन लोगों को जानकारी होती है फसल बीमा के बारे में। तो हमारे किसान भाई वहां जाके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से जाके एनरोलमेंट भी कर सकते हैं,
2: दोनों चीजें
4: हो सकती है, जिसमें कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते हैं उनसे। तो वो एक सप्लीमेंट्री मैनपावर की तरह से भी यूज होता है, कई लोग करते हैं कि जो भी आपको जानकारी चाहिए फसल बीमा कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है तो उसके स्टेटस के बारे में, अगर कोई रिफंड या रिजेक्टेड पॉलिसी है उसके स्टेटस के बारे में, ये सारी चीजें हमारे केंद्र से पता की जा सकती है
2: जी। और कृष्णवीर जी, अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, किसानों की एक समस्या हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो कोई अगर क्षति होती है या कोई आपदा आती है तो राज्य की तरफ से भी वो आपदा राहत राशि होती है और वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अगर वो किसान लाभ ले रहा है, अगर उसने बीमा भी करवाया उस फसल का, तो यहां पर किसान कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमें तो ये नहीं पता चलता कि हमें पैसा कौन सा मिल रहा है, दोनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये आप अब जब किसानों से बात करते हैं तो किस तरह की शिकायत रहती है उनकी तरफ से?
3: देखिए, प्रदेश सरकारों का जो आपदा में पूरा प्रबंधन करती है सरकार और जो पैसा किसानों को देती है वो राशि जो है वो कम होती है और वो कम राशि इसलिए होती है क्योंकि तत्काल किसानों को एक मदद है आर्थिक रूप से, जो तुरंत मदद की आवश्यकता है किसान को, तो प्रदेश सरकारें सिर्फ तुरंत सहायता के लिए मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल बीमा कराया गया है और जिस कंपनी ने किया है, जितना नुकसान किसान का हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए और वो समय पे भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी तक शिकायत ये थी कि समय पर उसको पैसा जो नुकसान है वो उसको मिल जाए। किसान ये चाहता है कि जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान है वो हर किसान को समय पर मिल जाए और जिस दिन कंपनियां देना शुरू करेंगी तो एक किसान जो है 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं बल्कि 13 करोड़ किसान इस योजना को स्वीकार करें।
2: सुनील जी, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे?
0: देखिए, ये चुनौतियां सरकार के पास रही है और अभी बहुत हम लोग सफल हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते कि पूरे हम लोग जितना लक्ष्य रखे हैं उसमें सफल हो पाए हैं, लेकिन पहले देखिए, पहले इसमें धीरे धीरे कड़ी हम लोग हटा रहे हैं कि क्यों देरी होती थी। पहले चीजें थी कि डेटा जो आता था बहुत देर से आता था, उसको डेटा को कैलकुलेट करने में कि कितना क्षति होगी उसमें दिक्कत होती, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का समावेश किए कि ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उनको क्षति का आकलन कर पाए। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डेटा आता था बड़ा फिजिकली आता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होता था, उस सारे चीज ठीक हुए। दूसरा मेन चीज था कि पहले हम लोग सीधे बैंक को देते थे और बैंक जो है सीधे जो इंश्योर्ड फार्मर होते थे उनके खाते में ट्रांसफर करते थे। अब हम लोग सीधे इंश्योर्ड फार्मर्स के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां थी उसको हम लोग ने दूर कर दिया है। अब केवल चुनौती केवल इतना ही बच गया है कि कहीं कहीं जो है राज्य सरकार जो है प्रीमियम नहीं दे पाती है समय से, इसके कारण भुगतान डिले होता है। लेकिन हम लोग जो है ऐसे बहुत कम परसेंटेज है जो अब ऐसे बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग जो तत्काल 2 महीने का हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2 महीने के अंदर जो मौसम फसल कटाई प्रयोग खत्म होते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर भुगतान करना होता है, इसके लिए मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, प्लस अगर भुगतान नहीं किए तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और उन पर 12% का ब्याज दर निर्धारित करके हम लोग भुगतान भी करवाते हैं। तो ये सारे चीजें आई है, तो जिसके कारण से जो है सबको दायित्व दिया गया है, दायित्व के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक समय दिया गया है, उस समय में करें और टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया ताकि ट्रांसपेरेंट वे में मॉनिटरिंग हर एक स्टेक होल्डर हर एक आदमी कर पाए, वो अपने मोबाइल के माध्यम से है। लेकिन अगले सीजन से हम लोग जो है सीधे सीधे भारत सरकार ही पैसा ट्रांसफर करेगी, ऐसी व्यवस्था कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। जिससे 2-3 फायदे हैं कि हम लोग को पूरे राज्य सरकार और पूरे उनके प्रतिनिधि साहब को पता होगा कि कब पैसा ट्रांसफर हुआ और किसान को ट्रैक कर पाएंगे पूरे एक्टिविटीज को। तो ये अगले सीजन से हम लोग ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग चालू करने वाले हैं, तो ताकि अब हम लोग एकदम रूट कॉज में पता कर पाए।
5: किसान साथियों, अभी हमने सुना किस तरीके से पहले जितनी समस्या आती थी हमें हमारे बीमा काम करने में, किस तरह कौन सा पैसा आया कौन सा नहीं आया, इन सारी समस्याओं को जितना हो सके जो लंबी प्रोसेस थी उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसमें पारदर्शिता लाई जा रही है। चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते और सुनते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
0: कि किसान भाई को सर रहता है कि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ, मेरा जो आकलन हुआ ठीक नहीं हुआ, वहाँ प्रतिनिधि पूरे अगर डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में आके और सारे चीज रिकॉर्डेड रहेगा और हम लोग उस चीज को बाद में भी ऑडिट कर सकते हैं, उसमें ग्रीवांसेस बनेगी तो हम लोग तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन ले सकते हैं, ये सारे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। योजना का पर्पस ही है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में पूरे हम फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लाएं कि हम आपको पूर्ण सुरक्षा दे रहे हैं।
1: मैडम, एक और मैं इस कड़ी में और एक बात बोलना चाहूंगा कि किसानों को कैसे जल्दी से जल्दी इस बीमा योजना का लाभ मिले, जैसे समय अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि देर हो रहा है, उससे देर होने का मुख्य कारण एक तो सब्सिडी है, दूसरा है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आता है हमारे पास, तो इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट शुरू किया है। इस बार प्रपोजल है जिसमें कि सारा रिमोट सेंसिंग से लॉस एस्टिमेशन होगा ताकि वो तुरंत डेटा आ जाए और उस तरह से
2: तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिसका जिक्र सुनील जी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि किसानों की तरफ से एक ये भी सवाल रहते हैं या फिर आशंका रहती है कि जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितना सही हुआ है, किस आधार पर हुआ है, तो उसे और पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स भी पढ़ रही थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए, तो उनमें से एक पॉइंट था कि उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा और जो बीमित राशि है जो मूल्य है उसे कम नहीं किया जाएगा। तो ये किस तरह से ये इसका गणित क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है?
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
7: अंकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है, नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? पीएमएफबीवाई योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था, लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।
2: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मूल्य की बात कर रहे हैं कि जो उपज है उसकी जो बीमित राशि है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मानक क्या है, क्या है इसके पीछे का पूरा गणित, तो मुझे लगता है सुनील जी आप इसे बेहतर समझा पाएंगे।
0: देखिए इसमें सरकार की हम मंशा रही है कि हम पूरे जितने क्षति हो उसको हम पूर्ण भरपाई करें, समानुपातिक जितनी क्षति हुई उसको करें। अगर 100% लॉस हुआ तो 100% देंगे, 50% लॉस हुआ तो 50% देंगे। इसकी कैलकुलेशन जो है दो तरह के हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं कि या तो आप जो है स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिसके आधार पर आपको बैंक ऋण मुहैया कराते हैं उसी के आधार पर वो भी स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। वो स्केल ऑफ फाइनेंस भी बहुत साइंटिफिक तरीके से निर्धारित किया जाता है कि C2 जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है उसके आधार पर हर एक जिले में जो आप वैरायटी लगाते हैं, जो आप इनपुट यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं उसके आधार पर जो है स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित होता है इस, और उसी को हम लोग सम इंश्योर्ड के रूप में अडॉप्ट करते हैं। दूसरा एक राज्य सरकार को और दिया गया है कि आप उसको कुछ क्रॉप्स का कि बहुत दिनों से नहीं अपग्रेड हुआ होगा स्केल ऑफ फाइनेंस या उसमें लगता होगा कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक च्वाइस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि पिछले जो आपका 7 साल का उपज है उसको एवरेज यील्ड लीजिए और आज का जो पिछले साल MSP घोषणा की गई है या इस साल जब आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसके पहले हमें MSP की घोषणा हो गई है तो उस MSP से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू बनेगा पर हेक्टेयर वो सम इंश्योर्ड होगा, यील्ड आपको आ गया पर हेक्टेयर और MSP के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम लोग उनको सम इंश्योर्ड।
2: ठीक है सुधाकर जी, तो ये सब कैलकुलेशन किस स्तर पर होते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं जो गाइडलाइंस मिली है सरकार की तरफ से उसके आधार पर?
1: नहीं, ये सारा अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार तय करती है, जब जैसा आपको पता होगा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कंपनियां सबसे कम प्रीमियम रेट देती हैं उसी को वो डिस्ट्रिक्ट में बीमा करने का अधिकार मिलता है। तो जब टेंडर का डॉक्यूमेंट जारी होता है उसी समय राज्य सरकार कहती है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या सम इंश्योर्ड होगा। जैसा भी सुनील जी ने बताया कि सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, राज्य सरकार के अधीन है कि वो किस तरीके को अपना करके सम इंश्योर्ड तय करती है, तो पहले ही डॉक्यूमेंट हो जाता है कि ये सम इंश्योर्ड इस बार इस क्रॉप में रहेगा। और इंडेमनिटी लेवल दूसरा होता है कि जो क्षतिपूर्ति का स्तर क्या होगा वो भी पहले ही तय हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो 70% हो, 80% हो या 90% हो। जो क्रॉप अधिक रिस्क की है उसको 70% पर राज्य सरकार रखती है और जो हमेशा अच्छा उपज देने वाली है उसको 90% तक रखती है। तो ये सारा राज्य सरकार करती है, बीमा कंपनियों का इसमें रोल नहीं है।
2: जी कृष्णवीर जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो C2 की बात की जा रही है, स्केल ऑफ फाइनेंस की बात की जा रही है, इसे कितना समझते हैं किसान?
3: देखिए, जो क्रॉप कटिंग का जो प्रोडक्टिविटी का पिछला 7 साल का रिकॉर्ड देखते हैं और उसमें उतार चढ़ाव बराबर आता रहता है और जो पिछला MSP है उससे कैलकुलेट करके जो सरकार योजना बना रही है, ये इस पर काम चल रहा है अभी, इस पर काम चल रहा है। ये किसानों के हित में होगा कि जो जिला स्तर की यील्ड होगी, जो लेवल होगा प्रोडक्टिविटी का, और उसको एमएसपी से कैलकुलेट करके जो टोटल फसल का दाम होगा उससे किसान को जो है कंपेंसेट जो है नुकसान होने पर जो है वो दिया जाएगा। ये किसान के हित में जरूरी है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से जो पहले जिला और गांव लेवल पर दिक्कतें थी उसका समाधान करने का प्रयास सरकार ने किया है। खास तौर से जो असेसमेंट का सुधार किया है टेक्नोलॉजी का, वो समय की आवश्यकता थी और उसको सरकार ने लागू किया है। अब सिर्फ स्थिति यहां आके रुकी हुई है कि केंद्र सरकार जिस दिन जो है सीधे किसानों को नुकसान का पैसा उनके खाते में देना शुरू करवा देंगे, जैसा कि सरकार का बिल्कुल मंशा है कि हम किसानों के नुकसान का पैसा केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में दे, ना कि बैंक को बीच में रखे या पोस्ट ऑफिस को रखे या कंपनियों को अभी तक जो रखा गया, क्योंकि उसी से किसान जो है अभी तक जो समस्याएं हैं उसी लेवल पर हैं। वो समस्या का समाधान जिस दिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सिंगल क्लिक पर जो है 13 करोड़ किसानों को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरीके सारी योजना है। तो ये भी योजना जिस दिन केंद्र सरकार अपने तरफ से सीधे किसानों खाते में देना शुरू कर देगी उस दिन उस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रदेश सरकारें जो अपना पैसा भागीदारी का है वो समय पर दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये तो
2: जवाबदेही भी यहाँ पर तय हो जाएगी,
3: तो किसान के हित में किया।
2: जी बिल्कुल विभास जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों का किस तरह का रुख आप देख रहे हैं, जो इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं इसे और सशक्त बनाया जा रहा है?
4: देखिए, मैं तो सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ, हमारे यहाँ एनरोलमेंट बढ़े हैं, हर सीजन में लगातार एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं और ज्यादा ज्यादा लोग आके जुड़ रहे हैं इस स्कीम के साथ थ्रू द सीएससी नेटवर्क। तो हमको तो लग रहा है कि ये स्कीम
2: काफी
4: लोकप्रिय हो रही है।
5: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटा भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
5: जानकारियों को बढ़ाते हुए ये सुनते हैं कैसे आसानी से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
0: देखिए, मैं किसान भाई बंधु को मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक आप खेती करते हैं, खेती में जोखिम बहुत है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आप एक भविष्य के लिए एक निश्चित आय आप सोचते हैं कि हमको ये आएगी और उसके लिए वर्तमान में आय से आप फ्यूचर की क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। अगर किसी न किसी कारण से ऐसा कभी ना हो, हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आपके जो है फसल नुकसान हो जाए और जो आप आय के लिए जो आशा किए थे वो आय में बाधा हो, इस चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। आप इसका लाभ लें, बहुत सिंपल है, आपको केवल 2% प्रीमियम देना पड़ता है खरीफ फसलों के लिए, रबी में 1.5% प्रीमियम है अधिकतम, बाकी बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है, जो कम ही है, और वो जो है वो बाकी शेष राज्य सरकार केंद्र सरकार वहन करती है। आप योजना में देखें, अपने योजना के बारे में जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप कृषि विभाग से ले सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, आला प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बीमा कंपनी के जितने कार्यालय वहां तक हम लोग लगाए, इसके अलावा होर्डिंग हम लोग वैन वगैरह चलवा रहे हैं कि हर एक गाँव में पहुंचे, आपको जानकारी दे, पंपलेट बांटे ताकि आपके पास रहे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके पास जब आए तो सारी चीजें मिले। ये सारे चीजें हमको जानकारी
2: यानी एक्सटेंशन वर्क जो है वो भी
0: आप जो है बहुत सिंपल है, हर एक जगह इसकी उपलब्धता है। आप बैंक के माध्यम से करा सकते हैं, सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल पर जाके कर सकते हैं। ये कहीं भी डोर स्टेप पर हम लोग कोशिश किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए बहुत सरल तरीका है, केवल आपको 3 कागजात देने हैं, कागजात भी नहीं कहिए, कागजात के रूप में केवल आपको केवल अगर आप भूमि स्वामी हैं तो रसीद देने पड़ेंगे उनके, अगर आप पट्टे पर लिए हैं तो उनके आपके लिए घोषणा देना पड़ेगा, एक राज्य सरकार ने निर्धारित किया गया है। आपको क्रॉप के बारे में स्व घोषणा करना है कि हम ये क्रॉप के लिए बीमा करा रहे हैं। हाँ, ध्यान दें कि जिसका बीमा कराएं वही फसल लगाएं, अगर फसल बदलते हैं तो आप बीमा कंपनी में जाकर

0: बदलवा दें ताकि आपको भविष्य में कठिनाई ना हो। बैंक का हम लोग दस्तावेज लेते हैं, दस्तावेज इसलिए लेते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हमको भुगतान करना होता है बीमा कंपनियों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ताकि हम आपके डिटेल हो पहले कैप्चर करके रखें और दें। हाँ, ये योजना जो है इसमें हम लोग नई दो चीज और जोड़े हैं, आधार, आधार कंपलसरी है ताकि जो है किसी तरह का योजना का मतलब सही लोगों को सही जगह पहुंच पाए, और लैंड रिकॉर्ड की इंटीग्रेशन किए हैं ताकि जो है जिस लैंड में है उसी लैंड का आपका बीमा हो और पूरा डिटेल हमारे पास हो और किसी तरह के जल्दी से जल्दी
1: किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के
0: ट्रांसपेरेंट वे करें।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: किसान साथियों, आपने फसल बीमा योजना से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, कृषि भूमि का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। बदलते इस पर्यावरण के समय में हमें वातावरण के अनुकूल खेती करने की आवश्यकता है। किसान साथियों, आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि किस तरह दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, साथ ही हमारी कृषि भूमि में भी जो बदलाव देखे जा रहे हैं उनको देखते हुए किसान साथियों, हमें बहुत जरूरी है यहाँ पर हमारे खेतों में, हमारे पर्यावरण में एक बदलाव की जरूरत। जी हाँ किसान साथियों, हमें यहाँ पर हमारी मृदा परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है। हमें तभी पता चल पाएगा कि हमारी जो मृदा है वो अभी कितनी स्वस्थ है। हमारी मृदा परीक्षण के साथ ही हमें हमारी भूमि में उर्वरक और पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। तो किसान साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल मैडम, ये एक्चुअली किसान भाइयों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारा स्वास्थ्य होता है ऐसे मिट्टियों का भी स्वास्थ्य होता है। और उनको देखो, हम लोग अपना बोली भाषा में हम बता सकते हैं कि आज हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मिट्टियां हैं जो अपनी वो बता नहीं सकती। लेकिन जो उसमें हमारे किसान भाई दिन प्रतिदिन जो भी हमारी खेती की जो गतिविधियां करते हैं उनसे उनको थोड़ा सा पता लगता है कि हमारी मिट्टियां पहले अच्छी काम कर रही थी, अच्छा उपज हो रही थी, अच्छी फसल हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे यदि आपकी फसलों की बढ़वार में कुछ कमी आती है या उनमें विशेष प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो इससे किसान भाई को ये पता लगता है कि कहीं कहीं उनकी मिट्टियों में कुछ प्रॉब्लम आने लगी है। अब ये इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि मिट्टियां बोल नहीं सकती, तो हमको उनका परीक्षण करके जितने भी हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं जिनको हमारे पौधों की बढ़वार के लिए, उनकी गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं, उनकी हमारे जितने भी हमारे जो सरकारें हैं इन्होंने हर जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं की हैं उनमें इनका परीक्षण कराना चाहिए, जिससे मिट्टियों में उनकी क्या स्थिति है, मतलब वो कितने किस लेवल तक पैदावार दे सकती है कि नहीं दे सकती, क्योंकि ये उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और उसमें कोई तरह का विकार यदि उत्पन्न हो गया है उस पर आधारित है। तो हमारे को जैसे मिट्टी परीक्षण इसलिए बहुत जरूरी है, किसान भाइयों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह का हम अभी जो बहुत हाई उपज वाली जो किस्मों का यूज कर रहे हैं, फसलों का यूज कर रहे हैं, और फिर दूसरी बात अभी गुणवत्ता की जो बात आ रही है, तो ये सब चीज हमारी मिट्टियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है और मिट्टियों का स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ मृदा परीक्षण के द्वारा ही जांच किया जा सकता है।
0: बिल्कुल जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, मिट्टी कुछ नहीं कहती। जी हाँ किसान साथियों, मिट्टी को पहचानना बहुत जरूरी है। आप और हम में से काफी किसान भाई हैं जो मिट्टी को पहचान सकते हैं, मिट्टी को किस चीज की आवश्यकता है, समय समय पर मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी होती है, इस बात से हमारा किसान भली भांति वाकिफ है। परंतु फिर भी हमें यहाँ पर एक बार पुनः हमारी मृदा का परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, जैसा कि आप और हम जानते हैं, हम वातावरण के अनुकूल खेती करते हैं और एक वर्ष में अनुमानित 4-5 फसलों की उपज हम लेते हैं। तो किसान साथियों, उपज के अनुसार, हमारी फसल के अनुसार हम हमारे खेतों में अलग अलग कीटनाशकों का, अलग अलग खरपतवार नाशकों का और खादों का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, हम जिन अलग अलग फसलों को तो हमारे खेतों में लगा लेते हैं, लेकिन हमारा जो खेत है, हमारी कृषि भूमि है, वो नहीं बदलती है, वह एक ही होती है। वहाँ पर फसलें हम बदला करते हैं और हम हमारी कृषि भूमि को ना देखते हुए सिर्फ हमारी फसलों को देखकर उनमें कीटनाशकों का, खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, हमारी कृषि भूमि हमारी फसलों को ही नहीं, हमारी फसलों से जो कीटनाशक, जो रसायन हमारी मृदा के साथ जाके मिलते हैं, क्या हमारी मृदा उसे पचाने में सक्षम है या नहीं है, इन सभी बिंदुओं पर डालेंगे एक नजर। उससे पहले आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: खेती किसानी सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है। अगर खेत की मिट्टी सेहतमंद होगी तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी। अच्छी पैदावार के लिए खेत की मिट्टी में मौजूद तत्वों की मात्रा और मिट्टी की सेहत जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण जरूरी है। बता दें कि पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। ये निचली पथरीली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता भी होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। सरकार भी बीमार मिट्टी की सेहत सुधारने पर खास ध्यान दे रही है, जिसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। मिट्टी की जांच के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है, इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है और कौन कौन सा उर्वरक अपने खेत में डालना चाहिए। इसी तरह मिट्टी का प्रबंधन करके भी आप अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके लिए खेतों में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करने का असर फसलों की गुणवत्ता और पैदावार पर पड़ता है।
0: किसान साथियों, अभी आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, अभी आइए डालते हैं एक नज़र प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के ऊपर।
2: प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती जमीन के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होती है। लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती वरदान है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं। इसके अलावा अक्सर मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। बता दें कि किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदे का सौदा है।
1: बिल्कुल मैडम, जैसे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो किसान भाइयों के साथ आज तक, मतलब इसमें जो गलती करते हैं वो नमूना लेने में करते हैं। अब जैसे हमें किसान भाइयों को ये बताना है कि जैसे आपकी दो तरह की फसल होती है, एक होती है सीजनल जो एक सीजन में खत्म हो जाती है, दूसरी पेरिनियल होती है जो वर्षों तक चलती है। तो इन दोनों का जो सैंपल लेने का तरीका है वो उसकी मिट्टी की गहराई पे अलग अलग होता है। जैसे आप पहले जो भी अपना एरिया है उसको पहले आप तीन चीजें आपकी देखनी होगा, एक मिट्टी का कलर, एक मिट्टी का स्लोप और एक उसका कणाकार। यदि ये तीनों में उसमें समानता है तो किसान भाई एक हेक्टर तक एक सैंपल ले सकते हैं उसमें कोई, और जो सैंपल जब लेना है तो किसान भाई अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो खेत के चारों कॉर्नर से लेंगे और एक मिडिल से लेंगे, तो ये एकदम गलत तरीका है। उनको क्या करना चाहिए, बॉर्डर से दो दो मीटर जगह छोड़ें और जो भी अपना ट्यूबवेल है या अपना कोई बीच में पेड़ है या कोई कंपोस्ट पिट है या कोई बिल्डिंग है, इन जगहों से भी वो अपना दो दो मीटर जगह छोड़ने के बाद ही सैंपल एकत्रित करें। सैंपल की जो गहराई है उसकी जो हम बात कर रहे थे, सीजनल में हम 0 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, मतलब 6 इंच। और जो हमारी बागवानी फसलें हैं या जो मेडिसिनल प्लांट वगैरह जो पेरिनियल चलने वाली क्रॉप हैं, इनका प्रोफाइल सैंपल लेना होता है जिसमें 1 मीटर तक के गड्ढे बनाए जाते हैं। वो 1 मीटर के गड्ढे के फिर 3 भाग बनाए जाते हैं, जो एक 0 से 30 सेंटीमीटर का, 30 से 60 और 60 से 90 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो आपने 4 गड्ढे बनाए या 5 गड्ढे बनाए, तो ऊपर की मिट्टी का जो है 0 से 30 वाला वो एक जगह एकत्रित कर लेना है, मिडिल वाला जो है उसको एक जगह लेना है और बॉटम वाले को एक जगह। तो ऐसे करके जब भी हम बाग वगैरह बागवानी फसलों और ये पेरेनियल जो भी है हमारी जो कई वर्षों तक चलती हैं, ऐसी फसलों का जब सैंपल लेते हैं तो हमारा 3 नमूना बनता है, और जो हमारे जो सीजनल फसलें हैं उनमें 1 नमूना बनता है। फिर इसके साथ आता है कि किसान को भाई थोड़ा सा उसकी बैक हिस्ट्री, मतलब उसका जो अब तक किसान भाई ने क्या क्या खाद डाले, क्या क्या उर्वरक डाले, कौन कौन सी फसल ली, अच्छा पानी का जो है सिंचाई की उपलब्धता है या नहीं है, उपलब्धता है तो उसका क्या सोर्स है, उसमें कोई जैसे पानी का जो क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता है वो भी थोड़ा उसको, मतलब आजकल लैब में सब जगह इसकी भी टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है, उसका भी टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टियों में बहुत सारे ऐसे विकार हैं जैसे लवणीयता है या क्षारीयता है, वो सिंचाई जल के द्वारा ही आती है।
0: ठीक है,
1: तो इन चीजों को जब हम सैंपल एक बार ले लिए, और सैंपल में देखो कई बार किसान भाई या तो बहुत कम मिट्टी लेके लैब पहुंचता है या बहुत अधिक लाता है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जितनी जगह से 15 से 16 जगह से लेने के बाद उसको इकट्ठा करके उसमें से 300 से 500 ग्राम ही मिट्टी लैब लेके जाना चाहिए।
0: अच्छा, बिल्कुल। आइए अब आगे किसान साथियों, जैसे कि हम चर्चा में बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारी कृषि भूमि में जो पानी हम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं वह पानी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आइए जानते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
1: मैडम, जैसा आप जानते हैं कि हमारे जैसे पूरे भारत देश की हम बात करें तो हर एरिया

0: जो हमारा जो पानी का जो सोर्स है, कई जगह नहरें हैं, कई जगह तालाब हैं, और ज्यादातर हमारा है जो भूमिगत जल पे हम आधारित हैं। और भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो हर एरिया स्पेसिफिक होती है। अभी जैसे आपका अपना शुष्क एरिया लें, जहाँ पे बहुत कम वर्षा वगैरह होता है, उस एरिया में अधिकतर जो हमारा जो भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो या तो लवणीय है या क्षारीयता है। ये क्या होता है, जब किसान भाई इसको जब सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं तो पानी की जितनी मात्रा आप अधिक यूज करोगे उसके साथ साथ उतना ही साल्ट की मात्रा हमारी मिट्टियों में मिक्स होती जाती है। इससे क्या होता है, पानी तो या तो फसल के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है या वो वातावरण में वापस के रूप में चला जाता है, लेकिन वो साल्ट है जो जो भी उसमें लवण है वो मिट्टियों में ही रह जाते हैं। और ये लगातार जैसे आप कंटिन्यूस यदि पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसमें उसकी ईसी मात्रा ज्यादा है या पीएच ज्यादा है या उसमें रेसिड्यूअल सोडियम कार्बोनेट, ऐसे उसके कुछ गुणवत्ता के जो उसके कारक हैं, पैरामीटर हैं, उनके आधार पे उसकी गुणवत्ता जो आकी जाती है, यदि गुणवत्ता ठीक नहीं है तो जो आज की अभी मिट्टियां आपकी अच्छी है किसान भाइयों की, और ऐसा पानी को जाने या जाने में यदि उपयोग करेंगे तो आने वाले 5-6 साल में उनकी मिट्टियों का लवणीयता और क्षारीयता का मान बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरा बहुत ही मेजर कारण है जिसके कारण हमारे मिट्टियों का स्वास्थ्य वो हो रहा है। तो मिट्टियों के साथ साथ हमें जल का भी जो गुणवत्ता है उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर मीना, जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के पास होता है उसमें मिट्टी से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां किसानों को मिलती है, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनकी जानकारी होती है उसमें?
0: बिल्कुल, जब भी किसान भाइयों को जो सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है उसमें मिट्टियों के जैसे जो नमूने लिए गए हैं उसके आधार पर उसमें जैविक कार्बन की मात्रा, उसमें उसका जैसे पीएच मान क्या है और विद्युत चालकता क्या है, जो हम लवणीयता की बात कर रहे हैं अभी, क्षारीय लवणीयता, इसके मानक भी उसमें होते हैं। इसके साथ साथ जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं, जो हमारे जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, इन ये सभी जितने भी हमारे जो हमारे क्रॉप के लिए बहुत आवश्यक है और हमारी जो भारतीय मृदाओं में इनकी कमी देखी गई है, इनको उसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके आधार पे जब आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखेंगे तो किसान भाइयों का क्या टेस्ट वैल्यू के साथ साथ एक रेफरेंस वैल्यू दी होती है, उससे किसान भाई ये अपना पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मिट्टी का कौन सा जो कारक है, कौन सा पैरामीटर है, वो पर्याप्त है या उससे कम है या ज्यादा है। तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, जैसे हमारा पीएच और हमारी जो ईसी है, विद्युत चालकता का मान है, इसके आधार पर उनको अपनी मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता का पता लगता है। यदि क्षारीय मृदाएं हैं तो उनमें जैसे हमारे जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। दूसरा हमारा जिप्सम, जो आसानी से अपने यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है किसी भी उर्वरक डीलर के यहाँ पे, तो उनका उपयोग करें। दूसरा है लवणीयता, यदि उसमें मिट्टियों में लवणीयता हो गई तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है आपका सिंचाई जल का। सिंचाई जल को सबसे पहले आके, यदि उसमें आपकी लवणीयता की मात्रा अधिक है तो सबसे पहले उस जल को रोके, उससे कभी भी सिंचाई नहीं करें। और कोशिश करें कि जैसे अभी आज के दिनों में देखो बरसात हो रही है तो वर्षा का पानी इकट्ठा करें, और जो भूमिगत पानी में देखा वो टेस्ट के बाद पता लगता है कि उसकी किस लेवल की लवणीयता है। यदि कुछ आधारित पर हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो दोनों पानियों को मिक्स करके हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वो है। और ये जो टोटल हमारे 12 पैरामीटर होते हैं जो उसमें स्वास्थ्य।
2: किसान साथियों, जैसे कि अभी आपने डॉक्टर साहब से सुना, हमें पानी की जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पानी के अंदर अम्लता और क्षारीयता होती है जो कि हम खेतों में डालते तो हैं लेकिन वहां पर पानी जो होता है वाष्पकृत होकर उड़ जाता है, या आधा कुछ पानी हमारी फसल उसको सोखती है, कुछ मिट्टी सोखती है, लेकिन जो पानी के अंदर की जो अम्लता और क्षारीयता है वह हमारी भूमि में ही रह जाता है। तो इस तरीके से हमें हमारी कृषि भूमि में नुकसान देखना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भेली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન. આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં. એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, हम चर्चा कर रहे थे हमारे खेतों में जो पानी हम डालते हैं, जो सिंचाई के लिए पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका परीक्षण करवाना, क्योंकि जो पानी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अम्लता और क्षारीयता की मात्रा होने से यह हमारी मृदा में कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता है। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: बिल्कुल, देखो जैसे हमने बताया कि टेस्ट के साथ साथ उसमें उसकी संस्तुतियां भी दिया होता है
2: जी।
1: और हर सॉयल हेल्थ कार्ड में ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी वो किसान भाई जिस एरिया का है उसमें वहां पे जो भी तीन क्रॉपिंग सिस्टम वहां के इम्पोर्टेंट हैं उनकी संस्तुतियां, उर्वरकों की संस्तुतियां उसमें दी होती है।
2: अच्छा।
1: तो इससे ये किसान भाई सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि हम जो उर्वरक जो अनदेखी से किसान भाई, जैसे एक कंपटीशन है किसानों के बीच में कि भाई एक बैग डाला वो कहता है दो बैग डाला, इसको हम कम कर सकते हैं और हम मतलब जो हमारी लागत आ रही है किसान भाइयों की उर्वरक के ऊपर, इसको हम बहुत हद तक हम इसका सेव कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है ना, जो आपने जैसे अभी बताया कि अधिक से अधिक जो उर्वरक हम यूज कर रहे हैं तो उससे मिट्टियों के साथ साथ हमारा वातावरण पे भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा, देखो एक तो किसान का अपना इनपुट कॉस्ट जो उसका मतलब फर्टिलाइजर पे जितना पैसा खर्च कर रहा है, यदि जैसे बहुत सारी अभी की जो विश्लेषण हुआ है जितना भी नमूना उसमें ये पाया गया कि हमारा जैसे फास्फोरस की मिट्टियों में बहुत ज्यादा अधिकता हो गई है, तो किसान भाई अपना जो फास्फोरस के उर्वरक हैं जो जैसे आपका डीएपी है, आपका एसएसपी है, तो इनकी मात्रा में जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड में लैब ने दिखाया है कि भाई आपको कितना यूज करना है तो उतना ही यूज करें। अननेसेसरी आप जितना ज्यादा यूज करोगे उसका कोई बेनिफिट इकोनॉमिकली मतलब उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, साथ के साथ आप वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो एक तो सॉयल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान भाई अपनी जो कॉस्ट जितना लगाते हैं फर्टिलाइजर पे उसको बचा सकते हैं। दूसरा हमारे वातावरण का है कि जिससे हम कम से कम फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा, और एक हमारी मिट्टियों का जो स्वास्थ्य है, जो लगातार हम जैसे कि हम जितना डेफिशिएंसी होती है, जैसे मान लो आपकी मिट्टियों में चार पोषक तत्वों की आवश्यकता है लेकिन आप दो ही डालते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है जो दूसरे और पोषक तत्वों का भी जो उसमें से निकास हो रहा है वो बहुत अधिक हो रहा है, धीरे धीरे वो मिट्टियां कमजोर होती जा रही है।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांडा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आवश्यकता की मांग को पूरा करने के लिए हमने हमारे खेतों में अंधाधुंध रसायनों प्रयोगों से अभी खाद्यान्न फसलों की मात्रा तो हमने बढ़ाई है, परंतु रसायनों के इसके अंधाधुंध प्रयोग से अभी हमारी मिट्टी न केवल ठोस बल्कि अनउपजाऊ होते जा रही है। तो किसान साथियों, आइए जानते हैं और चर्चा करेंगे कैसे हम इससे बचा जा सकता है और हमें अभी प्राकृतिक खेती को कैसे करना चाहिए। तो आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: प्राकृतिक खेती, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों या यूं कह लीजिए कुदरती सामग्री पर आधारित है। ये खेती का ऐसा तरीका है जो मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करता है, उसे कुदरती तौर पर उपजाऊ बनाता है और फसलों को जलवायु परिवर्तन की मार का सामना करने के काबिल बनाता है। इस तरीके में लागत कम लगती है, पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। सिर्फ एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन के लिए खाद तैयार हो जाती है। इस तरह प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से देसी गाय पर आधारित है और जमीन को सेहतमंद बनाने के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि पौधे अपना सारा पोषण मिट्टी से ही लेते हैं। मिट्टी जितनी ताकतवर होगी, उपज भी उतनी ही ज्यादा और क्वालिटी वाली होगी। दरअसल रसायनों ने न सिर्फ मिट्टी को कमजोर किया है बल्कि फसलों को भी जहरीला बना दिया है। कई बार मानक से ज्यादा कीटनाशक पाए जाने पर विदेशी खरीदार हमारी फसल को खरीदने से मना कर देते हैं। इसका कहीं न कहीं नुकसान कृषि क्षेत्र को उठाना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ये रसायन सिंचाई के पानी के साथ भूमिगत जल में जा मिलते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। यही वजह है कि आज प्राकृतिक खेती समय की मांग है और जरूरत भी।
2: प्राकृतिक खेती, जैसा कि हम जानते थे कि हमारे पूर्वज करते थे, और उसमें जो है जो नेचर से मिला, जिस पद्धति को, उसके सारे अंग होते थे उसमें। जैसा कि मैं कहूं तो उसमें फसल भी है, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, औषधीय वर्ग पौधे हैं इत्यादि, ये सारी चीजें एक साथ होती थी, एक समन्वय बनाता था और उन्हीं में एक दूसरे के वो पूरक होते थे। मिट्टी है तो मिट्टी में उसमें केचुए है, केचुआ के साथ साथ उसमें कई सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे पौधों को जो है, जो उनकी उर्वरता चाहिए, उनको पोषक तत्व चाहिए, उनकी उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो पत्तियां गिर रही हैं वो नेचुरल मल्च का काम कर रही है, जिससे कि आप जो है उसमें जो नमी बनी रहती है उसको लंबे समय तक बनाए रहती है। और उसमें मिनिमम जो मैं कहूँ, जितना कम से कम सस्य क्रियाएं करें, तो वहां प्राकृतिक खेती बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है।
1: मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो फसलों की अच्छी बढ़वार और ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है। इनमें से अगर एक तत्व की भी कमी हो जाए तो बाकी 15 तत्वों का भी बहुत ज्यादा फायदा फसल को नहीं मिल पाता। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं। गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक कृषि के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती और इसमें सिंचाई भी पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने की वजह से जड़ों की लंबाई बढ़ जाती है और तनों की मोटाई के साथ साथ पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है।
2: इनमें जो उत्पाद जो पैदा होता है, शुरुआती दौर में तो मैं कहूंगा कि कुछ गिरावट देखी जाती है, लेकिन बाद के वर्ष में जब वहां जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, तब उत्पादन करीब 15-20-25% तक देखा गया है। इसमें अच्छी बढ़वार मिलती है, उत्पादकता अच्छी मिलती है।
1: प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों की सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसके अलावा खेती की इस विधि में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार भी ज्यादा देते हैं। भारत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत डॉक्टर सुभाष पालेकर ने की, इसलिए इन्हें इस तकनीक का जनक कहा जाता है। इन्होंने नागपुर में कृषि की स्नातक डिग्री हासिल की और कमाल की बात तो ये है कि इनकी पूरी पढ़ाई रासायनिक तरीकों पर ही आधारित थी। लेकिन फिर इनके जीवन में कुछ ऐसे वाकये हुए कि इनकी जिंदगी का पूरा रुख ही बदल गया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने खेती की एक ऐसी तकनीक इजाद की जो रसायन रहित है और इसका नाम दिया सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1972 में सुभाष पालेकर ने अपने फार्म पर रासायनिक खेती पर ही काम शुरू किया। बरसों तक वो इसी तरह काम करते रहे। प्राकृतिक खेती का विचार वेदों और उपनिषदों से मिला। इन धार्मिक ग्रंथों में मौजूद कुछ सूत्र इन्हें प्राकृतिक खेती की ओर ले गए। इसके बाद इन्होंने वैज्ञानिक शोध शुरू किए। दूसरी ओर वो महात्मा गांधी के अहिंसा वाले सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यही वजह है कि वो खेती के ऐसे तरीके तलाशने लगे जिनसे मिट्टी में मौजूद जीवों की रक्षा हो सके। ऐसा तभी मुमकिन था जब खेत जहरीले रसायनों से मुक्त हों और मिट्टी की सेहत मजबूत हो। डॉक्टर पालेकर ने खेती करते समय ये भी पाया कि 1972 से 1985 तक तो रासायनिक खेती में पैदावार बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद घटनी शुरू हो गई। दूसरी ओर आदिवासियों के साथ काम करते हुए सुभाष पालेकर को पता चला कि जंगलों में पौधों के विकास के लिए किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बढ़वार के लिए जरूरी सभी साधन प्रकृति से ही हासिल हो जाते हैं।
3: हमारे विदर्भ के जो आदिवासी क्षेत्र है सातपुड़ा पहाड़ी, उसमें मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था कि जंगल के पर्यावरणीय व्यवस्था का आदिवासियों के जीवन पद्धति पर क्या परिणाम होता है, ये मेरा विषय था। तो मेरा पढ़ाई भी चलती थी और आदिवासियों में मेरा कार्य भी चलता था। तो मुझे हमारे प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे कॉलेज में कि भाई भूमि में कुछ भी नहीं होता, अगर आपको फसल के उत्पादन लेना है तो ऊपर से खाद डालना ही पड़ता है। लेकिन जब मैं जंगल में जाता था मेरी प्रोजेक्ट के दौर में संडे को रविवार को, तो वे विशाल का पेट जंगल के घने जंगल के अनगिनत फलों से लदे हुए बिना मानवीय सहायता मुझे बता रहे थे कि भाई देखो यहां तो कोई खाद नहीं है, हर साल अनगिनत फल लगते हैं तो खाद की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: इसके बाद उन्होंने अपने फार्म पर शोध किए और 6 साल की सख्त मेहनत के बाद बिना रसायनों वाली तकनीक तैयार करने में कामयाब हो गए। नाम दिया कम लागत प्राकृतिक खेती। अब वो इसे पूरे भारत में प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार भी उनकी भरपूर मदद कर रही है, यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
3: भूमि अन्नपूर्णा है, भूमि माँ है, महासागर है, केवल एक ही है। भूमि में जो खाद्य तत्व होते हैं, जो जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं होते, पके हुए नहीं होते, वो कच्चे होते हैं। जड़ों को चाहिए पका हुआ। ये पकाने का काम अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। सुभाष पालेकर प्रकृति कृषि में देशी गोमाता के गोबर गोमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, भूमि में डालते हैं, तो जीवाणु का कल्चर ही होता है, क्योंकि अनंत कोटि जीवाणु उसमें होते हैं। ये जीवाणु भूमि में जाते जब पालेकर कृषि में आप जीवाणु घन जीवाणु डालते और वो जो पकाते खाना और जड़ों को उपलब्ध करते।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस तरह की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में भी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उप योजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 35 जिलों की 98,670 हेक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के लिए प्रस्तावित किया है। इस पर 19,772 लाख रुपए का खर्च आना है और 51,450 किसानों को फायदा मिलना है। अकेले प्रयागराज जिले में 1,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत आ गई है, जो यहाँ के 913 किसानों को फायदा पहुँचा रही है।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
1: छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्राकृतिक खेती किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं और खेती में लगने वाली भारी लागत इनकी कमर तोड़ देती है। कई लोगों को लगता है कि प्राकृतिक खेती से शुरुआत में उपज कम रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही साल में आप भरपूर उपज ले सकते हैं।
2: प्राकृतिक खेती द्वारा उगाई गई जो दलहन है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड से जो आती है या नॉर्थ ईस्ट से जो आती है, वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ये होती इसलिए है क्योंकि उसको नेचुरल तत्व मिल रहे हैं जो उर्वरक और कीटनाशकों से परे रहता है, और यही वजह है कि उसकी खाने में मिठास है, बहुत लोग उसे लाइक करते हैं। और बाजार भाव, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे उत्पाद अगर हम बाजार में, अगर प्रमाणित है, सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, और इसे हम अगर बाजार में उतारते हैं तो ये हमें 20-30% तक ज्यादा मुनाफा देती है।
1: खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें घर पर मौजूद कुदरती सामग्री से बन जाती है। इसमें खाद दो तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये कि एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर लेना है, जो करीब 10 किलो होगा। 24 घंटे में ही इकट्ठा किया 8 से 10 लीटर मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, इतनी ही मात्रा में किसी भी दाल का बेसन और पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी। इन 5 चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है। डंडा क्लॉकवाइज घुमाना है और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देना है। 4 से 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं, साथ ही 24 घंटे का गोमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढककर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6 से 7 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधे के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं।
2: बहुत हद तक ये बात सत्य है कि अगर जहां भी देखा गया है कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो वहां जो पौधे या जो हम खेती करते हैं वो पौधों में देखा गया कि प्रायः उनमें कई सूक्ष्म जीव जो उनके जड़ों में होते हैं, मिट्टी में रहते हैं, उनके द्वारा कई सूक्ष्म तत्व पौधों को मिले रहते हैं और इसके वजह से ही पौधे काफी सुदृढ़ होते हैं और हेल्थी होते हैं। उन पे रोग और कीट का प्रभाव बहुत कम पड़ता है।
3: रासायनिक कृषि में संकर बीजों का उत्पादन और जनुक रूपांतरित बीजों का उत्पादन में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का उत्पादन देशी बीजों से ज्यादा मिलता है, हमें मान्य है, हम कबूल करते हैं। हम कबूल करते हैं। लेकिन सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से ज्यादा मिलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से ज्यादा मिलता है, हमने सिद्ध कर दिया है, हमें मॉडल खड़े, इसलिए हम देशी बीजों का ही प्रचार करते हैं। नंबर दो, एक देखा गया है कंपेरेटिव स्टडी में, देशी बीजों में पोषण मूल्य, औषधि मूल्य रासायनिक खेती में पैदा हुए संकर बीजों से पौधों से ज्यादा होते हैं, कई गुना ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है मानव का पोषण अगर करते हैं तो देशी बीजों से पैदा प्राकृतिक फसलें करती है, रासायनिक फसलें नहीं करती।
1: किसानों को अक्सर मौसम की मार भी झेलनी पड़ जाती है, ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। प्राकृतिक खेती दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो रही है, खास तौर से कर्नाटक के किसान इसे काफी पसंद कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में फसलें मौसम की मार और जलवायु में हो रहे बदलाव को भी आसानी से सहन कर लेती है।
2: जो मौसम में बदलाव दिखता है, तो अगर अधिक बारिश हो जाए तो गलना शुरू करेगा, तो वहां फफूंद के अगेंस्ट अगर कोई कार्य कर रहा है तो वहां पर प्राकृतिक खेती में देखा गया है कि उसमें क्षमता रहती है, अवरोधी क्षमता रहती है। इसी तरह टेम्परेचर का भी अगर बढ़ना घटना, अगर मॉइस्चर की भी अगर कमी और घटता है तो इसमें जो है जो पत्तियां गिरी रहती हैं वो मॉइस्चर को रोके रखती हैं। तो इस तरह से अगर ड्राउट सिचुएशन भी आता है तो ये जो नेचुरल फार्मिंग वाले जो किसान होते हैं उनके फसल देखा गया है कि बच जाते हैं। तो ये इसमें एक मैं कहूं कि प्राकृतिक इसमें एक ऊर्जा जो है सभी का समन्वय ही इस खेती को सक्सेसफुल बनाता है।
1: खेती में लगातार बढ़ रही लागत से किसान परेशान हैं। रसायनों ने जिस तरह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर वार किया है उसने लागत को और भी बढ़ा दिया है, ऐसे में प्राकृतिक खेती नई उम्मीदें जगा रही है। बढ़ती लागत और रसायनों से परेशान बहुत से किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। देसी गाय पालन करने वाले किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती और भी आसान है, क्योंकि ये विधि देसी गाय पर आधारित है। गुजरात के मनोज सोलंकी गाय के गोबर से न सिर्फ खाद बनाते हैं बल्कि प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक भी तैयार कर रहे हैं।
4: प्राकृतिक खेती अब समय की मांग भी है और जरूरत भी। बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित पर्यावरण के लिए किसान तेजी से जीरो बजट खेती अपना रहे हैं। ये रासायनिक खेती की तुलना में कम खर्चीली और बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है, साथ ही लंबे समय तक मुनाफा देने में सक्षम है। इसकी प्राथमिक जरूरत है पशुपालन, क्योंकि पशु अपशिष्ट के इस्तेमाल से खाद और कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। कच्छ में रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रमुख मनोज सोलंकी जी करीब 20 साल से इस तरह की खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि खेती प्रकृति के द्वारा ही की जाती है, प्रकृति अपने हिसाब से खेती के हर पहलू को नियंत्रित करती है जिसमें बाहर से कुछ शामिल नहीं करना होता है। इस समय सोलंकी जी खेती के साथ पशुपालन, कांकरेज गाय संवर्धन, गोबर से उत्पाद बनाना, जैविक खाद बनाना, जैविक कीटनाशक बनाना जैसे कई अहम काम कर रहे हैं। वो पशुओं को जैविक चारा ही खिलाते हैं, इस तरह से मिलने वाला दूध भी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है और गोबर से बनने वाली खाद भी।
5: एक मुख्य बात जो है आज हम विस्मृति में है, वो स्मृति में लाने की जरूरत है कि हमें प्रकृति को अपना प्रकृति ही खेती करती है, हमें उसके साथ भागीदारी करनी है, उसकी मालिकी नहीं करनी है। और हमें खेती में हर व्यवस्था को समझना है जो प्रकृति में जंगल में हो रहा है। कचरे के ढेर के ऊपर जब बीज गिरता है तो उसमें टमाटर मिर्चा लग जाता है, तो कोई नाइट्रोजन तो दिया, फॉस्फरस तो दिया, प्लांट प्रोटेक्शन तो हुआ, तो किसने किया? तो वास्तव में प्रकृति का एक व्यवस्था है जो ये सब मैनेजमेंट चला रही है। और उसकी ऐसी कल्पना नहीं है कि ये कंपनी आएगी, ये दवा का निर्माण होगा, खाद का निर्माण होगा और उस तरीके से ये अपनी खेती मानव अपना अनुपार्जन करेंगे। उसकी कल्पना है कि जहाँ खेत है वहीं उसका पोषण की व्यवस्था है, वहीं धरती को समृद्ध बनाने की व्यवस्था है, वहीं किसान का जो उत्पादन है वो ठीक से हो उसके लिए प्रकृति खुद अच्छी तरीके से एक वेल मैनेजमेंट कर रही है, वो हमें ध्यान में लेना है। उसमें मुख्य भूमिका है ये पशुओं की भी है, मुख्य भूमिका वृक्षों की भी है, मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों की भी है और पक्षियों की भी है और ऐसे कई प्रकार के जो नहीं देख सकते इनडायरेक्ट फॉर्म में कई जीव है वो ये प्रक्रिया में भागीदार है, ऐसा 20 सालों में मुझे ध्यान में आया है।
4: कृषि वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि खेत में रासायनिक खाद के उपयोग से शुरुआत में फसल में अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन इसके कई दूरगामी दुष्परिणाम भी हैं। इसके प्रयोग से फसल के लिए महत्वपूर्ण चक्र बनाने वाले मित्र कीटों को भी नुकसान होता है। इसीलिए मनोज सोलंकी जी जैविक खाद के साथ जैविक कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं, जिससे खेती के लिए जरूरी प्राकृतिक चक्र में संतुलन बना रहे।
5: के लिए हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें यहाँ जहर का इस्तेमाल ना करें। कोई भी जहर इस्तेमाल होने से जब हमें दुश्मन को मारने में लगते हैं तो मित्र कीटक भी मरते हैं, तो कई मित्र कीटक की संख्या बड़ी है और नुकसान करने वाले जो कीटक है उसकी संख्या कम है, तो उससे थोड़े के लिए हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो ना हो, ऐसा मेरा एक अनुभव है। और कृषि के अंदर जो जैसा समझ बढ़ती जाएगी उतना हमारा कृषि सहज और सरल बनती जाती है। जमीन को जैसे हमारी जमीन आज मक्खन जैसी हो गई, हम जमीन नीचे देख सकते हैं कि कई माइक्रो पिन होल कई जीव जीवात है जमीन को कल्टीवेट कर रहे हैं और जमीन को एकदम उम्दा बना के रखी है। जमीन है भौतिक तरीके से, जमीन है बायोलॉजिकल तरीके से और जमीन है वो खनिज द्रव्य की तरीके से मिनरल तरीके से भी समृद्ध होना जरूरी है और आज मेरी जमीन 10 सालों के बाद तीनों तरीके से समृद्ध दिख रही है और उसका एक प्रमाण भी है कि हमारा जो उत्पादन है वो काफी कुछ इसमें इनपुट डाले बिना अच्छा सा उत्पादन हम आज ले रहे हैं। आप इसका कलर भी मेरे पीछे जो पार्क है उसका कलर देख सकते हैं कि बिना नाइट्रोजन के इसकी ग्रीनरी आप देख सकते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन की अब कोई कमी नहीं है। शुरुआत में हमें ज़्यादा डालना पड़ता था, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो भी हमारा जो भी यहाँ गेहूँ भी पकाते हैं, यहाँ बाजरा भी पकाते हैं, मक्का भी पकाते हैं, तो उसका अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। तो हमें प्रकृति को समझना है और प्रकृति को समझते हुए हमारी कृषि व्यवस्था में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। ये जो अगर हम काम करते हैं तो किसानी है वो उत्तम किसान, जो उच्च किसानी थी वो उच्च किसानी का जो पद है फिर से प्राप्त हो सकता है। तो पहले मैं आय की जब बात रखता हूं तो बोल सकता हूं कि गाय के गौशाला का चार प्रोडक्ट होता है, एक है दूध है, एक है गोबर, एक है गौमूत्र, एक गौवंश खुद, तो ये चार

0: बहुत सुंदर शुरुआत अनीता जी। चलिए बचपन में चलते हैं आपके। आप बचपन में जब थे तो बचपन में बड़ी सारी हरकतें हम लोग करते हैं, शैतानियां करते हैं, कभी चोट भी लगती है, कभी खुशी भी होती है। तो अपने बचपन की कोई पसंदीदा प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: समीर जी, मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, तो उस हिसाब से बचपन में जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तब हमारे घर पे सब मेरी चाचा और मम्मी डैडी सब के मतलब रिलेटिव्स जो है वो रहने आते थे, और हम भी कभी कभी उनके घर पे रहने जाते थे गांव में
0: जी।
1: तो जो सब बच्चे मिलकर खेलते थे, मस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, वो जो बचपन के दिन है वो सबसे यादगार दिन थे।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो सबसे यादगार दिन थे। तो उसी उन्हीं यादों में से कोई एक प्यारी सी याद बताइए ना, कोई शैतानी की होगी आपने, कुछ किया होगा।
1: एकदम जब छोटे थे तो मेरे एक चाचा का लड़का है
0: जी,
1: उसका मैंने वो बहुत छोटा था, मैं उससे थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने जो इंक है
0: जी जी जी
1: वो इंक से उसके फेस पे सब पेंट की तरह पेंट किया था। घर पे डांट बाद में मिली
0: जी जी जी जी,
1: तभी बचपन था, कुछ समझ में नहीं आता था।
0: जी मैं समझ सकता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरीके की चीजों के बारे में ही तो पूछ रहा था मैं आपसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अपने बचपन के छोटे छोटे यादों को याद कीजिए, और चलिए सुनिए अनीता जी का ही गाया हुआ ये प्यारा सा गीत।

0: सुंदर गायकी, बहुत प्यारी गायकी। अनीता जी, अब हम बड़े हो गए हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कभी हम कामयाब होते हैं, कभी हम नाकामयाब होते हैं, नाकामयाबियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई नाकामयाबी, कोई असफलता रही जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो?
1: ऐसे कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए असफलता जरूरी है
0: जी,
1: और हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार ऐसे छोटी छोटी बातों में हुआ है। जब भी मैं स्पेशली बोलूंगी, ऑफिस रिलेटेड बोल रही हूँ, तो उसमें कभी अगर हम काम करके भी प्रमोशंस नहीं मिलने में थोड़ी देरी होती है, मतलब वो चलते रहता है, उसका कुछ इश्यू नहीं है वैसा। लेकिन वो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब कुछ काम दिया गया है और वो टाइम पे, टाइम बाउंड रहता है सब काम, तो वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते तो थोड़ा सा, थोड़ी सी निराशा होती है
0: जी।
1: लेकिन किसी बाद में मन को अपने ये करके किसी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस न देके अपने में पॉजिटिविटी रख के आगे बढ़ते जाना है, यही सबसे बड़ी सीख है और सबक है।
0: ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही आपने साहब, बड़ी ही सुंदर बात कही कि असफलता से सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स आते रहते हैं और उन्हीं को उन्हीं से सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए दोस्तों, एक और गीत इसी रंग में डूबा हुआ सुनते हैं, अनीता जी का गाया हुआ।

0: अनिता जी, जब हम असफलताओं को पार कर लेते हैं और सफल होते हैं तो हमें एप्रिसिएशन मिलता है, हमारी प्रशंसा की जाती है। और देखिए, आप माने या ना माने, इस दुनिया में प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। तो आपको आज तक की मिली सबसे अच्छी प्रशंसा कौन सी है?
1: सबसे अच्छी प्रशंसा तो मुझे याद नहीं है समीर जी। हाँ, लेकिन प्रशंसा तो मिलती रहती है। मैं तो बैंक में काम कर चुकी हूँ, तो मेरे बैंक के सुपीरियर से मेरे काम की प्रति जो निष्ठा थी, अभी जो भी मैं काम करती थी उसके लिए, और जो बैंक के कस्टमर्स थे उनका मेरी सर्विस जो देती थी उसके लिए, सब प्रशंसा मिलती रही है हमेशा। और म्यूजिक की अगर कहे तो मैं म्यूजिकल ग्रुप्स में गाती हूँ, तो उसमें भी मेरे गाने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा मिली है मुझे।
0: बड़ी ही सुंदर बात, बिल्कुल ठीक ठीक कहा मनीता मैम आपने। ये बहुत जरूरी होता है, मोटिवेशन प्रशंसा के रूप
1: मोटिवेशन मिलता है,
0: मोटिवेशन प्रशंसा के रूप में ही हमारे पास आता है। हाँ। और हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और गीत का मजा लेते हैं अनिता जी की ही आवाज में।

0: अनिता जी, मुझे अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली तीन व्यक्तियों के बारे में बताइए, तीन लोगों के बारे में, थ्री, जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो, आपके जीवन पर प्रभाव डाला हो, तीन ऐसे व्यक्ति आपके जीवन के।
1: मैं ऐसे स्पेसिफिकली मैंने जैसे कहा आपसे कि मैं जॉइंट फैमिली में पली बढ़ी हूँ, तो तीन प्रभावशाली को मैं तीन ग्रुप में ये करूंगी। सबसे पहले मेरी जॉइंट फैमिली, जिन्होंने मुझे नैतिक मूल्य सिखाए, ईमानदारी से अपना काम कैसे करना है, सबका सम्मान करना और सबके लिए करुणा और सहानुभूति रखना, ये सब जो मूल्य मुझे मेरे फैमिली से मिले हैं, जो भी है जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स थे, और मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और दूसरी प्रभावशाली व्यक्ति मेरे जो बचपन से जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो कलीग्स जिनके साथ मैंने काम किया है, उनके साथ मिलके जिम्मेदारी से कैसे काम करते हैं, एक टीम बन के कैसे काम करते हैं, ये मुझे सीख मिली है, चाहे अपने से सुपीरियर से हो या अपने से छोटों से हो, सबसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है लाइफ में। और तीसरे प्रभावशाली अगर आप पूछेंगे तो वो है मेरे ससुराल वाले, स्पेशली मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मेरा हर काम मेरे साथ दिया है, हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट करके एक सपोर्टिव जीवन साथी होने का फर्ज निभाया है, हर एक इसमें, हर एक फील्ड में, कोई भी हो, चाहे मेरा घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे म्यूजिक के रिलेटेड हो, कुछ भी।
0: बहुत खूब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन साथी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है आपका। तो चलिए, बहुत खूबसूरत अगला गीत हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं, आप ही की आवाज में।

0: बहुत सुंदर अनीता जी, जिस भी उम्र में आप हैं, उम्र से कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अपने आप को फिट और सक्रिय रखना चाहिए। डिप्रेशन में नहीं डूब जाना चाहिए और शारीरिक तौर पर भी थोड़ी सी एक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए क्या करती हैं?
1: समीर जी, मेरे लिए फिट रखने का तरीका है प्राणायाम, योगा। और अभी जबकि मैं अभी बैंक में नहीं हूँ, तो उसमें 40 to 45 minutes का ब्रिस्क वॉक भी रहता है मेरा। एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक, जो मन को शांति देता है, वो तो है ही।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत सारे लोगों की ही तरह से आपका भी तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। योगा हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, बढ़ती हुई उम्र में हमारे जोड़ों को, हमारे शरीर को ताकत देता है। प्राणायाम हमको शांत बनाता है, एक्टिव बनाता है, और ब्रिस्क वॉक ऑफ कोर्स कार्डियो के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बिल्कुल सही है दोस्तों, मुझे भी सारा दिन स्टूडियो में कुर्सी पर बैठे बैठे गड़बड़ हो जाती है, मुझे भी थोड़ा सा योगा करना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। तो चलिए दोस्तों, एक बिल्कुल फिट और एक्टिव गीत भी सुनते हैं अनीता जी का ही।

0: बहुत खूब। अनीता जी, हमारी दुनिया में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हमारे चारों तरफ हो रहा है, हम उसका एक पार्ट हैं, ना भी हो तभी भी हम बहुत तेजी से बहती हुई इस डेवलपमेंट की धारा में बह गए हैं, हमें भी लपेट लिया गया है, हम चाहें या ना चाहें। उसी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है इंटरनेट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फर्ज कीजिए इंटरनेट 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए, तो आपकी जिंदगी पर क्या असर आएगा?
1: आज की दुनिया में इंटरनेट एक नेसेसिटी हो गई है समीर जी, सबके लिए, चाहे वो आम लोग के लिए हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। इंटरनेट के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और अभी जब कैश कंपोनेंट कम हो गया है, मतलब अभी जो है सब यूपीआई ट्रांजेक्शंस ये सब जब ज्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से इंटरनेट का तो जो जितने नुकसान है उतने फायदे भी है और नुकसान भी है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इंटरनेट बंद होने से फिर से फैमिली के सभी मेंबर्स एक दूसरे के लिए वक्त निकाल सकेंगे
0: जी,
1: अगर इंटरनेट बंद किया जाए तो। और पर्सनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव होगा आदमी का। लेकिन अगर कमर्शियल एक्टिविटीज के हिसाब से देखें तो इमरजेंसी सर्विसेज पे फर्क पड़ेगा।
0: मैम, कमर्शियल एक्टिविटीज की ही अगर आप बात करते हैं तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज रात को 8 बजे से पहले भी तो की जा सकती हैं।
1: हाँ, की जा सकती है, लेकिन इसलिए बोला इमरजेंसी में कभी कभी अपने को कुछ ट्रांसफर करना पड़ता है, फंड्स ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो उसमें क्या है अभी जो इतनी सहूलियत हो गई है तो उस हिसाब से, नहीं तो इट इज परफेक्टली ओके कि 8 to 8 नहीं रहेगा तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी जो आदत हो गई है, अपने आप को मेन क्या है, आदमी ने खुद को ही कंट्रोल करना चाहिए कि जो जरूरी नहीं है वो चीजें यूज करनी नहीं चाहिए। एक बार घर आने के बाद अपने फैमिली को ही वक्त देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
0: आपका मानना बिल्कुल ठीक, आपका मानना बिल्कुल ठीक है अनीता मैम। मैं उसी वजह से तो कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं, पहली बात तो ये, और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा विचारक बाबा हूं जो दुनिया को समझाने चलूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि हम लोगों की अगर आदतें बिगड़ जाए ना तो हम लोगों को डंडा ही चाहिए होता है अपनी आदतें ठीक करने के लिए।
1: हाँ, सच
0: का पिटाई, हमें पिटाई चाहिए होती है। तो अगर हम अभी किसी को भी कहने लगे कि आप 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इंटरनेट यूज ना करो ना, तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन अगर बंद कर देंगे ना तो मजबूरन उनको मानना पड़ेगा।
1: बराबर कहा।
0: तो मैं इसलिए कह रहा हूं मैम कि 8 बजे से 8 बजे तक अगर बंद, मैं आपका विचार जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो
1: तो
0: जाए,
1: मेरे लिए तो परफेक्टली ओके है सर
0: जी,
1: बहुत से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे
0: दोस्तों
1: इसमें
0: जी। दोस्तों सुनिए, अनीता जी ने जिंदगी देखी है, दुनिया देखी है, और आज की डेट में इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल भी कर रही हैं वो, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज को भी रियलाइज कर रही हैं कि अगर ऐसा हुआ 8 बजे तक बंद हुआ तो जिंदगी के कई पहलुओं में हमें बड़ा फायदा पहुंचेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा अनीता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं आप ही की आवाज में।

बहुत सुंदर। फर्ज कीजिए अनिता जी, आपको किसी भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति से, हिस्टोरिकल यानी कि इतिहास में जाइए, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐतिहासिक व्यक्ति से बात करने का मौका मिले, बिल्कुल एक्सक्लूसिव, वो अकेले आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, तो उनसे

0: आपको एक सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। एक सवाल पूछिए उनसे। तो पहली बात तो किससे बात करना चाहेंगे और सवाल क्या पूछेंगे आप?
1: मैं आदरणीय श्रीमान रतन टाटा जी, जो एक आदर्श भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति रह चुके हैं, उनसे पूछना चाहती कि कौन से अनुभव ने आपको परोपकार के लिए प्रेरित किया?
0: बहुत खूब, अमेजिंग अमेजिंग। अनिता जी, मैं आपकी थॉट प्रोसेस को सीरियसली अप्रिशिएट करता हूं। भारत रत्न रतन टाटा जी से आप बात करना चाहेंगे। रतन टाटा जी से मैं ही नहीं, करीब करीब पूरा हिंदुस्तान बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। इतने सरल इंसान, इतने ज्यादा अमीर होते हुए भी इतने सरल, बड़ा मिलना मुश्किल है साहब। मैंने कई जगह पर इस चीज को सुना। मैं कॉरपोरेट में भी रहा कि टाटा कंपनी को जो भी ज्वाइन करता है वो कभी टाटा कंपनी छोड़ता नहीं है। पैसे कम मिलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति टाटा कंपनी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ही इस तरीके की है कि वो इंसान से इंसान को इंसान समझते हैं,
1: इंसान को इंसान समझते हैं। बराबर था आपने।
0: वो इंसान को नंबर्स नहीं समझते, वो इंसान को इंसान समझते हैं।
1: सच कहा आपने सर।
0: तो इस वजह से मुझे भी रतन टाटा बहुत ज्यादा पसंद है और आपने बहुत ही अच्छे कैरेक्टर को, ऐतिहासिक व्यक्ति को चुना। शुभकामनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं अनिता जी की ही आवाज में।

0: अनिता जी, हम लोग दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, बड़ी सारी एक्टिविटीज करते हैं। आप बैंक जाया करती थी, बैंक में तमाम काम किया करते थे। हम सुबह 9 बजे पहुंच गए, 10 बजे पहुंच गए, जो भी एक ऑफिस टाइम होता है। या कोई महिला अगर घर पे काम कर रही है तो उसका वक्त जो दिन होता है बड़े जल्दी शुरू हो जाता है, या जो भी है। हर व्यक्ति दिन के कोई ना कोई वक्त में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, प्रफुल्लित होता है, मोटिवेटेड होता है, एक्साइटेड होता है, पावरफुल होता है। वो वक्त आपका कौन सा होता है पूरे दिन में?
1: अगर पूरे दिन में कहो तो सुबह का जो टाइम है
0: जी,
1: वही सर्वश्रेष्ठ काम होता है तभी, क्योंकि तभी जो फिट रखने के लिए अपने आप को हम लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी करते हैं
0: जी,
1: और सुबह उठ के भगवान की पूजा करते हैं, फिर फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, और ऑफिस में जब रहते हैं तो ऑफिस का भी सबसे फ्रूटफुल काम जो है वो सुबह के समय ही होता है, जब हम एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हैं। इसलिए सुबह का स्पेशली, सुबह मेरे दिन की शुरुआत तो 5:30 बजे होती है सुबह से।
0: बहुत बढ़िया।
1: 5:30 से लेके समझो जब मैं बैंक में थी, अभी रिसेंटली छोड़ा है, तो 2 बजे तक जो मेन रहता है, तो उसमें सब जो डिफिकल्ट काम है वो करके लेते हैं, तो सब काम अच्छे से होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो मेरे लिए सुबह का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ काम।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने जाना कि अनीता जी के लिए सुबह का वक्त सबसे श्रेष्ठ होता है। सबके लिए अपना अपना वक्त होता है, कोई परेशानी नहीं है। 24 घंटे ऊपर वाले ने हमारे अकाउंट में डाले हैं, हम कभी भी एक्टिव हो सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनीता जी के लिए सुबह का वक्त बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और प्यारा सा गीत सुनते हैं अनीता जी की आवाज में।

0: बहुत सुंदर। अनिता जी, आपके सारे दोस्तों को, हमारे सारे दोस्तों को, इस प्लेटफॉर्म के सारे पार्टिसिपेंट्स को कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी समीर जी,
0: थैंक यू,
1: कि इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से मेरी आवाज जो है लोगों तक पहुंच पाई। और सबसे सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने शौक को जिंदा रखिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।
0: बड़ा ही प्यारा संदेश दोस्तों, क्रिस्प, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत खूब। अनिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
2: तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आज के कलाकार का एक और बहुत ही प्यारा नाचता खूबता खिलखिलाता हुआ क्यूट से एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं। आज की टैलेंट हमारी हैं जसबीर कौर मैम। बाकी जसबीर जी का स्वागत करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमको बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं मैम आप?
1: जी, मेरा नाम जसबीर कौर, मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में थी। मुझे 1.5 साल हुआ यहाँ पर चंडीगढ़ शिफ्ट हुए। वहां पर मैंने दिल्ली में 32 साल जॉब करी है एज अ म्यूजिक टीचर इन अ रिप्यूटेड पब्लिक स्कूल
0: जी।
1: और उसके बाद फिर हमने अभी 1.5 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट किया चंडीगढ़ में, और अब परमानेंटली हम चंडीगढ़ में ही हैं।
0: ऑलराइट, तो अभी आप चंडीगढ़ में टीचिंग कर रहे हो क्या मैम?
1: नहीं नहीं, मैं रिटायर्ड म्यूजिक टीचर हूँ, मैं रिटायर हो चुकी हूँ।
0: ओह, और आप म्यूजिक टीचर हैं? ओहो, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। बहुत खूब। तो मतलब जाहिर सी बात है, तमाम बच्चों को आपने म्यूजिक सिखाया, म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराया। और जैसे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारी बातचीत हो रही थी जसबीर मैम से, तो बात ये निकल के आ रही थी कि अगर संगीत के आसपास भी आप रहें तो आप बहुत पीसफुल रह सकते हैं। तो मुझे कई बार लगा भी है और अपने प्रोग्राम्स में जसबीर मैम कहा भी है कि म्यूजिक भी अपने आप में एक मेडिटेशन है।
1: बिल्कुल, म्यूजिक एक हीलिंग पावर है। आपको म्यूजिक आपके पास है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप, मेरा मानना ये है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आप सारा दिन म्यूजिक में है तो यू विल ग्रो यंगर।
0: वाओ,
1: जैसा कि मुझे अभी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि यू आर गेटिंग यंगर एंड यंगर, तो मैंने कहा इसका रीजन म्यूजिक ही है। ओनली म्यूजिक इज द थिंग जो हमें खुश रखता है, हमेशा खुश रखता है हमेशा।
0: ओके ओके ओके। और तो जसबीर मैम, आपके आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड
1: अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड 2 years
0: ब्यूटीफुल। तो लीजिए दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी प्रतिभा आज हमारे बीच मौजूद हैं, जसबीर कौर मैम। हम उनके साथ बहुत मजे करेंगे, हम बहुत सारे उनके साथ गीत सुनेंगे, उनके संगीत का आनंद लेंगे। चलिए ना शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को जसबीर कौर मैम के ही गाए हुए इन गीतों से।

0: बहुत खूब गायकी, बेहद बेहतरीन गायकी जैसा हमें उम्मीद थी, ये तो होगा। ऑलराइट जसबीर मैम, आगे बढ़ते हुए आप से आपको थोड़ा आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपके संगीत पर फिर आते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक और ये सब, लेकिन पहले आपको समझते हैं आखिरी बार, क्योंकि आपने बहुत प्यारी सी बड़ी सक्सेसफुल और संगीतमय जिंदगी जी रहे हैं आप, लास्ट आखिरी बार आपने कुछ नया करने की कब कब कोशिश की थी, कुछ नया और कब
1: नया? हाँ, मैं बताती हूँ। नया तो ऐसा है कि अब संगीत तो अपने अंदर है ही है, नया करने के लिए मुझे, मैं अब क्या करती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को पार्टिसिपेट करती हूँ ताकि मुझे और नया कुछ सीखने को भी मिले। लास्ट मेरी अचीवमेंट जो रही है वो, हाँ, संगीत से रिलेटेड ही कह सकते हैं, जो हमारी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है ना दिल्ली में।
0: ओ, अच्छा जी।
1: तो हाँ, उसका जब नींव पत्थर रखा गया था तभी मुझे वहां परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था इन फ्रंट ऑफ ऑल द डिग्निटरीज। और उसके बाद जब वो कंप्लीट हुई तो उसका इनॉग्रेशन में भी मैं वहां लकीली गई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। okay. और बहुत मुझे इज्जत मिली वहां पर, और ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की।
0: ब्यूटिफुल। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसी किसी चीज की शुरुआत के लिए आपकी आवाज वहां गूंजी, उसके एनवायरनमेंट में हमेशा वो आवाज गूंजती रहेगी, ये बहुत बहुत गर्व की बात है, ये बहुत अकॉम्प्लिशमेंट है, जाहिर सी बात है, कोई बुला नहीं सकता
1: जी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है।
0: That is absolutely right. आपने बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया, बहुत बढ़िया
1: जी।
0: दोस्तों सोचिए, क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा कभी गुजरा है जब हमें ये लगा हो कि हमने अपने देश के लिए कुछ कर दिया? कोई जरूरी नहीं है कि हमने अपने देश के लिए सीने पर गोली ही खाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी भी शहर में चलते चलाते मैंने अगर सड़क के किनारे से कोई एक कचरा उठा के भी डस्टबिन में डाला है, वो भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे देश की तरफ।
1: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट।
0: बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हुए इन गीतों का लुत्फ उठाइए, एक बार देशभक्त के बारे में विचार कीजिए और हम वापस आते हैं।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल।
1: मैम कभी किसी से कंपैरिजन किया है आपने अपना? मतलब कभी कभी अपनी तुलना कभी किसी से कर बैठते हैं ना हम, कि अरे यार वैसे होते तो अच्छा होता, या वैसा सीख लें तो कैसा रहे। सो अपना कंपैरिजन कभी किसी से किया आपने?
2: समीर जी मैं एक बात कहूंगी, मैंने अपना कंपैरिजन बहुत बार किया है और अपने खुद से किया है।
1: वाओ
2: देखिए मैं ये मेरा मानना यह है कि मैं किसी के लेवल को टच करूं या ना करूं, मुझे अपना लेवल जो आज है उसे और हाई करना है। तो मैं अपनी ही रिकॉर्डिंग्स को सुनती हूं और फिर मुझे लगता है कि हाँ इसमें ये कमी है, मुझे वो कंपैरिजन करना है कि नहीं मुझे इससे और आगे जाना है, तो मैं अपना कंपैरिजन अपने आप से ही करती हूँ।
1: बढ़िया, अमेजिंग। दोस्तों मुझे मैम की इस बात से ना, वो सलमान खान की एक मूवी आई थी सुल्तान, वो याद आ रही है। उसमें एक सीन था लास्ट की तरफ की सलमान खान कुश्ती लड़ रहे होते हैं रिंग में, और उनका मुकाबला खुद उन्हीं से होता है। मतलब

0: तक लेके जाना है मुझे उन कमियों को हटा करके अपने लाइफ में से।
1: अच्छा चलो मैम, आप बुरा मत मानना, गुस्सा मत करना मेरे से। अभी लेटेस्ट में आपने अपनी कौन सी गलती सुधार ली?
0: सबसे लेटेस्ट आज की बताती हूँ, आज की ही बताती हूँ। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मेरी रिकॉर्डिंग में मुझे बहुत बार मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, रीटेक्स करने पड़े। बार बार मैं रिकॉर्डिंग करती थी, बार बार मेरे मुझे अपनी कमी नजर आती थी। फिर लास्टली कम से कम मैंने कुछ नहीं तो 9-10 बार उसको रिकॉर्ड किया बार बार,
1: ओके,
0: एक ही सॉन्ग को। और तब मुझे पता लगा मैं कहाँ पर गलत थी।
1: वाओ,
0: तो वो आज की लेटेस्ट जो है मैंने आज ये सुधारी अपनी।
1: बहुत खूब। दोस्तों ये आसान काम नहीं है, हम लोग बहुत आराम से अपनी अच्छी अच्छी बातें तो पहचान लेते हैं लेकिन अपनी गलती को जानते हुए भी नहीं देखना चाहते। ये आसान काम नहीं है दोस्तों कि अपनी गलती को पहचान कर या तो सॉरी बोल देना या फिर उसको करेक्ट करने की। 9 बार, माई गॉड, 9 बार एक गाने की रिकॉर्डिंग। आप सब लोग जो लोग सुन रहे हैं उसमें सिंगर्स भरे हुए हैं
0: जी,
1: थिंक अबाउट इट, 9 बार रिकॉर्डिंग करी है क्या आपने कभी?
0: और कंटिन्यूअसली करी है मैंने, बीच में बिल्कुल गैप नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे इसको छोड़ना ही नहीं है, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हूँ तब तक मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है। और मैं उसको बार बार बार बार रिकॉर्ड करके फिर सुनती थी, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 घंटे। 3 घंटे में जा करके जब मुझे लगा कि हाँ मैं अब थोड़ा बहुत ओरिजिनलिटी के पास पहुंच गई हूँ, फिर मैंने लंच किया उसके बाद।
1: So, दोस्तों सोच के देखिए, एक तो इतना डेडिकेशन होना चाहिए ऊपर इसके बाद अपनी गलती को पहचानना। चलिए आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद उठाएं पहले और उसके बाद वापस लौटते हैं मैम के पास।

0: बहुत सुंदर। चलिए मैम, अपने अब संगीत के बारे में थोड़ा हमें बताइए। आप संगीत प्रेमी हैं, आप गायिका हैं, आप म्यूजिक टीचर हैं, तो जाहिर सी बात है संगीत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में उछल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ मैम, जब आप छोटे बच्चों को म्यूजिक सिखाते थे या सिखाते हो, सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू टीच देम? कैसे सिखाते हो कि बेटा ये करो ये करो, ऐसा मतलब क्या, हाउ डू यू स्टार्ट?
1: हाँ समीर जी, देखो डिपेंड करता है एज ऑफ द चाइल्ड। बहुत छोटा बच्चा अगर है तो उसको हम सबसे पहले सुर का ज्ञान देंगे, सारे गामा पधा क्या होता है, कितने सुर होते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता है। मैंने जो स्कूल में टीचिंग दी है ना, वो दी है जैसे मिडिल स्कूल है, 6th, 7th, 8th तक के बच्चों को, उनको मैंने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, प्रमोशनल सॉन्ग्स, भक्ति वाले सॉन्ग्स, इस तरह के सॉन्ग्स मैंने उनको सिखाए हैं। फिर जब हम 9th, 10th के लेवल पे आ जाते हैं, वहां मैंने उनको क्लासिकल की ट्रेनिंग देनी शुरू की।
0: Okay.
1: क्लासिकल के, जी क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल के बारे में उनको बताना शुरू किया, ये है क्या, कहाँ से आया, कौन से घराने हैं इसमें, ये सबकी टीचिंग देनी शुरू करी। फिर धीरे धीरे उनको मैं स्कूल से बाहर कॉम्पिटिशन्स में भी लेकर के गई। लकीली बहुत बार वो लोग जीत के आए हैं, हर बार तो नहीं जीते, लेकिन काफी बार वो लोग बच्चे क्लासिकल में विन करके आए हैं। तो मुझे ये अपना एक अचीवमेंट लगता है कि मैंने किसी को कुछ दिया। यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी समीर जी।
0: जी प्लीज।
1: मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने सिखाया क्लासिकल म्यूजिक स्पेशली, आज वो बच्चे अपना स्कूल चला रहे हैं।
0: ओह ओके।
1: जी
0: म्यूजिक स्कूल।
1: और जी, और इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी। और हर बार जब उनकी नई कोई कॉम्पोजिशन होती है तो मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे अभी तक बच्चों से इज्जत मिलती है।
0: That is so cute.
1: बहुत इज्जत मिलती है अभी तक भी, तो ये भी मेरी एक अचीवमेंट है।
0: Of course, ma'am, I understand. I perfectly understand and I appreciate this. बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों
1: शुक्रिया।
0: ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से अपने एक संगीत को आगे बढ़ाया जाए। तो लेकिन आपके खुद की पसंद का संगीत कौन सा है मैम, मतलब किसी तरीके का एक पर्टिकुलर, या जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं कि कोई एक खास कोई राग या कोई घराना या कोई स्टाइल ऑफ म्यूजिक या फिर फोक, गजल, भजन, हाँ। क्या?
1: हाँ, मेरा देखिए ऑल टाइम फेवरेट तो क्लासिकल ही है, इंडियन क्लासिकल।
0: श्योर।
1: उसके बाद अगर हम लाइट म्यूजिक में जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा ना इमोशनल सॉन्ग्स पसंद है।
0: ओके।
1: हाँ, और उसके अलावा मुझे, हाँ, भजन, शब्द कीर्तन भी मैं करती हूँ। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मेरे सबसे पहले गुरु, जब मैं 4-5 साल की थी, मेरे खुद के पापा थे, पापा गाते थे और हम उनके साथ बैठते थे गाने के लिए। पापा वॉलेंटरली गाते थे, स्टेज पे नहीं गाते थे, वो मंदिर में और गुरुद्वारों में गाते थे।
0: ओके।
1: तो वहां वो हमें अपने साथ बिठाते थे, वहां से हमने

0: था, माँ भी हमारी गाती थी, वो करते करते उसके बाद पापा ने कोई क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखा था, कुछ भी नहीं सीखा था, लेकिन शौक बहुत था उनको। फिर जब हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स में, शायद सिक्स में जब मैं आई, तो पापा ने कहा नहीं बेटा आपको क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहिए। फिर हमने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया और फॉर्मल गुरु मेरे, जिनको मैं अभी तक बहुत रिगार्ड करती हूँ, एहसान मानती हूँ उनका, वो थे हमारे गोपाल शर्मा जी। प्रयाग संगीत समिति की एक ब्रांच थी फैजाबाद में, मैं फैजाबाद से थी तब, तो वहां उन्होंने जी अवध संगीत विद्यालय में मैंने उनसे प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। संगीत में मैंने गायन में प्रभाकर किया उनकी छत्र छाया में
1: जी,
0: तो वहां से फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
1: बहुत सुंदर। तो ये रही संगीत की बात। दोस्तों आपको मालूम पड़ा होगा कि कौर मैम किस तरीके के संगीत को पसंद करती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए उनके गीतों का भी आनंद उठाएं और विचार करें।

0: बहुत खूब, अमेजिंग अमेजिंग, ब्यूटिफुल।
1: थैंक यू सो मच।
0: जसबीर मैम, जैसे कोई भी व्यक्ति की चलती चलाती जिंदगी में हर दिन किसी न किसी चीज से एक्साइटेड रहता है, जिससे कि उसको पूरा दिन कुछ करने की ताकत आ जाती है। जैसे मैं जब मेरा किसी के साथ भी इंटरव्यू इंटरैक्शन होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पूरा दिन उसके नशे में घूमता हूं, समझिए, क्योंकि कितना कुछ नया सीखने को मिल जाता है किसी व्यक्ति से बात करने को। तो आपके लिए पूरे दिन में ऐसा क्या एक्साइटमेंट रहता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है? व्हाट एक्साइट्स यू?
1: आज के लिए तो मेरा ये इंटरव्यू का एक्साइटमेंट था, अदरवाइज और अदरवाइज जिस दिन कोई खास एक कंपटीशन हो, कॉन्टेस्ट हो, जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और वो लाइव चल रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि आज क्या होगा, कितने लोग आएंगे मुझे। और एक्साइटमेंट पता है किस चीज की होती है
0: जी?
1: मुझे ये होता है कि मेरी तो परफॉर्मेंस जो होगी होगी, मुझे दूसरों से क्या मिलेगा सीखने को, जो मैं अपने ट्रेजर में भर सकूं उसको।
0: क्या बात है, क्या
1: तो ये एक्साइटमेंट्स होती है जी। और मुझे एक चीज और अच्छी लगती है
0: जी।
1: मैं एक चीज और, सॉरी, एक चीज
0: नहीं, नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए।
1: हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे घर में गेस्ट आते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ।
0: ओके,
1: मुझे होस्ट करना बहुत अच्छा लगता है।
0: वाओ, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। ऑफ कोर्स एक अलग सी एनर्जी आ जाती है।
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: कुछ भी, चाहे हम उनकी सेवा करें या फिर कुछ भी खाना परोसे या उनसे बातचीत करें, तो एक अलग ही एनर्जी होती है जो चारों तरफ रेडिएट करती है। आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके की चीजें हैं जो जसबीर मैम को एक्साइटेड रखती हैं और वो जिंदगी बहुत खुशी खुशी अपने संगीत के साथ आगे बढ़ाती जा रही हैं। चलिए फिर उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े ना, उन्हीं के गीत सुनते हुए लीजिए, पेश करता हूं।